0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और बात करते हैं एक ऐसे मैसेज की जिन्होंने मुझे भेजा है रिगार्डिंग होम सिक रेमेडीज के लिए। वेल, ये कहते हैं क्योरा केतन, यस्टरडे आई वाज कैचिंग अप विद माय फ्रेंड्स हियर इन ऑकलैंड एंड वी लिटरली हैड टू स्केड्यूल अ कैजुअल हैंग आउट 2 weeks इन एडवांस यूजिंग गूगल कैलेंडर। बैक होम इन फीजी, नेबर्स एंड रिलेटिव्स वुड जस्ट वॉक इनटू योर लिविंग रूम unannounced at 7 p.m. sit down, eat whatever was cooked and chat till midnight. My Indian flatmate was telling me the exact same thing, how back home the doorbell would ring randomly and you would always have unexpected guests bringing life into the house. Here something feels so structured, formal and lonely. How do we bring back that spontaneous open door warmth in a city where everyone is living by strict schedule? काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ जवाब दो। उससे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये बात आपकी सुन के मुझे अपना वो टाइम याद आ गया जब मैं सचमुच बहुत ही ज़्यादा छोटा था, आई थिंक अराउंड व्हाट 6-7 years, और तब ऑब्वियसली हमारे घर पे किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो हम आस पड़ोस में हम दिया करते थे कि लाइक अगर आपको फ़ोन करना है तो इन्हें फ़ोन कर दो या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड सो जब फोन आता था हम लिटरली यू नो 10 रुपए लेके जाते थे, मम्मी और हम सब, आई मीन मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर, और अगर किसी को फ़ोन करना, विशेस करने हैं तो हम वो 1-1 रुपए 2-2 रुपए डाल के, उस टाइम पे 2 रुपए लगते थे पर मिनट के, आई रिमेंबर दिस, अगर लैंडलाइन टू लैंडलाइन अगर कॉल करना है तो जब नानी के यहाँ पे कॉल करना होता है, विश करना होता है, तो 2 रुपए का कॉइन डालते थे और वहीं से उनसे सारी बातें होती थी। बट ऑफकोर्स अभी का टाइम एकदम बदल चुका है यहाँ पे, एंड यू नो तब वो घर पे भी आते थे विदाउट नोइंग, और जब कोई आता था तो हमेशा मेहमान का आना वॉज ऑलवेज लाइक अ सरप्राइज, कभी भी ना वो पूछ के आते थे बिकॉज ऑब्वियसली कभी ऐसा सोर्स नहीं हुआ करता था कि कॉन्टैक्ट करे तो क्या करे कैसे। बट यस, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, आपकी ये बात पढ़कर मुझे भी पुराने दिनों की बहुत ही ज़्यादा याद आई है। और ये जो कैलेंडर इनवाइट कल्चर है ना, ये न्यूजीलैंड में सेटल होने का एक ऐसा साइड इफेक्ट है जहाँ कैजुअल मिलने के लिए भी हफ्ते पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। फिजी हो या इंडिया, हमारी लाइफ में सबसे प्यारे मोमेंट जो है वहीं होते हैं जो बिना किसी प्लान के हो, एंड देन ऑफ कोर्स सडन ड्रॉप इन के साथ शुरू होती है। पर बॉस, इस फॉर्मेलिटी और लोनलीनेस को ब्रेक करना पड़ेगा। आज का होमसिक रेमेडीज ये है कि आप अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल्स में एक ओपन डोर वीकेंड पॉलिसी स्टार्ट करो। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दो कि भाई और बहनों, इस फ्राइडे शाम 6 बजे के बाद मेरे घर पे आने के लिए किसी अपॉइंटमेंट या इनवाइट की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बस आ जाओ और दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। ये मैसेज आप डेफिनेटली डाल सकते हैं और साथ में चाय का भी बंदोबस्त आप कर सकते हैं। जब आप खुद थोड़े इनिशिएटिव लेकर उस फॉर्मल बाउंड्रीज को तोड़ोगे तो आपके दोस्त भी बिना झिझक के ड्रॉप इन करना शुरू करेंगे और वही स्पॉन्टेनियस घर वाली वाइब वापस आ सकती है। तो आओ मिलकर स्ट्रिक्ट ऑकलैंड स्केड्यूल को थोड़ा देसी टच देते हैं। ये गाना जो है अभी थोड़ी देर में मैं चलाऊंगा आपके लिए स्पेशली, रोहित भाई।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
3: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
6: At Bunnings Trade, we've got your paint jobs covered. Shop a wide range of paint and accessories from leading brands like PPG, Dulux and Monarch. Call 134-TRADE on 0800 134 872 to get a quick quote today. At Bunnings Trade.
7: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
8: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear, or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you, and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
10: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
11: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.

0: चलिए ऑफिस शॉर्ट आउट के सेगमेंट में आप सभी मुझे मैसेजेस भेज दीजिए ताकि हम यहाँ पे उस पर चर्चा कर सके। वेल, आज मैंने खाई है दाल और चावल। ऑब्वियसली कल के ये बने हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, तो वी थॉट दैट वाई नॉट वी जस्ट यू नो ईट द सेम थिंग इन द मॉर्निंग एज वेल। बट द थिंग इज, हमने एज इट इज़ वो नहीं खाया। खुशबू ने क्या किया, खुशबू ने चावल और दाल को मिक्स करके एक फ्राइड राइस टाइप बना दिया, जो सच में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप बताइए मुझे, कितने लोग यहाँ पे बचे हुए जो चीज़ें होती है, जैसे कि रोटी हो गई या फिर कोई भी सब्जी हो गई या फिर कोई भी यू नो राइस या फिर जो भी है, आप उसको रीफ्राई या फिर री यू नो यू पुट योर क्रिएटिविटी एंड आप कुछ ऐसा बना देते हैं कि वो वेस्ट भी ना हो और एक नई चीज़ भी खाने को मिल जाए इंस्टेड ऑफ हैविंग द सेम थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू डू ट्राई दिस, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। बट यस, मैसेज आ चुके हैं ऑफिस शाउट आउट के। वो है, पहला मैसेज है रोहित भाई का, वर्किंग एट द ऑफिस टुडे, बॉट थाई ग्रीन करी फॉर लंच, माई फेवरेट कुजीन इज थाई, जस्ट इन केस इफ यू वॉन्ट टू आस्क। अरे वाह, ये तो मैं पूछने भूल गया, बट थैंक यू रोहित भाई, आपने पहले ही बता दिया। थाई ग्रीन करी, ये देखना पड़ेगा कैसी होती है, लाइक आई वुड लव टू ट्राई यार। समीर कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम टुडे, माय वाइफ पैक्ड वेजिटेबल्स पुलाव बिफोर लिविंग फॉर वर्क। ओह दैट्स नाइस, दैट्स क्यूट। अच्छा वो निकले तो मैं वही देखूं, यार आप तो घर पे हो, फिर कहाँ निकले? फिर याद है, अच्छा यू नो शी लेफ्ट, शी वेंट फॉर वर्क, बट देन यू आर एट होम ओनली वर्किंग फ्रॉम होम। सो यप, थैंक यू समीर भाई। आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं, मियाँ उनका लंच ब्रेक राइट नाउ, बॉट अ चिकन पाए फ्रॉम द कैंटीन, ओ ऑफिस कैंटीन आई गेस, आई होप यही हो, आई थिंक या, मुझे उन्होंने लिखा तो नहीं, क्लियर तो नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल अमेजिंग मैसेजेस। एंड जो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है उसके लिए भी आई होप कि आप मुझे कुछ मैसेजेस भेजे कि यू नो जो बची हुई जो डिश होती है, नहीं क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओवर जो फूड होता है ओवर जो एक दिन पहले होता है, तो उसका आप क्या करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो यस, 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेल अमेजिंग सॉन्ग अभी जस्ट चलाया है। और मेरा एक सवाल था आपसे पहले कि आप लेफ्ट ओवर फूड का क्या करते हैं, कैसे उसको रीयूज करते हैं या फिर आप फेंक ही देते हैं। जवाब आया है एज ऑलवेज रवि भाई का सबसे ऊपर, लेफ्ट ओवर राइस बिकम्स फ्राइड राइस द नेक्स्ट डे, नथिंग गोज टू वेस्ट एट माई प्लेस। दैट्स सो नाइस एंड सो गुड टू हियर दैट। प्रिया कहती है आई यूज लेफ्ट ओवर रोटी टू मेक रोटी रोल्स फॉर लंच, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी क्विक थिंग। आई मस्ट से काफ़ी इजी होता है, लाइक बीच में डाल दो। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी मॉम जो है वो जो गर्म पराठा होता उसमें शक्कर डाल के एंड शी यूज टू यू नो गिव इट टू मी, जो ऑब्वियसली स्कूल जाते जाते जो लंच ब्रेक होता है वहाँ पे तो तब खाते थे, इतना यमी लगता था, बहुत यमी लगता था। देव भाई कहते हैं any leftover curry goes perfectly with the toast or wraps the next day. Nice. Anjali कहती है leftover chicken becomes sandwich. अरे वाह। करण कहते हैं pizza is breakfast for next morning. अरे वाह nice. But pizza रोज थोड़ी ना खाते हो गया I hope. नेहा कहती है I make the toasty with leftover curry. That is so cool. मतलब mostly either लोग sandwich यू बना रहे हैं या फिर रोटी को लेके कुछ ना कुछ बना रहे हैं, एंड फ्राइड राइस ऑफकोर्स जो हम खुद ट्राई करते हैं कभी कभी। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस। एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना।

0: राहत फतेह अली खान का गाना सुना है तो यस, हियर इज द अपडेट। दिस सैटरडे 25 जुलाई यानी कि कल के दिन, आफ्टर सैटरडे इट्स ओवर। जी हाँ, राहत फतेह अली खान लाइव इन ऑकलैंड। सिर्फ 300 टिकट ही बचे हुए हैं, फाइनल 300 टिकट्स लेफ्ट आउट ऑफ 5,000 to 6,000 पीपल हु विल बी देयर। सो यस, वन लेजेंड वन नाइट। अब क्या करना है, लाइव राहत फतेह अली खान को लाइव सुनने के लिए आप जल्दी से dryTickets.com पर जाइए और टिकट खरीद लीजिए। और ये मत होना उनमें से कि भाई संडे को हम बोल रहे हैं क्या आप गए हैं और आप बोल रहे हो अरे यार हमको टिकट ही नहीं मिले एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यस, JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Production and Shahzada Production की तरफ से ये live event होने जा रहा है। राहत फतेह अली खान live in Auckland, The Trust Arena में, Saturday 25th July, यानी कि कल।
1: Lunchbox with Ketan।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
3: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप तो
5: आए आए बताओगे।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: Māori Mā, every day we make choices. Choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role? No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
8: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90, or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।
11: It's Carpet Court's massive three-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl, and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
12: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
13: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
14: Join our tribe!
13: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport.

0: चटनी शॉट्स।
1: चलिए लेटेस्ट खबर पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि न्यूजीलैंड में इस वीकेंड बहुत ठंडी साउथ वेस्टर्ली विंड आने वाली है, यानी कि अगर आपका प्लान बन रहा है तो मेक श्योर आप फुल प्रिकॉशंस के साथ बाहर जाएं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर घूमने जा रहे हैं तो बाहर तो निकलेंगे ही, ऐसा नहीं कि आप कार में ही रहेंगे या फिर घर में ही रहेंगे। बट अगर वेदर फोरकास्ट भी चेक कर लेना, अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है तो मेक श्योर कि आप ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सो यस, कई एरियाज में हैवी रेन स्नो स्पेशली साउथ आइलैंड के हिल्स रेंजेस में, और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से ट्रैवल डिस्ट्रप्शन हो सकता है। कुछ जगहों पर टेम्परेचर जो है करीबन -11 सेंटीग्रेड तक जा सकता है, गिर सकता है, और अथॉरिटीज़ ने लोगों को वेदर अपडेट फॉलो करने को भी कहा है। ट्रैवल से पहले कंडीशन चेक करने की सलाह भी दी है कि भाई कहीं पे भी घूमने जाओ तो मेक श्योर कि आप वेदर फोरकास्ट जो है वो ज़रूर देख लें, बिकॉज यू नो आई मीन लाइक यू डोंट वॉन्ट टू यू नो just by that one mistake jahan pe aap weather check na karo, you don't want to be amongst those people jo you know weekend over hote bole ki are yaar mere sath to ye ho gaya, mere sath to ho gaya, gaadi kharab ho gayi, etc, ya fir you know you never know. So yes, aap weather focus kare, aur agar aapko lagta hai ki weather bahut hi zyada ganda ho raha hai to try to avoid the trip if possible.
2: Lunchbox with Ketan.
3: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain,
2: iske piche
0: hum
2: Say, say, say.

आज का सवाल आप सभी से वो है, कौन सी कंट्री ने हमें समोसा दिया? जी हाँ, कौन सी कंट्री ने हमें समोसा दिया? आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे समोसे के बहुत ज्यादा फैंस होंगे। मैं खुद इतना ज्यादा समोसे का फैन हूँ, लाइक लिटरली आई जस्ट फील लाइक यू नो हैविंग समोसास एवरी डे। ऑब्वियसली नॉट सो गुड फॉर हेल्थ, बट अगर हेल्थ का नहीं होता इशू तो हेल्थ से मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट जस्ट दैट यू नो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी कंट्रोल ऑन आवर डाइट एंड हम जो खा रहे हो हेल्दी हो। बट अगर मुझे मौका मिलता तो समोसा और पिज्जा इज द वन थिंग लाइक यू नो आई वुड लव टू एंजॉय इट एवरी डे। बट यस, माई क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री ने हमें पिज्जा दिया, सॉरी समोसा दिया? 555 is the number.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: आवाज गूंजेगी।
1: लंच के मंच पे
2: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है, मैं हूँ। 3 बजे तक इस आर में भी काफ़ी बातें होने वाली है, जैसे कि बॉलीवुड की खबर होगी, साथ में लेटेस्ट खबर भी आपको बताने वाला हूँ, और जो आखिरी मैंने सवाल किया था लास्ट आर में उसका भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन अभी भी आई एम स्टिल वेटिंग कि भाई जो समोसा है वो कौन से देश ने हमें दिया है, यानी कि कौन सी कंट्री में वो एक्चुअली इन्वेंट हुआ है, खोजा गया है, जो भी है। तो आप मुझे 5599 पे अभी भी भेज सकते हैं ना।
1: बचाओ क्या,

0: लंच टाइम रेंटलाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे उन चीजों की जहाँ पे यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी वेरी इधर ऑकवर्ड और नॉट वेरी ग्रेट, कि जहाँ पे किसी और ने गलती करी है बट यू फेल्ट सो इरिटेटेड दैट यू वांट टू शेयर ओवर हियर, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत देती कि यार इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया, या ये क्यों करते हैं, ये आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए, जिसे मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा। 5599 से नंबर
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: In New Zealand, discover the world sale is on now with flights to Aussie, the islands, Asia, USA and Canada. Sale ends midnight 24 July 2026. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
7: Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant.
6: In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
8: Auckland, tayyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
11: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
12: जबरदस्त हिट्स
13: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं.
12: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
13: हम
12: लंच टाइम रेंट लाइन.
14: चलिए लंच टाइम रेंट लाइन की बात कर लेते हैं. हाय केतन, ये पहला मैसेज है. हाय केतन, टुडेज रेंट इज अबाउट पीपल हु लीव द ऑफिस माइक्रोवेव डर्टी आफ्टर हीटिंग देयर लंच. यार ये बड़ी दिक्कत है ऑब्वियसली. यार अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यार थोड़ा ध्यान रखिए यार, थोड़ा साफ़ सफाई भी करें, बिकॉज यू नेवर नो यार अगला बंदा क्या खा रहा है, वेदर दे आर ए ओके और नॉट. प्लस स्मेल जो ऐसी होती है, मुझे लगता है कि जब आप माइक्रोवेव कर ले तो उसको जो डोर है उसको थोड़ा ओपन कर देना चाहिए माइक्रोवेव का, ताकि जो स्मेल है वो भी बाहर चली जाए. ये मैसेज भेजा है मीना ने. थैंक यू मीना फॉर योर मैसेज. केदन भाई, why do people keep pressing the lift button 5 times? It's already coming. यार ये तो funny सवाल पूछा है. ये तो मेरे को भी नहीं पता यार क्यों दबाते रहते हैं. उनको लगता होगा शायद कि जल्दी जल्दी दबाने से खुद इरीटेट हो जाएगी लिफ्ट वाली, वो बोलेगी ठीक है आती हूँ. बोला केतन, किशन हियर फ्रॉम मैंगरे. फिजी इंडियन मम्स ऑलवेज से ईट अ लिटिल मोर Even after you have had 3 plates. यार ये तो माँ का प्यार होता है यार. Not just Fiji Indian, but मेरे को लगता है हर एक कल्चर में होता है. You know, every mother wants their kids to be healthy and you know doesn't compromise in any kind of food. और जितना प्रोटीन या जितनी हेल्दी चीज़ें उन्हें मिल सके, ये तो माँ चाहती है बस. एंड ऑफ़ कोर्स दे ऑल्सो फील कि यार भाई एक दो से क्या होगा या फिर दो तीन से क्या होगा, थोड़ा एक और.
15: लंच बॉक्स विद केतन.
16: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
12: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम.

0: हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के सेगमेंट में आपका स्वागत है। 24 जुलाई आज के दिन 2000 यानी कि ठीक 26 साल पहले न्यूजीलैंड के सोल्जर प्राइवेट लियोनार्ड मैनिंग की टिमोर लेस्टे में पीस कीपिंग मिशन के दौरान अम्बुस में शहीद हो गए थे और वो वियतनाम वॉर के बाद कॉम्बैट में शहीद होने वाले पहले न्यूजीलैंडर्स बने थे। ये इंसिडेंट ईस्ट टिमोर की इंडिपेंडेंस के बाद हुई हिंसा के दौरान हुआ था और न्यूजीलैंड के में मिलिट्री हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है इसे। सो यस, इट कैन बी अ ट्रिब्यूट। ऑफकोर्स आज ट्रिब्यूट आप दे सकते हैं 5599 पे, जो कि आज के दिन हुआ था टिमोर लास्टे में पीस कीपिंग करने के दौरान इनकी ये शहीद हो गए थे। लियोनार्ड मैनिंग जी।
1: लंच के मंच

0: वेल, लॉटो दुनिया से एक खबर लेके आया हूँ। क्राइस्टचर्च की एक वुमेन को एक हफ्ते बाद पता चला कि उसने 1 मिलियन लॉटो डॉलर जीत लिए हैं। जब टिकट स्कैन किया रसीद पर 6 जीरोस देखकर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। पहले हस्बैंड को लगा सिर्फ 1000 जीता होगा, लेकिन बाद में दोनों को समझ आ गया कि वो मिलियनेयर बन चुके हैं। अब कपल आराम से प्लान कर रहे हैं कि इस प्राइज मनी का क्या यूज करें। हमें दे दो यार, मुझे दे दो, मेरे घर का लोन है, कार का लोन है, हर एक चीज का लोन है। सो यस, बट यस, अगर आप जीतते हैं, आप उनमें से होते हो जो 1 मिलियन अगर होता, तो आप क्या करते हैं उस पैसे का? आई नो यार, कुछ फनी सा रिप्लाई होना चाहिए, नॉट वेरी सीरियस वाला यार, ऑनेस्टली। लंच
1: बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम।
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: बॉलीवुड से खबर आया है. जी हाँ, लिखे आया हूँ. अभी जिस तरह से जंतर मंतर दिल्ली में, इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, फाइनली बॉलीवुड के सितारे ने भी मैसेज किया है. वो है सलमान खान. आई थिंक बड़े स्टारों में सलमान खान इज द फर्स्ट वन टू डू दिस. आई मीन, जो इतने बड़े ग्लोबल स्टार है, सलमान खान ने नीड प्रोटेस्ट वायलेंस और उस पर रिएक्ट करते हुए स्टूडेंट को सपोर्ट किया है. और उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत करेजियस है और गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए. सलमान ने अपील की है कि इस मूवमेंट को पॉलिटिकली हाईजैक ना किया जाए और एजुकेशन के साथ इशू को प्रायोरिटी दी जाए. वैसे सलमान खान ने लिखा है, इट वॉज सच अ पीसफुल मोमेंट, फील सो सैड दैट आई हैड टू टेक अ वायलेंट टर्न. माय हार्ट गोज आउट टू द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज हु वर हर्ट. पेपर लीक इज अ वेरी सीरियस इश्यू एंड आई एम ग्लैड टू नो एंड सी दैट द किड्स ऑफ आवर कंट्री हैव कम टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर.
0: दिल से

वैसे मैं आपको इवेंट के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि एक सवाल क्या था कि समोसा को दुनिया भर में किसने इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया में ये कैसे पहुंचा। वेल जस्ट ऑब्वियसली आपको पता ही होगा दैट समोसा इंडिया से नहीं है, इट वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय पर्सिया। जी हाँ, ईरान, ऑब्वियसली आज की तारीख में ईरान कहते हैं, वेयर इट वॉज कॉल्ड सम्बूसा या फिर सेम्बोसाग। इंडिया में ये आया था करीबन 10th to 13th century, यानी कि प्रॉपर फिक्स्ड रिकॉर्ड्स नहीं है टू कंफर्म दैट कौन से एग्जैक्ट ईयर में ये यहाँ आया था, बट अज्यूम कर रहे हैं कि शायद 10th से 13th शताब्दी, यानी कि 10th to 13th century के बीच ये पहुँचा होगा इंडिया बाय सेंट्रल एशियन और मिडल ईस्टर्न जो ट्रैवलर्स थे तब के माइग्रेशन जो भी था वो उन्होंने किया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे कहाँ कोई बाउंड्री हुआ करती थी। फेमस स्कॉलर आमिर खुसराव मेंशनड अ मीट फिल्ड पेस्ट्री एंजॉयड इन द दिल्ली।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। क्योरा नमस्ते। वैसे आप बने रहे, 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ कॉफी ब्रेक के लिए। सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली आफ्टर 3। अगर मौका मिला तो शायद इस बीच भी आपसे बात करवा पाऊँ, अगर वो टाइम निकालती हैं तो, कुछ ऐसा अगर टॉपिक आता है तो। बट यस, अभी के लिए आप एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना। और अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन अगर आप मुझे 12 बजे से सुन रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो। बचाओ क्या,

0: इस आर की लेटेस्ट खबर यह है कि वेस्ट कोस्ट के एक काउंसलर ने सजेस्ट किया है कि पॉसम्स और डियर जैसे पेस्ट एनिमल्स को वेस्ट करने की बजाय उनका ऑर्गेनिक मीट यूज किया जाए। उनका मानना है कि इससे पेस्ट कंट्रोल के साथ साथ लोकल फूड सप्लाई और इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिल रहा है मिल सकता है। लेकिन इस आइडिया पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी को लेकर डिबेट भी शुरू हो चुकी है, जहां पे मिक्स रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग फेवर में जवाब दे रहे हैं तो कुछ लोग अगेंस्ट कि भाई इसको, इससे एनवायरनमेंट को लेके काफी, वाइल्ड लाइफ को लेके काफी इम्पैक्ट हो सकता है।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: या रिप्ले।
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, podcast की अगर नाम कहे तो Roa app सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू तो आप हमें सुन ही सकते हैं, या फिर हमें 5599 पे भेज दीजिए एक टेक्स्ट जिसके थ्रू आपको एक लिंक मिलेगी पॉडकास्ट की, जिसमें शनील लाल वो खुद आए हैं जिन्होंने LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म, रिप्रेजेंटेशन इन सब के बारे में बात की है, प्लस उन्हें क्या बोला जाता है, क्या तकलीफ होती है, क्यों बोला जाता है, और ऑफ कोर्स फ्यूचर क्या है, एंड इक्वालिटी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। काफ़ी आई ओपनर वाला था, लाइक यू विल बी अमेज्ड कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, कुछ और भी बातें मैं सुन सकते हैं, जैसे कि अगर आप BF@5599 पे भेजेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी जो कि विजय एंड पूजा का कन्वर्सेशन के बारे में जो बनाया कोलाज, उसे आप सुन सकते हैं। एंड ऑफकोर्स मेरा नया गाना सफाई 2.0 आ चुका है, एंड इट हैज क्रॉस्ड 70,000 यस्टरडे ओनली, सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 75,000 व्यूज राइट नाउ, बट उसे आप प्यार दीजिए और सफाई 2.0 को लेके आप प्लीज़ जितना इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, ताकि उसकी एल्गोरिदम बढ़े, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और ये तब तक पहुंच जाए जब तक हम किसी को ढूंढना लेते हैं। यानी कि माय मेन इंटेंशन वुड बी टू लेट दिस म्यूजिक वीडियो रीच टू एड शीरन एंड अरिजीत सिंह हिमसेल्फ एंड ऑफकोर्स द एंटायर क्रिएटर्स ऑफ सफायर ओरिजिनल। एक परफेक्ट ट्रिब्यूट है मेरी और मनप्रीत भाई की तरफ से टू गिव एंड टू डू समथिंग फॉर न्यूजीलैंड ऑफकोर्स, क्योंकि न्यूजीलैंड को दिखाना चाहता था मैं इस वीडियो के जरिए एग्जैक्टली लाइक हाउ एड शीरन हैज शोन इंडिया वैसे ही। सो यस, जितना आप शेयर कर सकते हैं, जितना आप लाइक कर सकते हैं, और जितने बार कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे के वीडियो पे जाके जो आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा, डू दैट।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
4: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलेस करण ओजला यहाँ आ रहे हैं। अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं तो मुझे के ए लिख दीजिए और आपका फेवरेट गाना उनका क्या है वो 5599 पे भेज दीजिए अपने नाम के साथ, और इसी के थ्रू आप चले जाएंगे ड्रॉ में शामिल, और उस ड्रॉ में आप हो सकते हैं डबल पास जीतने के हकदार यानी कि विजेता, पर उसके लिए आपको पार्ट लेना ही पड़ेगा। ग्लोबल सेंसेशन करण ओजला आ रहे हैं यहाँ पे पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके, एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी होने वाली है, परफॉर्मेंस होने वाली है बाय इक्की, और आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई करिए। hum.rewa.nz और livenation.co.nz इज द वेबसाइट जहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड ऑफकोर्स 25th of August ये शो होने जा रहा है स्पार्क एरिना में, विच इज़ गोइंग टू बी एज बिग एज एनी अदर बिग सेलिब्रिटी शोज़।

0: चलिए बात करते हैं अभी एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल जो कि हेल्थ को लेके आया है, हेल्थ अपडेट। आजकल सुपरमार्केट्स में हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स का ट्रेंड जो है वो काफी जोरों शोरों से है और मैं तो कहूंगा कि और भी बढ़ी गया, पहले भी था ये लेकिन इतना नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोटीन जरूरी है लेकिन हर इंसान को एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। हर कई ब्रांड्स जो है इस ट्रेंड को मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं और इसीलिए सिर्फ हाई प्रोटीन लेबल देखकर प्रोडक्ट खरीदने के बजाय बैलेंस डाइट पर फोकस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, दे थिंक दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रोटीन ओवर देयर या फिर प्रोटीन से भरपूर है और उसी चक्कर में वो क्या खरीद भी लेते हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है, आपको इतने ज्यादा जरूरत नहीं है प्रोटीन की जितना आपको लगता है बाय लुकिंग एट दोज थिंग्स। एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग हेल्दी, एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग द वेजीज एंड यू नो नेचुरल ग्रीन थिंग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स and some fruits as well, so definitely I feel like you should be fine with the number of things. But yes, aap jab bhi aap dekhte hain kisi banner pe, agar ye soch ke aap lete hain ki usse calcium milega, protein milega, to make sure kare ki sirf front wale page pe hi na jaye aur aap back mein bhi thoda sa nazar dal de.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
1: Iske piche
3: hum. March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
2: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
7: It's back to school at Woolworths. Get Mother Earth Baked Oaty Slice Bars 6-pack, just $3.59 each. Or Fresh and Fruity Regular Yogurt 6-pack, just $3.99 each. Back to school at Woolworths. TCs and exclusions apply.
8: Own the game, own the gear. It's sale time at Rebel Sport. Score an epic 20-40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store wide. Here in Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: What if your next holiday wasn't just a holiday,
10: but the adventure everyone talks about?
9: Imagine chasing waterfalls,
10: wandering lush rice terraces,
9: catching unforgettable sunsets,
10: and relaxing at iconic beach clubs.
9: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
10: discovering incredible temples,
9: tasting world-famous street food.
10: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
11: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: राहत फतेह अली खान आ रहे हैं यहाँ पे 25 जुलाई को, यानी कि कल के दिन। बहुत ही बढ़िया होने वाला है शो, आप जल्दी से टिकट ले लीजिए dryTickets.com पर जाकर। कल के दिन द ट्रस्ट एरिना में होने वाला जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन की तरफ से ये इवेंट किया जा रहा है। एंड जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, सिर्फ 300 टिकट ही बची हुई है। सो यस, वन लेजेंड वन नाइट।

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही बढ़िया रहा आज का दिन, समय बातें और एक से बढ़कर एक गाने। आप बस बने रहिए, कहीं मत जाइए। सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक, बट मैं निकलता हूँ। आई विल सी ऑन मंडे। वीकेंड है एंड ऑफकोर्स कल शो है मेरा। अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ मेरा सोशल मीडिया चेक कर लीजिए कि मैं कहाँ कल कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। कल उसके अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, माई न्यू थिंग्स। सो यस, कीप लिसनिंग टू अस, स्टे ट्यून एंड एक से बढ़कर एक अमेजिंग से कॉन्टेंट हम लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए। हम 104.2 FM के जरिए सुनिए, 87.7 के जरिए भी बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने यहाँ पे चलाते हैं। मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड हैप्पी वीकेंड।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Bunnings has great value nailed across the store.
2: Like a wrap and move 105-litre moving bag, only $3.45. Or a 52-litre light-duty moving carton, just $3.45. Head in store or online for even more. Great value. Bunnings Warehouse.
3: Mytoten Club Members, ये आपके लिए। इस जुलाई शॉप कीजिए और स्कैन कीजिए अपना क्लब कार्ड एंड यूर इन द ड्रॉ टू विन 10,000 एयर पॉइंट्स प्लस वीकली एयर पॉइंट्स प्राइजेस भी। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट अमंगस्ट इट एट Mytoten Mega Westgate और Henderson.
4: When hard work calls from dawn's first light, Tianli Tractor Tires keep you rolling right. Premium performance at a price that's fair, with a comprehensive range for every job out there. For farmers and contractors tried and true, built for the tough demands you put them through. For value, grip and reliability all day and night, see your local dealer for Tianli Tires with a lifetime warranty. That's peace of mind done right. T's and C's apply. Tianli Ag Tires. Lifetime warranty.
5: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
6: Trade Depot home appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
8: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 3. The man who killed Nelson policewoman Lynn Fleming by driving into her will spend at least 22 years behind bars. After Hayden Tasker's sentencing today, Deputy Commissioner Jill Rogers acknowledged Lynn's family.
10: To Bryn, Aaron, Rainer and the wider family, your courage throughout this journey has been an inspiration to the rest of us.
9: The Trade Minister has rubbished justification for a new US tariff. Set at 12.5%, it's targeting countries that allegedly accept imports made through forced labour. Todd McClay isn't buying it.
11: The US is just finding another legal means to be able to put tariffs back in place. We take our obligations very seriously. We deal with these issues through many trade agreements.
9: There are delays through the Waikato town of Cambridge after a fatal crash this morning. The area around the State Highway 1 on and off ramps on Victoria Road remains shut for a scene exam. Motorists should follow the diversions. Auckland Council has bought 100 hectares of land for a new cemetery despite opposition from the local board. It's purchased two sites near Karaka in rural South Auckland for $16 million. To sport, final chances today for some All Blacks hopefuls to impress coach Dave Rennie, who names his squad for South Africa on Monday. All Blacks lock Fabian Holland returns to the Otago side after suffering that shoulder injury 5 months ago. Rugby was shift four. And the first full day of competition at the Commonwealth Games in Glasgow gets underway this evening. Two of New Zealand's star swimmers are in the heats, Erica Fairweather and Lewis Clairbert.
8: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
8: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.4 डिग्रीज है और आज को ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. स्ट्रॉन्ग विंड वॉच है आज के लिए एंड फॉर द वीकेंड एज वेल.
14: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
15: Good afternoon, you're listening to Coffee Break, or you could call this the drive show with Sandy and Rusbe. Hi Sandy, good afternoon.
13: Good afternoon Rusbe, kaise ho tu?
15: Main bahut badhiya hu Sandy, aap kaise ho yaar? It's Friday finally.
13: It is Friday and Friday aate hi ek sawal to hota hai Rusbe.
15: Kya sawal hota hai batao?
13: One word mein whole week.
15: One word mein whole week. Meko lag raha hai this whole week I would say happening.
13: अरे एग्जैक्टली वर्ड था मेरे पास.
15: क्या बात कर रहे हो सीरियसली?
13: हैपनिंग. या
15: ओह माय गॉड,
13: इट वाज क्वाइट हैपनिंग एक्चुअली.
15: इट वाज क्वाइट अ हैपनिंग वीक मेरे लिए पर्सनली. तो इट हैज बीन क्वाइट अ सिक वीक.
13: या
15: बीमारी मेरे को पता नहीं यार, बहुत ऑफन मैं बीमार हो रहा हूँ अभी आजकल.
13: तुम वैसे सिक बोल सकते हो क्योंकि थॉट्स सिक आ रहे हैं, बीमार हो रहा हूँ.
15: क्या कन्फेशन भी आपको अभी करना है कि 4 बजे के बाद?
13: 4 बजे के बाद आई विल डू अ कन्फेशन रिगार्डिंग जेन ज़ीज़.
15: अच्छा ओके.
13: या सो या मैंने कुछ बोला था एंड अभी मेरे को लगता है मेरे को अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी.
15: सो यू आर टेकिंग इट बैक?
13: आई एम टेकिंग इट बैक.
15: ओके वेल, वी वुड वांट टू टॉक अबाउट जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल दिस आफ्टरनून.
13: 4 बजे के बाद स्टे ट्यून्ड.

0: सुन रहे हैं हम ब्लिंक बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स आपके लिए यहाँ पे हम कॉफी ब्रेक में सैंडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती है अबाउट हाइक्स एंड ट्रेल्स. ये वीक तो कुछ होगा नहीं ना सैंडी, हाई विंड वॉच है.
1: हाई विंड वॉच है एग्जैक्टली. तो मैं इस वीकेंड पे रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रही हूँ कि आप कहीं बाहर जाओ, बट आई विल से इंडोर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, यू नो दिस ना.
0: नहीं
1: या इंडोर में तुम वो रॉक क्लाइंबिंग वगैरह जो है
0: वो तो खर्चे वो, वाली एक्टिविटीज हो जाती है ना.
1: वो खर्चे वाली भी है.
0: आई एम सेविंग फॉर बाली एंड बैंकॉक राइट नाउ.
1: बाली एंड बैंकॉक. अगर आपको भी हमारा ट्रिप ज्वाइन करना है बाली एंड बैंकॉक, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप ड्राइव 1559. इससे क्या होगा कि आपको फॉर्म मिल जाएगा और इस फॉर्म में आपको फिल करने के बाद इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द पैकेज डील कि कितना खर्चा होगा उसमें एक ही टाइम जो आपको पे करना है. बाकी इट्स सॉर्टेड. फ्लाइट टिकट्स एक्चुअली में सॉर्टेड है. अकोमोडेशन 4 to 5 star की सॉर्टेड है. तीनों टाइम का खाना सॉर्टेड है एंड एक्टिविटीज भी सॉर्टेड है.
0: एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड है तो और प्लस हमारा साथ भी सॉर्टेड है.
1: या
0: So, मतलब yeah, a lot of things together.
1: अपने बारे में तो थोड़ी बहुत गारंटी दे सकती हूँ.
0: Excuse me?
1: के बारे में,
0: आपके बारे में इनफैक्ट गारंटी नहीं है लोगों को. वो अनिल भाटिया जी वही चीज का डर है उनको.
1: क्या बात कर रहे
0: हो? सैंडी को बस खुश रखना है.
1: सही है.
0: या
1: सो या अगर आपको भी जाना है ज्वाइन करना है ड्राइव लिखे भेजिए 5599 पर.

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह.
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: नॉनस्टॉप बॉलीवुड.
13: हम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
14: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. वैसे वीकेंड पे एक शो भी होने वाला है आपके लिए, राहत फतेह अली खान.
15: या राहत फतेह अली खान, yes, ये लाइव यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं.
14: Remember, यहाँ पे हम पे नहीं, हाँ? ट्रस्ट अरीना में.
15: Yes, ट्रस्ट अरीना. Thank you for clarifying रुस्बे.
14: Yeah.
15: ट्रस्ट अरीना में एंड सुपर सिटी में तो वो ऑलरेडी आ ही चुके हैं एंड कल आपके लिए वो परफॉर्म करेंगे. बहुत ही सुपर्ब शो इनका रहता है. अपने बेटे के साथ एक्चुअली में ये हमेशा परफॉर्म करते हैं. एंड इस बार इनके जो सेट्स रहने वाले हैं, इसमें कवालीज, सूफी, बॉलीवुड सॉन्ग, इट्स गोना बी अ पैकेज.
14: जी,
15: और इनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है. उसमें
14: जो लाइटिंग, साउंड अरेंजमेंट, वो सारी चीजें बहुत ही फर्स्ट क्लास होती है. सो डेफिनेटली यू शुड अटेंड दिस इवेंट. आई डोंट नो अभी कोई टिकट्स बाकी भी होंगे कि नहीं. आई थिंक बहुत कम टिकट्स बाकी
15: है. अभी फाइनल कुछ टिकट्स बाकी है. सो यू कैन ट्राई योर लक, आई विल से, बिकॉज डोर सेल्स आई डाउट रहेगी, बट यू कैन, आई थिंक सिक्योर रहेगा. आप ऑनलाइन टिकट खरीद लीजिए. drytickets.com पे जाइए, जस्ट सर्च राहत फतेह अली खान एंड यू कैन बाय द टिकट.
12: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
16: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
17: मैं लाऊं अपना ए गेम.
12: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, आपके लिए यहाँ पे हम गाने लेकर आ रहे हैं।
1: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। रुजबे, वैसे एक आर्टिकल आया है, देयर इज अ स्टोरी व्हिच हाइलाइट्स द चैलेंजेस दैट कैन अराइज व्हेन ट्रैवल डिसरप्शंस अफेक्ट पैसेंजर्स विद हिडन डिसेबिलिटीज। या सो कीवी मदर है, उन्होंने बोला है कि व्हाट वाज मेंट टू बी डायरेक्ट एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट ऑकलैंड टू बाली, it turned into 30+ hour journey.
0: Oh my god.
1: Yeah. So direct service jo thi ye cancel ho gayi and then they were rerouted. So ek aur jagah se. So she specifically booked and paid extra sky couch ke liye because uske liye extra paise lagte hai na. But the flight jo thi comfortable ki jagah jo thi uske autistic son ke liye trouble zyada ho gaya. So it's actually something to think about now.
0: Yeah, and I think that's the thing na, ki kafi bar ye sari cheezon ke bare mein pehle socha nahi karte the itna.
1: Yeah.
0: So I don't think flights have resources to cater for such
1: things.
0: I don't know what exactly it's called.
1: So according to the mother, jo extended travel tha, unsuitable seating thi baad mein, multiple flights thi jiske wajah se her son was very distressed. Because 20 hours without sleep and he became overwhelmed and was left crying and vomiting as well.
0: Oh no.
1: It was quite a trouble. So her son was वैसे wearing a New Zealand को वो hidden disability sunflower lanyard होता है।
0: हाँ, एक sunflower का lanyard होता है।
1: तो which was intending to signal कि जो passenger है may need extra support, but she felt कि वो needs जो थी वो recognized नहीं की गई थी during this journey.
0: So sunflower lanyard जब भी कोई पहनता है उसका मतलब है कि special needs के है ये.
1: Yeah.
0: And that could be anything. That could be from autism to anything else.
1: Anything else as well. Mm. Yeah. मतलब कि उनको extra attention की वहाँ पे ज़रूरत है. So Air New Zealand का response भी आया है वैसे. उन्होंने बोला है कि वो recognize करते हैं hidden disabilities for sunflower lanyard. ट्रेन स्टाफ जो था इन्होंने सपोर्ट किया था वहाँ पे आई थिंक कुछ पैसेंजर्स को एंड दे अलाउ कस्टमर्स टू रिक्वेस्ट स्पेशल असिस्टेंस बिफोर ट्रेवल सो माइट भी कुछ ऐसा बीच में हुआ होगा विच एक्चुअली डिस्टर्ब्ड द ट्रेवल
0: या सो यू लेट अस नो व्हाट हैज बीन द लॉन्गेस्ट ट्रैवल डिले फॉर यू मतलब आपके लिए सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल डिले क्या होता और 5599 पे आप ड्राइव कीवर्ड के साथ यहाँ पे लिख कर भेज सकते हो।
1: कभी कैंसिल हुई है फ्लाइट तो कितने लंबे टाइम के लिए वो कैंसिल रही है डिले हुई है कितने लंबे समय के लिए तुम्हारे लिए क्या था
0: मेरे लिए नहीं हुआ है कभी ऐसा
1: कभी नहीं हुआ है
0: नो टच वुड
1: मेरे लिए हो चुका है ना फ्लाइट कैंसिल देन सिंगापुर में लेकिन देन स्टे मिला था
0: ओ वाओ Yeah. मैंने हमेशा से होप किया कि मेरे को ऐसा फ्री में स्टे मिले यार आई एम अ सकर फॉर फ्री थिंग्स लेकिन मेरे को नहीं अब तक कभी
1: ऐसा हुआ नहीं
0: बट आई थिंक इट्स गुड ओनली क्योंकि बहुत हैसल हो जाता है ना
1: हैसल हो जाता है यार इट इज 100% वापस जब आना होता है तो वो भी तो हैसल है ना

0: ड्राइव शो जारी है आपके लिए ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे शुरू हो ही जाएगा बहुत जल्द,
1: बहुत ही जल्दी ड्राइव शो शुरू हो जाएगा। और ड्राइव शो में जैसे कि बोला रुजबे ने, हम टॉपिक करने वाले हैं जेन जी वर्सेस मिलेनियल्स।
0: Yeah, because that is kind of a trending topic right now. हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है कि कैसे Gen Z क्या कमाल कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसके अराउंड मैं सोचा कि यार थोड़ी बातें होगी तो सही होगा, मुझे लग रहा है।
1: या और आपका ओपिनियन भी यहाँ पे जानना चाहेंगे,
0: आपका ही ओपिनियन जानना चाहेंगे ना कि आप क्या फील कर रहे हो उसके बारे में।
1: 0800 हम पर
0: अभी नहीं
1: लाइक 4 बजे के बाद जब ये टॉपिक हम छेड़ेंगे उस समय
0: तो 0800 004866 इज द नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल एंड वी कैन टॉक अबाउट इट।
1: एंड ऑल्सो हमारा पॉडकास्ट चेक कीजिएगा, ये सब बातें हम कर ही रहे हैं तो एक पॉडकास्ट को लेके हम बहुत मेहनत करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड राइट पीपल कुछ सब्जेक्ट्स को लेके जो कि अनफिल्टर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। सो प्लीज डू चेक अवर पॉडकास्ट। इस बार हमने शनील लाल के साथ बात की है एंड शनील लाल जो है इन्होंने हमसे खुल के बात की है अबाउट LGBTQ कम्युनिटी राइट्स के बारे में, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इसके बारे में, कन्वर्जन थेरेपी के बारे में भी।
0: जी तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर सुनिएगा, इसमें हमने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझी है। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं थी यार, अभी सैंडी ने जो वर्ड्स यूज़ किए आई डोंट थिंक काफ़ी लोगों को इन सब का मतलब भी पता होगा।
1: कन्वर्जन थेरेपी क्या होती है या
0: हाँ, बट उसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो उसके लिए पॉडकास्ट आप ज़रूर सुनिएगा एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव यंग किड्स ये पॉडकास्ट आप जरूर सुनिए बिकॉज हमने वहाँ पे स्कूल के रिलेटेड भी टॉपिक्स कवर किए
1: या इवन इलेक्शंस के रिलेटेड हमने टॉपिक कवर किया है। सो मैसेज ऑन 5599 ड्राइव लेके भेजेंगे तो ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा।

0: आती है स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली 799 ऑन सेल नाउ.
1: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड. द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़वे.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: चार बज के 3 मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ एंड रिज़वे. गुड आफ्टरनून रिज़वे, कैसे हो तुम?
4: हाय, गुड आफ्टरनून सैंडी. शुरू भी हो गया ड्राइव शो यार इतने जल्दी, क्या बात है.
3: 4:03 हो चुके हैं.
4: हाँ वही, मतलब अभी तो बस ब्रेक लिया ही था मैंने और 4 बजे क्या यार. एनीवे, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द ड्राइव शो. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज यहाँ पे हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं,
3: चर्चा करने वाले. पे बात करेंगे. वैसे हमने पूछा था ना कि कितनी देर आप स्ट्रक रहे हो.
4: हाँ,
3: तो एक का मैसेज आया यहाँ पे, 1 week डिले.
4: One week delay.
3: I know, stuck at Nandi Airport during coup.
4: Oh my God, yeah, yeah, yeah.
3: Eventually went back to Bombay Airport. My God, yeah.
4: क्या बात कर रहे हो? Nandi से Bombay Airport?
3: तो वहाँ से आए होंगे ना?
4: Oh.
3: Yeah. इतना मेरे को समझ में आ रहा है.
4: क्या बात है?
3: Went back to Bombay Airport, मतलब कि Bombay से ही आ रहे होंगे.
4: Oh, तो one week वो वहाँ पे थे.
3: Yes.
4: That's crazy.
3: So, कैसा गया आपका पूरा का पूरा हफ्ता? मेरा और रुज़वे का तो एक ही वर्ड है, happening.
4: It's happening.
3: हिंदी में क्या बोलोगे तुम उसको?
4: हिंदी में
3: जो रेडियो पे बोल सकते हो पूरे हफ्ते को.
4: happening को क्या बोल सकते हैं?
3: या फिर कोई भी वर्ड जो तुम्हें ऐसा डिस्क्राइब करना हो ना.
4: मचाओ वीक था ये कसम से मचाओ वीक था.
3: हलचल
4: लेकिन मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा वीक था ये ऑनेस्टली, बिकॉज देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ न्यू फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पे.
3: या इंस्टा पे बाबा ने मचा के रखा हुआ था. ऐसा था ना, बाबा ने बवाल मचा के रखा हुआ था, ऐसा बोल सकती हूँ मैं.
4: या नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं समझाया, लेकिन मचाया तो भाई जेंजीज ने इंडिया में, जिसके ऊपर हम लोगों ने भी हमारे हाथ सेक लिए थोड़े बहुत. बट आज टॉपिक हम करने वाले यही अराउंड जेंजी वर्सेज मिलेनियल, नॉट वर्सेज बट जेंजी एंड मिलेनियल्स, इसके अराउंड एक टॉपिक करने वाले.
3: सो स्टे ट्यून, गाना सुनेगा थोड़ी देर में, आपके यहाँ पर कॉल्स भी लेंगे 0800 00 हमें
4: 0800 00 4866. मुझे पता है काफी लोग जेंजीज की बहुत वाह वाह कर रहे हैं और बहुत उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं. सैंडी इज ऑल्सो वन ऑफ देम, राइट?
3: या
4: सो वी आर गोना हैव अ चैट अबाउट दिस जेंजीज एंड मिलेनियल्स. ओके, लेट्स हैव अ चैट.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: You're listening to the Drive Show with Sandy and Rizbe, और आपके साथ हम यहाँ पे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इज दिस राइट नाउ द गुड टाइम टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक और शाल वी वेट फॉर 5 o'clock, 5 बजे के बाद ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा करने
3: है। नहीं, इसी आवर में कर सकते हैं। इफ वी वांट टू बाय मोर टाइम, वी कैन डू दैट एज वेल।
2: अच्छा, तो चलो टॉपिक छेड़ देते हैं। लेट्स सी इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू कॉल अस।
3: और एक कंपटीशन भी लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन कंपटीशन लॉन्च करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी सुपर सिटी में राहत फतेह अली खान आ चुके हैं। कल इनका शो होने वाला है ट्रस्ट अरीना में 6:30 बजे।
2: जी, और ये शो जो होने वाला है, राहत फतेह अली खान स्टेज पे आने से पहले उनको जो स्टेज पे लेकर आने वाले हैं, वो एक बहुत खास हस्ती है।
3: वो तो बहुत ही खास हस्ती है।
2: जी, तो आप जरूर जाना शो में देखने के लिए इस खास हस्ती को,
3: और उस खास हस्ती की फोटो खींच लेना, क्योंकि जो जाएंगे उसके दोस्त लोग वो तो फोटो खींचेंगे ही नहीं। उस खास हस्ती की आप जरूर फोटो खींच लेना।
2: यार, मेरे को ना ये एक दिक्कत है हमेशा। कि एमसी को इज्जत मिलती नहीं है कभी।
3: आई नो यार,
2: मतलब सीरियसली यार, ये
3: बाद में जब इवेंट की फोटोज भी आती है ना, उसमें भी एमसी की इज्जत नहीं होती है।
2: मतलब कुछ एमसीओ की इज्जत नहीं होती है। आई वांट टू रीपुट दैट।
3: या
2: बट
3: फोटो ही नहीं होती है।
2: फोटो ही नहीं होती कभी, मेरी कभी नहीं आती है फोटो।
3: दिस इज सैडिंग, एंड दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल द वीडियोग्राफर्स आउट देयर and photographers out there,
2: they don't like you,
3: cover karte hain,
2: they don't like you, that's why they
3: kyun aisa karte ho, aapko kya hi dushmani hoti hai mc ke saath,
2: kya aap
3: video bhi jo aap banate ho event ki usme mc ko nahi dikhate ho?
2: Mere saath to abhi had ho gayi.
3: Kya?
2: To ek mereko kashika ji ne bola ki are tumhari video bahut viral ho gayi hai aisa waisa, to maine bola acha kaun si video hai, to ye krishna abhishek jo aaye the na yahan pe, to wo wali video, to maine bola acha acha dikhao mereko dikhao, maine dekha, main minus माइक्रो वन सेकेंड के लिए हूँ मेरा शॉट उसमें।
3: और वायरल हो गए।
2: माइक्रो वन सेकेंड के लिए मेरा शॉट है, मेरी आवाज यूज हुई है।
3: ओके,
2: बट वो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए, वो भी मैंने ना जो
3: मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक और इवेंट में, आई वाज जस्ट माइक्रो सेकेंड, लेकिन आवाज थी मेरी, बट आई वाज जस्ट माइक्रो सेकेंड की,
2: वो भी मुझे क्यों दिखाया,
3: नजर आते ही गायब हो गई
2: वो। मुझे लग रहा है मेरे को क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने जो वीडियोग्राफर दोस्ती है मेरा, तो मैंने उसको बोला था कि क्या फायदा तू मेरा वीडियो ले रहा है, तू डालता तो नहीं है कभी पोस्ट में अच्छे से, मतलब एडिट में तो कभी डालता नहीं है मेरी वीडियो। तो बोलता नहीं नहीं डालूंगा। तो उसने आज, मतलब इस बार माइक्रो वन सेकेंड मेरे को दिया है।
3: अरे वाह यार, दिस इज क्वाइट एन अचीवमेंट।
2: मैं इसको बहुत ऑप्टिमिस्टिकली लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं डालते, क्योंकि फिर फोकस कृष्णा अभिषेक से हटके मेरे पे आ जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई दे डोंट पुट मी, दैट इज हाउ आई लाइक टू
3: टेक इट। या ऐसा टेक तुम्हारा हर इवेंट पे होता है क्या?
2: बिकॉज़ आई एम बीइंग अ जेन ज़ी नाउ।
3: ओके,
2: डिलुलु इज द ओनली सोलुलु।
3: उनके डिलुलु ने तो बैंड बजा दी। सो या, और भी बातें करेंगे इसके बारे में, बट यस, राहत फतेह अली खान, रिमेंबर गाइस, कल इनका शो होने वाला है ट्रस्ट अरीना में, विच इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस।
2: एंड इसमें जोक्स अपार्ट, सैंडी इज गोइंग टू बी एमसीइंग द शो। तो
3: रिज़्बे को तो उसका तो फोन गायब हो जाता है ऐसा फोटो लेने के लिए।
2: नहीं नहीं, मैं लूंगा यार।
3: हाँ, तो लेट्स सी रिज़्बे।
2: इफ आई रीच ऑन टाइम आई विल।
3: या वही तो, जब एमसिंग खत्म हो जाएगी ये तब पहुंचेगा।
2: नहीं नहीं, मैं आऊंगा और मैं जरूर। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरी सीट बहुत पीछे होती है ना।
3: ओह या,
2: आई एम नॉट वीआईपी।
3: या 100%।
2: तो वो क्लैरिटी नहीं आती है।
3: क्या इतना महंगा फोन लेने का मतलब? कौन सा फोन है तुम्हारा, जी फोल्ड?
2: ये नहीं, इसमें मजा नहीं है। मेरे को लग रहा है हुआवे वाज द फोन, उसका जूम बहुत बढ़िया था।
3: वो वाह था।
2: हुआवे क्या?
3: अरे मैं राइम करी, वाह वाह ऐसा फोन था वो।
2: ओके, आप एमसी करो,
3: नेवर माइंड।
2: एनीवे, थोड़ी देर में आपके साथ थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे, यहाँ पे टॉपिक लेकर आएंगे, बट अभी के लिए बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में ये बढ़िया सा गाना।
1: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
5: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: PP Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. हमारे ना स्टूडियो में थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, इसलिए हम लोग अभी टॉपिक नहीं छेड़ पा रहे क्योंकि हमारा कीबोर्ड चलना बंद हो गया है.
3: या सो करण औजला का जो कंपटीशन आपके लिए लॉन्च कर देते हैं, ग्लोबल सेंसेशन करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके यहाँ पे बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं. स्पार्क अरीना में इनका शो होने वाला है 25 अगस्त को. सो अगर आपको डबल पास जीतना है, बहुत ईजी तरीका है. आपको KA यानी कि करण औजला, और आपको कौन सा गाना करण औजला का है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ये लिख के भेजना 5599 पर.
2: ठीक है, तो फटाफट भेज दीजिए. विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ करण औजला जो आप ऑन रिपीट सुन पाएंगे या जो आपको चाहिए कि वो लाइव परफॉर्म करे आपके लिए.
3: या सो 5599 इज अ नंबर. वो गाना रोमांटिक भी हो सकता है, वो गाना डांस नंबर भी हो सकता है, एनी सॉन्ग.
2: KA स्पेस आपका वो जो गाना है और आपका नाम 5599 पे अभी फटाफट भेज दीजिए. यू हैव 25 minutes
3: का समय. या
2: तो फटाफट भेज दीजिए. यहाँ पे दिव्या का मैसेज भी आ गया है, इतनी क्विक है वो. ये जो गाना उन्होंने लिखा है सैंडी, ये कौन सा टाइप का गाना है? ये सॉफ्ट गाना, मतलब गाने का नाम है सॉफ्टली, बट इज इट अ
3: सॉफ्ट, इज
2: सॉफ्टली
3: रोमांटिक भी है, लेकिन इसके ऊपर डांस भी बड़ा अच्छा है.
2: अच्छा, ऐसा है.
3: विकी कौशल ने इसके ऊपर डांस किया था.
2: ओ, विकी कौशल ने किया था इसके ऊपर. ये एक और सॉफ्टली के लिए आया मैसेज, यार क्या बात है.
3: दिस इज नॉट विकी कौशल के ऊपर फीचर्ड.
2: नहीं नहीं, वो उसने ऐसे नाचा था, मेरे को पता है वो. और वो फिर बहुत हिट हो गया था गाना ना. या दैट्स राइट. एनीवे, आपके लिए और भी गाने और भी बातें लेकर आएंगे, बट अभी के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में दिस इज सोनू निगम फॉर यू. एंजॉय कीजिए.

0: तब से सोनू निगम की आवाज और ये प्यारा सा गाना, यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: यस, 20 मिनट बाकी है 5 बजने में। अभी आपके लिए हम टॉपिक लेके आते हैं, सिंस हमारी टेक्निकल डिफिकल्टीज यहाँ पे
0: सॉल्व
1: हो चुकी है, इजी हो चुकी है वो। सो या, सो आज का टॉपिक जेंजीज एंड मिलेनियल्स को लेके है।
0: जेंजीज वर्सेस मिलेनियल्स,
1: नॉट इवन वर्सेस बट एंड आई विल से,
0: मैं तो बोल रहा हूँ वर्सेस कर, क्यों अभी ऐसा वर्सेस क्यों नहीं करना है, करते वर्सेस यार।
1: हाँ,
0: ये तो गलत हो गया ना।
1: ओके,
0: क्योंकि देखो हमने हमेशा से ऐसा बहुत जेंजीज को ट्रोल किया है कि अरे ये लोग तो हर एक चीज फील करते हैं, ये करते हैं। अब हमारा व्यू शायद चेंज हो गया है थोड़ा उनको लेकर।
1: या ये एक्चुअली मैं बहुत बार इसके बारे में बात की और मुझे भी ऐसा लगता था कि यार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं मे बी, एंड यू नो बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, ऐसी काफी चीजें मैंने
0: उड़े उड़े रहते हैं ऐसा आपको
1: उड़े उड़े। ये नहीं बोल रहा था रोज में।
0: अच्छा ठीक है।
1: यू नो होता है कई बार आप ऐसी चीजें बोलते हैं तो वो मैंने एक चीज तो ये बोली हुई है, वो पैशन नहीं है,
0: वो पैशन नहीं है,
1: वो पैशन नहीं है, ऐसी चीज बोली हुई है मैंने। एंड बट नाउ आई रियलाइज कि मेरे बहुत सारे वर्ड्स गलत थे।
0: ओके,
1: या मुझे ऐसा लगता है कि जेन ज़ी जो है ना, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल, मुझे ये लगता है। एंड व्हाई आई वाज कंपेयरिंग विद माय जनरेशन, आई थिंक मेरे को लगता है कि हमारी जनरेशन ने, मिलेनियल्स ने खास तौर पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा हुआ है, चाहे वो जॉब्स को लेके है। मतलब ठीक है, हमें इतना मिल रहा है, इतने में हो रहा है हमारा, ठीक है, इट्स ओके। हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते थे।
0: आई थिंक मिलेनियल्स ने मतलब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, मुझे लगता है जेंजीज और मिलेनियल्स क्या है, इज द टर्मिनोलॉजी बेयर मिनिमम। जेंजीज ने बेयर मिनिमम को डिफाइन किया है कि भाई ये बेयर मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो पार्टनर भी ढूंढ रहे तो उनका बेयर मिनिमम का एक क्राइटेरिया है कि ये बेयर मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए,
1: ये तो बेसिक है।
0: हाँ, ये तो बेसिक है।
1: हाँ,
0: आई थिंक मिलेनियल्स में वो चीज मिसिंग थी,
1: वो मिसिंग थी काफी चीजों को लेके, काफी चीजों को लेके हमें लगा कि हमें ये चीज मिल रही है तो ठीक है यार, हम अपना पैशन कंप्लीट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसे वर्ड्स मेरे को लगता है हमारे ऊपर थोपे गए जो हमें, हमने एक्सेप्ट किए कि यस
0: हम
1: सही है।
0: आई थिंक हम बेयर मिनिमम को प्रिविलेज मानते हैं।
1: या
0: मतलब जो बेयर मिनिमम होना चाहिए वो हम बोलते हैं कि नहीं ये प्रिविलेज है कि भाई हमको ये भी मिल रहा है, लाइक ये बहुत अच्छी बात है।
1: यस,
0: सो एनीवे
1: इट कम्स बैक टू हमारी पहले से जनरेशन से, क्योंकि उन्होंने भी एक स्ट्रगल देखी होती है, तो जब हमने वो स्ट्रगल देखी होती है तो वी आर लाइक कि हमें, वी आर डूइंग बेटर, कि एटलीस्ट ये तो हमें मिल रहा है।
0: या सो 0800-004-866 हम दोनों तो बात करते ही रहेंगे, हमको रुकना बहुत मुश्किल है, बट हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। एंड यू कुड बी अ जेन ज़ी, मिलेनियल, यू कुड बी अ बूमर, यू कुड बी एनी अदर जनरेशन एज वेल,
1: जेन एक्स है उससे पहले।
0: हाँ, जेन एक्स आप हो सकते हो। तो and if you don't know, no problem, give us a call and we might be able to help you. 0800-004-866 is the number, you can give us a call over here.
1: And millennials ne bhi tumhe pata hai na kafi protest wagera cheeze kiye hain, wo main pad rahi thi, but us samay because smartphones and everything, ye social media especially reels, ye sab itna trending nahi tha, to wo cheeze kabhi itni trending hui nahi।
0: Yeah.
1: वो हम जरूर कह सकते हैं,
0: लाइक बिकॉज आई रिमेम्बर एक जो बड़ा प्रोटेस्ट अन्ना हजारे के टाइम पे हुआ था, अन्ना हजारे
1: उसमें स्टूडेंट्स का काफी इन्वॉल्वमेंट था,
0: स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे और वो मिलेनियल स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, 2008-09 की बात है ना शायद, या 9-10।
1: या बट द रीसेंट वन की अगर बात करते हैं, 2016 में JNU का एक हुआ था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही, एंड आई रिमेम्बर वहाँ पे कुछ बॉलीवुड सेलेब्स भी गए थे, इवन दीपिका वाज देयर वहाँ पे एड्रेस करने के लिए।
0: हाय, आपसे बात करते हैं। हाय, गुड आफ्टरनून।
2: Hi, Rizbe, how are you?
0: Very good, how are you doing?
2: It's a good topic. मैं आपको बोलने वाला था, आज मेरे दिमाग में था कि आपको ये बोले कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होनी चाहिए।
0: देखो आपका मन पढ़ लेता हूँ मैं बिना यार।
2: ये मॉर्निंग में मैं बोला था कि Rizbe को मैसेज करता हूँ, because I got his number. तो because पता है यार, Rizbe हमारी जो जनरेशन थी ना 90s की लेके अभी तक जो हम 1980-1990 में बॉर्न है, तो हमें कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रखा गया था कि आप किसी से, आपको इतना ही मिलेगा, ले लो नेवर ना जाओ।
0: हाँ, हाँ, चाहिए तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो।
2: जनरेशन के, हाँ, आज की जनरेशन के पास बहुत ऑप्शन है, बिकॉज मैं अपनी एग्जांपल ही देता हूँ। जैसे मैंने हाई स्कूल पास आउट किया, आई यूज्ड टू बी अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो घर वालों ने मेरे पे थोप दी कि यू हैव टू डू BSc। उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला बेटा तू क्या करना चाहता है, तेरा क्या रीजन है, तेरे क्या पैशन है, ड्रीम्स है। वो आज की जनरेशन को ये थोड़ा सा फ्रीडम है, तो मेरे को लगता है कि इनको ना अभी एक स्टेप आगे जाना चाहिए, रादर देन आई वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर, मेरा 1 लाख का पैकेज हो, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम दिस दैट. नोबडी सेड आई वॉन्ट बिकम अ पॉलिटिशियन. यार मैं उतरता हूँ इस गंदगी को, सफाई करता हूँ, जाके अंदर जाता हूँ, लेट सी क्या होगा ज्यादा से ज्यादा. ये अगर अच्छे काम करोगे तो लोग बुरी गालियां तो आपको हर जगह पे मिलते हैं, चाहे आप किसी भी जॉब में कर लो, डॉक्टर हो, किसी भी जॉब में कर लो तो मिलता है, कॉर्पोरेट में हो तभी आपको सुनना पड़ता है. बट इफ यू बिकम अ पॉलिटिशियन तो रात को आपको एक अच्छी नींद तो आएगी कि हाँ यार मैंने अच्छा काम किया है, कोई बात नहीं. मैं रादर देन की मैं कंप्लेन कर रहा हूँ जी झंडे उठा के जी वी हैव टू चेंज द सिस्टम, इस पॉलिटिशियन को रिजाइन देना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ झंडे उठा रहे हैं, ठीक है, विच इज फाइन, आई एग्री. बट नेक्स्ट स्टेप क्या, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद यू हैव टू एंटर इन द पॉलिटिक्स, यू नो, कि यंगर्स को उनके व्यूज के उनके आइडिया को, जैसे आप तमिलनाडु में देख रहे हो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गेटिंग बेटर बिकॉज बॉलीवुड एक्टर वो जैसे मूवीज में दिखाता है रियल लाइफ में एक्शन दिखाना शुरू कर दिया.
1: या आई हैव एक्चुअली रेड अबाउट इट, विजय उनका नाम है ना,
2: टू डू समथिंग वेरी सीरियस नाउ, इट्स नॉट लाइक कि हाँ हम यहाँ पे आ गए हम तो बच गए ही. तो जैसे यहाँ पे ट्रोलिंग आ रही है, जैसे आपने बिहार की वीडियो देखी हुई कल, तो वो जनरेशन है इतने पुलिस के प्रोटेस्ट को तो उन्होंने मजाक बना दिया कि ये कर लो जो कर रहे हैं, हम मैं होता वहां पे मैं तो डंडे खा के वापस आ जाता, आई गेस. तो उन लोगों ने पानी की बौछार हो गई उसको हैंडल कर लिया और बैरिक लगाए, बैरिक उठा के ले गए, दे हैव देयर लाइक ओन. उनको बोला भी टीयर गैस एक बार ट्राई करा दो, हमें भी सैंपल देखना है.
1: नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसा था, वो उन्होंने ये बोला, अरे टीयर गैस की अवस्था नहीं है क्या यहाँ पे, बहुत ही कम इंतजाम किए हो आप.
2: इन लोगों को ना पॉलिटिक्स में जाना चाहिए क्योंकि वहां पे जाके भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया. इंडियन आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक ऐसी चीजें नहीं है कि यंगर हमारे गए नहीं कि हाँ आई एम ग्रेजुएट लेट्स गो टू पॉलिटिक्स, अपनी टीम बनाते हैं या अपनी पार्टी बनाते हैं, लेट्स कलेक्ट द
1: यंग पॉलिटिशियंस. मेरे को लगता है कि आप कहने की कोशिश कर रहे हो समथिंग,
0: इट इज द इकोसिस्टम. सो मेरे काफी दोस्त हैं जो पॉलिटिक्स में घुस गए काफी यंग एज में, और अभी द प्रॉब्लम इज इन पॉलिटिक्स इट्स अ वेरी स्लो प्रोग्रेशन. आपको ग्रास रूट लेवल से काम शुरू करना पड़ता है, काफी साल वहां पे देने के बाद फिर आपका धीरे धीरे यू नो पोजीशन बढ़ती है, एंड बाय द टाइम यू टर्न 50-55 तब जाके आपको एक प्रॉपर एक बड़ा पोजीशन मिलता है, बिकॉज़ वन ऑफ माय फ्रेंड इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस.
2: आई एग्री, बट देखो अगर इफ यू गो फॉर अ जॉब कितना कमा लोगे आप इंडिया में, 30-40,000 पॉलिटिशियन को इतनी सैलरी, आप यू यूज्ड टू बी स्टार्ट. मैं मेरा ये मानना है कि अगर मैं यहां पे सेटल ना होता ना, आई यूज्ड टू बी लाइक फुल टाइम जॉब एंड अ सोशल वर्कर स्टार्ट माई, बिकॉज आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी धीरे धीरे धीरे धीरे, व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू कि हाँ यार दिस पर्सन हैज टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेट्स गो ज्वाइन. कि छोटे लेवल पे आप पॉलिटिक्स बनो, पर बड़े बड़े लेवल पे तो अपना काम करते रहो, अपनी डेली आपकी अर्निंग के लिए, आपको सर्वाइव के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप सीधे पॉलिटिक्स नहीं बन सकते ना. बट हाँ आपके पास अभी जो लोग खड़े हुए उनको लोग ऐसे दीप के है वो अभी खड़ा हुआ, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है इट्स गुड कि टीनएजर्स के सारे साथ खड़े हो जाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो चेंज होगा ना कहीं.
0: मुझे नहीं लगता दैट वुड बी टेकन पॉजिटिवली. मुझे लग रहा है दैट वुड बी टेकन वेरी नेगेटिवली. वो बोलेंगे कि अरे यही तो इसका एजेंडा था पॉलिटिक्स में घुसने का, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जो बदनाम है. मतलब वहां पे कोई जो भी जा रहा है वो मतलब पैसे बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन ऐसा परसेप्शन है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा है, बट परसेप्शन ही है.
1: लेकिन मैं एक्चुअली में खुश हो जाऊंगी अगर वो बंदा पॉलिटिक्स में जाता है, कि अगर उसके कुछ स्टैंड्स है
0: तो ये तो आप रिवाइंड करो ना फिर 10-15 साल पहले, जब आप जैसे आपका हुआ क्या बोलते हैं इनिशिएशन हुआ, वो तो यहीं से हुआ ना, प्रोटेस्ट के बाद ही आपकी पार्टी बनी और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स. बट क्या हुआ फिर उसका हशर क्या हुआ?
2: एक बार होगा पंजाब में, देखो पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है. पंजाब के लोग ना जैसे मोदी ने किसानों पे ऐसे किया था, उसके बाद पंजाब के लोग ना पंजाब में जैसे वो गया था लास्ट वीक, तो लोग ना अभी उसको इतना क्या करते हैं कि लोग ह्यूमन राइट्स को, क्योंकि आप देख लो प्रोटेस्ट हुआ है तो कितने पंजाबी वहां पे पहुंच गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे टाइम में कोई आया कि नहीं आया. तो पंजाब के लिए ये बात मैं रियली रियली अप्रिशिएट, आई एम प्राउड टू बी अ पंजाबी हीरो, कि हम कहीं पे भी जाते हैं ना कि हाँ लोगों के जहाँ कुछ भी गलत होता है तो लिए दे ऑलवेज प्रोटेस्ट, दे ऑलवेज सपोर्ट.
1: या
0: एंड दे आर नोन टू बी लाइक बेसिकली प्रोटेक्टर्स, वो ना हमेशा हमें को प्रोटेक्ट किया,
2: वॉरियर्स पंजाब को शेयर या वॉरियर्स,
1: जस्ट अनफॉर्चूनेटली कई बार ब्लेम कर देते हैं जब वो खुद की मांग करते हैं.
2: अगर आप पंजाब में जाओगे ना, मैम इफ यू गॉट अ चांस बोथ ऑफ यू, आप पंजाब में जाना आपको वाइब्स दिखेंगी वहाँ पे,
0: वो पंजाब से ही है.
2: आप मुंबई में जाते हो पंजाब में जाओगे आपको फर्क दिखेगा, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं.
0: राइट
2: ऑल गुड थैंक यू
0: थैंक यू भाई थैंक यू
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग
0: करने के लिए
1: पर इनका अपना लाइक था पर्सपेक्टिव व्यूज से बहुत इंटरेस्टिंग थे आई विल से एक चीज जो उन्होंने बोले कि ये जो जेन जी है मे बी इनको आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए टू बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड अगर वो चेंज लेके आना चाहते हैं अब रंगदे बसंती में क्या था कि अगर तुम सिस्टम को चेंज करना चाहते हो बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम
0: सिस्टम में घुसना पड़ेगा आपको
1: सिस्टम में घुसना पड़ेगा
0: या बट वही तो है ना सिस्टम का प्रॉब्लम यही है ना कि सिस्टम में घुसने के बाद
1: सिस्टम आपको खराब कर देता
0: है इट इज दैट सड़ा हुआ आम पॉलिसी ना
1: और एक पर्सन मेरे को लगता नहीं है कि पूरे का पूरा सिस्टम चेंज कर सकता है ना यू हैव टू फाइट लाइक लेयर्स है यार यू हैव टू फाइट मल्टीपल बैटल्स नाउ
0: ये गेम लंबा चलेगा
1: ये गेम

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज थोड़ा बवाल होने वाला है. दिस पॉसिबल है हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म्स भी पॉसिबल है अबाउट द वेस्ट कोस्ट एंड ग्रेट बैरियर आइलैंड. नॉर्थ वेस्टली साथ रहेगा गस्टिंग 90 किलोमीटर पर आर इन एक्सपोज प्लेसेस. 5:31 को होगा सनसेट अगर द सन इज आउट येट.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 5:03. It is your Friday afternoon. Hi, good evening. Welcome to the Drive Show with Sandy and Rusby.
5: Very good evening, Rusby. कैसे हो तुम?
1: मैं एकदम एक नंबर. I can't be more excited. Yeah, it's Friday finally. And I am waiting for the weekend, man.
5: Yes. वैसे मुझे अभी पता चला है कि राहत फतेह अली खान के शो के लिए बहुत कम टिकट्स बाकी है. अगर आपको ऑनलाइन नहीं खरीदनी है, अगर आप डोर सेल पे, डोर सेल विल बी देयर.
1: मेरे को ये पूछना है, लास्ट टाइम व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बॉट अ टिकट ऑन द डोर. मेरे को डोर सेल, मैंने, मेरे को लग रहा है ऑनलाइन टिकट ही खरीदी हुई वो याद आ रही है मेरे को. डोर सेल, लाइक आई वांट टू नो यार, समवन 0800 004866,
5: व्हाई डू यू प्रेफर डोर सेल देन ऑनलाइन?
1: एक मेरे को ना, आई रियली मिस दोस टाइम्स जहाँ पे हम पहले, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जब मैं इंडिया में रहता था, क्योंकि कॉलेज में होते थे हम लोग, तो हम लोग जाके मूवी की टिकट्स डोर पे जाके खरीदते थे. ऑनलाइन नहीं होता था वो टाइम पे ना, टिकट काउंटर पे जाते थे और टिकट काउंटर पे जाके खरीदते थे और फिर जाके मूवी देखते थे या फिर बाद में जाके.
5: पहले मॉल्स वगैरह में सिनेमाज नहीं थे ना, सिनेमाज वर लाइक स्टैंड अलोन सिनेमाज, अलग थे.
1: वो तो बहुत पहले की, वो तो आपके बचपन की बात है.
5: Very funny.
1: और वो टाइम पे तो यार, वो अगर आप नॉर्मल सिनेमा घर बोलो तो वो तो 10-15 रुपीस में टिकट मिलती थी वो टाइम पे.
5: ओके,
1: थिएटर, सिंगल स्क्रीन थिएटर यूज्ड टू बी 10-15 रुपीस.
5: हमें को नहीं, वो नहीं याद है, लेकिन इतना पता है कि स्टैंड अलोन जलंधर में, मे भी मुंबई में होते होंगे, जलंधर में नहीं थे. हाँ, तो जलंधर में पहले नहीं थे सिनेमाज इन द मॉल्स, मॉल्स इतनी नहीं थी वहाँ पे. वो अभी थोड़े टाइम से ही वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई है.
1: अच्छा, ऐसा बोल रहा
5: हूँ. हाँ,
1: नहीं, तो हमारे पे 20 साल से तो आ गए हैं मॉल्स, 20-25 साल से
5: यहाँ पे नहीं थे.
1: अच्छा,
5: so we had just like recent,
1: और रिसेंटली आपके सिनेमा,
5: मतलब मेरे यहाँ पे आने के बाद.
1: ओ, आपके यहाँ पे आने के बाद फिर वहाँ पे मॉल्स में सिनेमाज आ गए.
5: मॉल्स में सिनेमाज आए हैं.
1: ओ वाओ, ओके. बट एनीवे, जब मॉल्स में हमारे यहाँ पे सिनेमा आए थे, तभी हम लोग को पहले जाके टिकट खरीदनी पड़ती थी काउंटर पे से, एंड देन यू गो फॉर द शो. और मतलब अगर हाउसफुल शो है तो पहले से ही आपको जाके,
5: यू कैन नॉट बुक योर सीट
1: पहले, मतलब वो जाके फिजिकली यू हैव टू गो एंड बुक इट. ऑनलाइन नहीं होता था.
5: ऑनलाइन नहीं है,
1: हम वो जमाने के है ना.
5: ऑब्वियसली.
1: I want to know from you कि 0800 004866 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और हमें बताइए आपकी स्टोरी, when you went on to the door and bought your tickets.
5: टिकट काउंटर पे आपने टिकट्स खरीदी है, not online.
1: Not online.
5: Yeah.
1: I remember my father used to tell me these stories. वो जब, उनको भी movies का बहुत शौक था, मतलब उनकी mom को और वो सबको, so they used to stand in the queue टू बाय द टिकट्स. सुबह 4-5 बजे से वो लोग 3 बजे से लाइन में खड़े हैं.
5: उस समय पर तो ब्लैक में टिकट्स बहुत बिकती थी,
1: इसलिए वो लाइन में खड़े रहते थे वहाँ पे 4-4 घंटे.
5: या
1: सुसु को रोकते हुए. हाय, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग.
6: हेलो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू?
5: जी बढ़िया.
1: बहुत ही बढ़िया. दोस्तों नहीं, अभी फ्रेंड्स बोलना है.
6: फ्रेंड?
5: या
6: मेरे फ्रेंड.
1: हाँ, नहीं नहीं, बोलो
6: मेरे दोनों पति संस्कारी.
1: बोलो भाई,
5: बताइए.
6: अच्छा, बहुत एक्चुअली अभी मुझे याद आ रहा है भाई, कितने साल हो गए कि, सॉरी
1: थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दो भाई.
6: हाँ, कर देखते.
1: हाँ, थैंक यू.
6: नहीं, कितने साल हो गए ऐसे कि मैंने एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे खड़े रहकर टिकट निकाली है, अभी याद आ रहा है? कभी नहीं, बहुत साल हो गए.
1: वही तो, ये पहले तो वही होता था ना.
5: याद ही नहीं है
1: मुझे, अभी भी याद आ रहा है. मैं ना, हमारे यहाँ पे सिनेमैक्स करके एक थिएटर होता था, सिनेमैक्स होता था, और वो बाद में पीवीआर बन गया, जो भी है, आई थिंक कुछ हो गया उसका, पता नहीं मैं यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, बट वो सिनेमैक्स में हम लोग जाके वहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे जाके टिकट खरीदते थे.
5: वाओ, मैंने लाल
1: कॉर्नर सीट.
5: मेरे को जो सिनेमा याद है उसका नाम था लाल रतन, मैं चेक कर रही थी यही है ना।
1: अच्छा लाल रतन धन पायो। अरे ओमकार आप भी बोलो यार, हम ही बात कर रहे हैं।
5: सॉरी बताओ ना ओमकार।
6: नहीं यू वोंट बिलीव, अगर इफ यू मे गाइस, मैं अभी मुझे और एक बात याद आ गई जो मैंने मेरे दोस्त को ही बोली थी। मेरा पहला टिकट मैंने कैसे निकाला था, मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉच माय फिल्म, मुझे लग रहा है आई वाज इन फोर्थ और फिफ्थ क्लास और मेरे मुझे कुछ 10-20 रुपए दिए होंगे कि पिक्चर देखना है, तो जंगल द जंगल बुक। तो मतलब मैं आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो किसको टाइम है कि जाके तुमको वहां दिखाओ, पहले टिकट निकालो फिर पॉपकॉर्न वगैरह वगैरह। तो मम्मी पापा ने किसने बोला रहेगा 10-20 रुपए ले जा जा तू।
1: तो हमारे घर के
6: पीछे का थिएटर, हाँ आत्मनिर्भर तब से भाई। तो गया सच में, तो मेरा हाइट इतना कम था कि मेरा सिर्फ हाथ दिखा टिकट से वो बंदे।
1: हाँ ये भी होता था प्रॉब्लम, बहुत हाइट होता था।
6: हाँ वो बंदा बोल रहा है तुला क्या पाइजे टिकट, बोले कहाँ से रहा पैसा, मैंने बोला मम्मी ने दिया, मम्मी को लेके आओ। मैंने बोला अरे अंकल दो ना यार पिक्चर देखना है मेरे को। बोल रहे देख बेटा मुझे मालूम है तूने चुरा के लाया रहेगा, तो मैं दोने लग गया उधर।
1: ओ बाप रे ऐसा।
6: मम्मी को लिटरली मैं शॉप में गया मेरे, हम रिक्शा से थिएटर गए। मम्मी बोली कि देखो ये बच्चा, इसको फिल्म देखने की आदत है, अच्छा अच्छा फिल्म देखेगा, तो अगर आप इसको छोड़ोगे नहीं तो मैं फिर से आऊंगी और फिर यू डोंट नो। तो बोल रहे सॉरी सॉरी सॉरी बेटा टिकट दे चल ले ले। और तब से मैंने इतने फिल्में देखी है उधर, बेबीज डे आउट, द मास्क।
1: तो अकेले जाके देखते थे
6: अकेले भाई, मैंने मुझे लगता है 25-30 फिल्में मैं नकली देखी लगी। ड्रैगन ड्रैगन हार्ट अभी याद आ रहा है अभी।
1: क्या बात
5: आपने
1: है।
5: कभी स्कूल के साथ मिलके ऐसे ग्रुप?
1: हाँ मैं गया था स्कूल में, छोटा चेतन देखा था मैंने,
5: छोटा चेतन।
1: और एक करामती कोट करके एक मूवी हुआ था, आया था
6: करामती कोट। यस,
1: करामती कोट। उसमें ना वो बेसिकली जब भी बच्चा
5: टाइटैनिक देखी है,
1: अरे मेरे करामती कोट तो खत्म होने दो स्टोरी। जब भी बच्चा जैकेट में हाथ लालता है तो उसके जेब से 1 रुपए का कॉइन निकलता है। हाँ बहुत सही था वो,
5: जिसे सच ए कूल मूवी है।
1: एनीवे ओमकार थैंक यू सो मच यार फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है, मैंने वो फ्रेंड्स वाला जोक मारा उसमें क्या एंटी मोदी एजेंडा हो गया भाई?
5: ये कौन सा वाला
1: कोई मैसेज साउंड लाइक यूजर इज जस्ट प्रमोट एंटी मोदी एजेंडा। एक्सक्यूज मी, वी आर नॉट एंटी एनीवन।
5: कौन सा फ्रेंड्स वाला, कौन सा जोक?
1: अरे उसने बोला ना दोस्तों बोला, मैंने बोला दोस्तों नहीं फ्रेंड्स बोलना है अभी, तो उसमें क्या अभी एंटी मोदी एजेंडा है?
5: पता नहीं, मिस रेचल भी बोलती है हाय फ्रेंड्स।
1: अच्छा मिस रेचल भी बोलती है।
5: मेरा नेफ्यू देखता है मिस रेचल, वो बोलती है हाय फ्रेंड्स।
1: या
5: तो मैं उसके साथ एवरीडे हाय फ्रेंड्स उसको प्रैक्टिस करवाती हूं।
1: मेरे को लगता है कि अभी हमने फोकस यहां पे क्रिस्टोफर लक्सन पे करना चाहिए और यहां के पॉलिटिक्स पे करना चाहिए।
5: हर एक वर्ड को गाइस पिक ना करो, एक वर्ड जो है ना बहुत सारे लोग यूज करते हैं
1: और हम न्यूजीलैंड में फॉर अ रीजन, तो यहां पे यहां के पॉलिटिक्स में थोड़ा ध्यान देते हैं अभी। बहुत बहुत खेल लिया हम लोगों ने इधर उधर का, थोड़ा यहां पे अभी फोकस रखते हैं। दिस इज जस्ट माय टू सेंट्स।

0: हमारे अपने केतन कुमावत की आवाज में सुन रहे थे आप ये सफायर 2.0। मुझे यार ये गाना बहुत पसंद आया,
1: मुझे भी बहुत, वीडियो भी और लिरिक्स भी इस गाने के बड़े अच्छे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट न्यूजीलैंड।
0: और मन्नू सिंह ने यहाँ पे इसके लिरिक्स भी लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया है। वेल एनीवे, आज हम बात कर रहे थे अबाउट कब आपने लास्ट यू नो बॉक्स ऑफिस पे जाके या मैन्युअली डोर सेल्स पे टिकट खरीदी है,
1: टिकट काउंटर पे जाके।
0: तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरे डैड भी सुन रहे हैं और उन्होंने एक मैसेज लिखा कि अबाउट हिज एडवेंचर ऑफ बाइंग टिकट्स टू शो।
1: ये उन्हीं से हम सुनेंगे अभी यहां पे,
0: तो उनसे ही सुनेंगे, कोशिश कर रहा हूं उनको कॉल लगाऊं यहां पे।
1: और वो डेडिकेटेड लिसनर है बाय द वे, आपको गाइस बता दूं, यहां पे ड्राइव शो के
0: डेडिकेटेड लिसनर है वो भी। हाय हाय डैड, हेलो
1: हेलो,
0: हां बापू व्हाट्स अप।
1: हाय अंकल, कैसे हैं आप?
2: एकदम बढ़िया
1: बढ़िया। तो आप बताओ ना थोड़ा एडवेंचर अपनी मूवी टिकट खरीदने का।
0: वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू लास्ट बॉट योर टिकट ऑन लाइक यू नो थ्रू बॉक्स ऑफिस, एंड देन आई रिमेंबर योर स्टोरी। आपने हमेशा स्टोरी शेयर की है ना कि कैसे आप मूवी के टिकट्स खरीदने के लिए सुबह सुबह लाइन में जाके रुकते थे। और कलर में भी था ना पहली बार,
2: कलर में तो इसमें कलर इसमें कलर था वो टाइम, टेक्निकलर नहीं थे इसमें कलर था,
1: ओके
2: ऐसा नाम था। तो वो शो देखने के लिए माय सिस्टर माय पेरेंट दे सर दे केम ऑन 15th ऑफ अगस्त इन आवर पारसी न्यू ईयर वाज देयर।
1: ओह पारसी न्यू ईयर,
2: यस इन अगस्त। तो पारसी न्यू ईयर तो वो पिक्चर देखने का, तो उधर इतनी फर्स्ट संडे का हुआ आई थिंक, तो फर्स्ट संडे एंड क्राउड वाज मैडनिंग। तो मैंने क्या किया, और वो टाइम एक आदमी को खाली चार टिकट मिलती थी, नॉट मोर देन फोर,
0: ओनली फोर टिकट्स वन पर्सन,
2: यस।
1: ओह
0: टर्न ऑफ द स्पीकर एंड जस्ट टॉक ऑन द फोन ना यार, इट विल बी मोर क्लियर फॉर अस।
2: ओके
0: मैं बोल सकता हूँ इनको ना।
2: हाँ
1: परफेक्ट,
0: देखो यार ये क्लियर है, बोलो।
2: हाँ तो इन आवर फैमिली वी आर फोर ब्रदर सिस्टर्स टू पेरेंट्स एंड टू अंकल्स, तो वी आर ऑलरेडी 8 ऑफ अस। तो और रात सुबह 4 बजे जाके लाइन में खड़ा रहने का,
1: 4 बजे सुबह, तो क्या बात कर रहे हो?
2: मिनर्वा थिएटर ग्रैंड पोर्ट पे।
1: वाओ।
2: तो मैं मेरे कजिन को लेके, हम लोग हमारे घर से बहुत दूर था, तो सुबह 4 बजे ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं मिलता था। तो हम हमारे आंटी जो बाजू में रहते थे थिएटर के, उनके घर पे रात को जाके सोने का।
0: बाप रे क्या कमिटमेंट है,
1: मूवी देखनी है, टिकट खरीदनी है,
2: लाइन में जाने का।
1: या
2: और नॉट ओनली दैट, वो 4 टिकट नहीं देंगे तो मेरी आंटी भी सुबह, हम लोग लाइन में फर्स्ट नंबर था हमारे, तो भी मेरी आंटी को विश्वास नहीं था कि 4 टिकट 8 टिकट नहीं मिलेगी, वो लोग को भी चाहिए था तो 4 टिकट।
1: ओके
2: तो हमारे नंबर लगाया था तो वो भी आ गई, 9 बजे बुकिंग खुलती है तभी, तो पीछे वाले चिल्लाने लगे। तो हमने बोला नहीं, हमारी आंटी है, हम लाइन में 4 बजे से खड़ा है, वो हमारे साथ ही है करके, ऐसा करके टिकट लिया। एंड द बैड लक वॉज, जिस दिन पारसी न्यू ईयर था वो दिन इतनी बारिश गिरी कि उधर फ्लड्स हो गए।
1: ओह नो,
2: तो अभी क्या करने का। तो फिर मेरे सब कॉलोनी के फ्रेंड्स को बोला, मम्मी डैडी से नो वी आर नॉट कमिंग, बिकॉज इट वॉज अप टू वॉटर वॉज अप टू द वेस्ट लेवल। अभी हाथ में टिकट थे, तो मैं सब मेरे फ्रेंड्स को कलेक्ट किया, 8 लोगों को, हम शॉर्ट पैंट पहन के सब मूवी देखने गए
1: मिनरवा स्ट्रगल में।
0: क्या बात है,
1: अभी और मूवी देखने के लिए स्ट्रगल।
2: नेक्स्ट वीक वापस लाइन में देखने का था ना कल।
0: क्या बात है,
2: एंड दैट वाज आवर फॉर दैट साल आवर प्रॉफिट्स बर्थडे आफ्टर 1 वीक, इट कम्स आफ्टर न्यू ईयर।
1: ओके ओके, तो ये शोले मूवी के लिए,
2: वो दिन के लिए
0: शोले मूवी के लिए,
2: शोले मूवी देखने का, एकदम एक्शन पैक मूवी था एकदम। वो टिकट लिया वापस 4 बजे जाके लाइन में खड़ा रहते।
0: या यू जस्ट,
2: और वो लोग को शो दिखाया,
0: यू जस्ट प्रूव्ड व्हाई आई एम आल्सो अ बॉलीवुड कीड़ा। यू कैन ब्लेम मी.
2: नहीं वो टाइम तो बॉलीवुड की ना, मतलब उधर एक लोटस करके थिएटर था बॉम्बे में, वे एवरी वीक न्यू मूवी वाज कमिंग.
1: ओके एवरी वीक
2: एवरी, और मूवी वाज कमिंग ऑन फ्राइडे एवरी वीक. तो संडे को पिक्चर देखने का था. मेरे अंकल सिविल डिफेंस में थे उधर वो एरिया में, तो उनकी पहचान थी. तो वो हमेशा एवरी संडे के लिए हमारे लिए 6 टिकट लेके आते थे. एवरी संडे न्यू मूवी,
0: एवरी संडे न्यू मूवी. क्या बात है. एंड व्हेन वाज द लास्ट मूवी यू सॉ इन द थिएटर्स? धुरंधर दिखा है मैंने उनको यार. धुरंधर देखा था
2: उधर, देखा अभी अभी इतने पिक्चर्स देखे थे हमने उधर. एक डायना थिएटर था उधर, लाइन में खड़ा देखे 2 रुपये में टिकट मिलती थी.
1: वाओ
0: क्या बात है.
2: पर 2 रुपये में टिकट, ऑल ओल्ड मूवीज यूज्ड टू कम. तो सब ओल्ड मूवीज देखने के लिए 2-2 रुपये टिकट लेके हम जाते थे.
1: वाओ यार क्या बात है.
0: थैंक यू सो मच बाबू. थैंक्स यार, लव्ड यू शेयरिंग द स्टोरी.
2: और वन मोर थिंग, मेरी मम्मी को भी शौक था. तो कॉलेज में से एक दिन शालीमार थिएटर में एक अच्छी मूवी लगी थी, मालूम नहीं भूल गया. तो मेरे को बोला चल मॉर्निंग शो जाएंगे. And she allowed me to bunk because she knew I was coming good marks, I'll get good marks in college. So main college bunk karke gaya, to udhar mere sab college ke friends.
1: Kya baat kar rahe ho?
2: Sab ke samne kachra ho gaya. Ye pagal hai ki mummy ko leke theater mein aaya.
1: Oh no.
2: Hamare saath nahi aaya, mummy ko leke aaya.
0: Nice.
2: Aisa itna pachka ho gaya mera.
0: It's okay.
2: Sab stories
0: it's okay. Mama's anyway. Boys are in trend right now, Bapu. Don't
2: yeah.
0: worry.
2: Yeah, wo to hai. Maa ka ladla bigad gaya.
1: Wahi kisko ab Rusbe ko bol rahe ho kya?
0: Yeah. Okay.
2: So feel, are Sandy, you are smart enough to understand. Yeah.
0: All right. Thank you so much for joining us. Thank you.
1: Thank you,
2: okay,
1: uncle.
2: Bye. Thank you.
1: Thank you. Bye. Bye.
0: कुछ चीजें तो आज प्रूव हो गई है. देखो बॉलीवुड कहाँ से आ रहा है,
1: बॉलीवुड कहाँ से आ रहा है, एंड कहानियां बतानी कहाँ से आ रही है,
0: बात करना कहाँ से आ रहा है,
1: करना कहाँ से आ रहा है.
0: Right. A lot of things proved.
3: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe.
5: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
3: Accurate traffic.
6: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
7: Showers tomorrow for Auckland. Strong westerlies, a low of 10 overnight. The northern is very heavy, heading north from Spaghetti Junction to Tristram Ave. The northwest and slow from Bond Street to Te Atatū. The southern, heavy southbound from Spaghetti Junction to Manukau and heading north from Princes Street to Newmarket. Southwest and slow southbound Dominion Road to Massey Road and north from Puhinui Road through to Mangere Bridge.
6: Keep more of your money with Simplicity, the low fee, non-profit KiwiSaver provider.
8: Oh, I was just overtaking someone, officer. Could have only been a couple of k's over. But just for a second to get round them, you know? You're not going to ping me for that, are you? Surely just a warning. I've never even had a...
9: Crash involving three injured parties. Reported speeding vehicle collided with an SUV at an intersection. 2 victims, stat 1. We've lost the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
10: Please use your imagination for the following ad.
11: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
12: Imagine winning $40 million this Saturday. Play in store or online.
13: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
14: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
15: Go! क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Power Drive at 5.
4: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
16: Kundi ghar dao, ya seedha andar aao.
17: Main laun apna A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest test drive show. Jari aapke liye 5:34 right now on the clock. And kuch news ke bare mein, local news ke bare mein baat kar lete hain yahan pe. To basically Waikato mein na ek project hone wala tha jahan pe Bunnings ko convert karne wale the ek museum mein. और इसके पीछे काफ़ी फंड्स भी रेज किए गए थे, 2.05 मिलियन कलेक्ट कर दिए गए थे थ्रू रेट्स, एक्चुअली नियरली 3 मिलियन क्योंकि उसके ऊपर और भी एडिशनल खर्चे भी हुए थे. सो अराउंड 3 मिलियन डॉलर्स टोटली शेल्ड आउट किए थे वाइपा रेट पेयर्स की ओर से. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी इस प्रोजेक्ट को स्टॉल कर दिया गया है, कैन कर दिया गया है. सो जो 3 मिलियन का जो खर्चा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा पानी में गया, बट या जो प्रोजेक्ट होने वाला था, म्यूजियम बनने वाला था, उस म्यूजियम पे अब वो कैंसिल हो गया बेसिकली प्रोजेक्ट.
2: कोई रीजन है उसका क्या कुछ?
1: अब पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा उसके
2: लिए. कितनी बार बोला है बी रिस्पॉन्सिबल.
1: या नहीं, आई थिंक वो कमर्शियली बेस्ट फिट नहीं था फॉर सीबीडी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने ये डिसाइड किया है. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं डिसाइड हुआ था, ये बाद में जाके डिसाइड हुआ कि
2: अचानक से पता चला कि ये फिट नहीं है.
1: हाँ, कि मतलब कुछ ऐसे फिगर्स देखे उन्होंने, वो चीज़ें देखी और उनको लग रहा है कि यार ये फिट नहीं है अभी. और जो यूनियन टैक्सपेयर के यूनियन जो है, उन्होंने वाइकाटो टाइम्स को कहा कि काउंसिल शुड स्टिक टू बेसिक्स एंड डू इट्स जॉब.
2: तो बेसिकली उनको रियलाइज हुआ कि जो म्यूजियम डेवलपमेंट है वो वायबल नहीं है.
1: वायबल नहीं है वो.
2: सो ये हुआ है पंगा वहाँ पे.
1: सो या दैट इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन न्यूजीलैंड. अभी भी काफ़ी दिक्कतों का सामना, बट इट्स अ गुड थिंग दैट दिस इज द इलेक्शन ईयर.
2: इट इज़ इलेक्शन ईयर एंड इट्स अ हाई टाइम गाइज कि अगर आपने इलेक्शन ईयर की तैयारी नहीं की है, तैयारी एज इन की अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी पार्टी से कौन कौन है आपके इलाके में कौन है,
1: फर्स्ट स्टेप कि रजिस्टर कर लीजिए फॉर अ वोटर्स आईडी सो दैट यू कैन एटलीस्ट यू आर एटलीस्ट
2: एलिजिबल.
1: या यू आर एटलीस्ट देयर टू वोट. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट वी हैव लर्नड दिस फ्रॉम लुकिंग एट अदर places that we should all be exercising our right to vote.
2: That
1: is the critical bit.
2: वो बिट है. और उसके बाद स्टडी कीजिए, रीड अबाउट इट कि हर किसी ने अपनी कौन सी पॉलिसीज आगे रखी है और आप किस पॉलिसी से के किस पॉलिसी के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं,
1: अलाइन हो रहे हो आप किस पॉलिसी के साथ, कौन सी पॉलिसी आपको चाहिए कि इंप्लीमेंट होगा तो आपके लिए फायदा होगा. आई थिंक बीइंग अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनेस्टली मेरा बहुत मन है कि मैं इसके अराउंड एक पॉडकास्ट करूँ. एंड इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इफ यू आर ऑल्सो इंक्लाइंड इनटू पॉलिटिक्स एंड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग,
2: बात करना चाहते हो
1: अनबायस्ड, अगर आपके भी ओपिनियन है, व्यूज है, तो या प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच. आप यहाँ पे मैसेज कीजिए एंड आई विल गेट इन टच विद यू.
2: सो या यहाँ पे मैसेज कीजिए 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ. एक्चुअली मैं यहाँ पे
1: न्यूजीलैंड रिलेटेड पॉलिटिक्स
2: है. या न्यूजीलैंड ओनली. सो बिकॉज़ यहाँ पे इलेक्शन ईयर है. सो या यहाँ पे मैसेज कीजिए 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए ये भी गाना हम लेकर आएंगे क्योंकि देखो टाइम चाहे जो भी हो एक चाय की प्याली अगर हो जाए तो भाई क्या ही बात है.
1: या मजा आ जाता है ना.
0: ओके एनीवे सो नाउ अभी हम बात करने वाले हैं. आज फ्राइडे है तो रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं. ऑनेस्टली आई हैव नॉट बीन टू मच इन टू वॉचिंग एनीथिंग ऑफ लेट अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम. और उससे ना मेरे को एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है. मुझे लग रहा है आई एम गोइंग टू एंड अप बाइंग समथिंग क्योंकि जब भी हम इंस्टाग्राम पे होते हैं तो काफ़ी बार ना ऐड दिखती है और ऐड बहुत ही रेलेवेंट दिखती है जो तुम्हें एक्चुअली में चाहिए. तो मुझे जो ऐड दिख रही है अभी मैं शेयर करूँ क्या? एम्बैरेसिंग हो जाएगा.
1: Embarrassing क्यों हो जाएगा? ऐसा क्या ऐड तुम्हारी में दिखाई दे रहा है?
0: जो हमारी इनसिक्योरिटी होती है वही हमें ऐड में दिखती है सैंडी.
1: बेबी जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो
0: जिसके बारे में मैं
1: तुम बात करते हो बेसिकली वो दिखाई देता है ऐड में.
0: या और हाँ तो इनसिक्योरिटीज यार तुम्हारी इनसिक्योरिटीज ही तुमको ऐड में दिखती है. मैं बोल रहा हूं
1: क्या है तुम्हारी ऐड में फिर दिखते हैं.
0: गेस करो आप 0800-004-866 कॉल करके गेस करो आपको क्या लगता है मेरे इंस्टाग्राम के एड्स में मेरे को क्या दिख रहा है. एड्स में
1: क्या दिखाई दे रहा है?
0: या
1: आप रुजबे को कितना जानते हो?
0: देखो इनसिक्योरिटी मेरी क्या है
1: वो तुम्हारे बालों को लेकर पूछा रहे क्या?
0: या एक मिनट ये इनको इनको पता रहेगा. हाय
2: हेलो.
0: हाँ जी
2: तुम्हारी मेरा बेटा भी जरूर है.
0: हाँ कोई बात नहीं
1: कोई बात नहीं बताइए.
2: मैंने आपको पीछे से देखा है तो मुझे लगता है आपके बालों को लेकर पूछा रहा होगा.
0: कितने मीन हो आप लोग यार कितने मीन हो.
1: हो सकता है तुमने इसके बारे में बात नहीं की रुजवे तुम्हारी फोटो देख के आए
0: मेरे पीछे से आपको देखा है ये क्या बात है यार.
2: जिस दिन वो शो था ना कृष्णा का तो मैं हाइट पे बैठी थी तो आप ऐसे जब निकले तो मैंने आपको पीछे से टॉप से देखा था. बट मैं आपको बताऊँ मैंने मेरे हस्बैंड को ये बोला कि जिनको ऐसे होता है ना अर्ली एज में उनके पास बहुत पैसा होता है.
0: वही तो नहीं है
1: वो ये सोच के खुश था लेकिन उसको वो भी नहीं हो रहा है.
0: या
2: कहीं तो है कृपा कहीं तो भरी है आपकी.
1: आएगा मतलब सब उड़ा दो.
0: देखो अभी तो देखो पहले कुछ भरोसा भी था मुझे. हाँ थैंक यू. पहले मेरे को ना थोड़ा तो भरोसा था कि चलो आएगा कभी ना कभी तो आएगा पैसा. बट अभी मेरे घर वालों के साथ भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर
1: तो वहां से भी गए तो
0: वहां पे भी रिस्की लग रहा है अभी.
1: देखो प्रॉपर्टी अगर तुम्हें लेनी है तो आर्ग्यूमेंट्स मत करो.
0: या दैट्स व्हाट. देखो मिलेनियल्स का अलग ही पंगा चल रहा है मालूम है. उनको अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है
1: क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी हाथ से.
0: रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे सर पे यार.
1: एनीवे रिकमेंडेशंस के बारे में बात कर रहे थे रुजबे. देयर इज अनदर सीरीज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपको ये देखनी है लिटिल हाउस ऑन द परेरे. ऐसे मेरे को वो नाम नहीं बोलना आ रहा है.
0: अच्छा.
1: तो वो है इट्स अबाउट अ फैमिली जो कि ट्रेड करती है वुड्स को फॉर द ओपन कहीं पर रहने के लिए. वो एक जगह से दूसरी जगह पे गई है रहने के लिए एंड वहाँ पे ट्रेडिंग चलती है चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज आई विल से.
0: एंड
1: लिटिल हाउस ऑन द परेरे PRAIRIE ये इसका नाम है.
0: अच्छा.
1: सेम नेम से एक्चुअली में 70s के एक मूवी भी है.
0: ओके.
1: या उसी से इंस्पायर्ड है ये.
0: क्या कह रहा है लिटिल हाउस ऑन.
1: हे भगवान कितनी बार बोलूं मैं ये इसको.
0: लिटिल हाउस ऑन प्रायरी.
1: हाँ प्रायरी.
0: प्रायरी
1: हाँ जो भी है ये.
0: अच्छा अमेरिकन अमेरिकन ड्रामा सीरीज है ये.
1: यस. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई विल से. मेरे को मतलब मजा आ रहा है सो फार देखने में. तो ये आप देख सकते हैं. लॉकअप देख रही हूँ मैं. एंड
0: लॉकअप कोई देख रहा है कोई अलायंस भी काफी लोग
1: देख
0: रहे हैं. देख
1: रहा है कितने सारे रियलिटी शोज आ गए हैं यार.
0: बिग बॉस आएगा बहुत जल्दी शुरू होगा.
1: मतलब बिग बॉस पहले एक रियलिटी शो होता था कि जिसमें ऐसा आते थे सब कंटेस्टेंट कैमरास होते थे. अब देयर आर सो मेनी नाउ.
0: लेकिन लॉकअप में जितना आपसे सुन रहा हूँ मुझे लग रहा है कि काफी एंटरटेनिंग है क्योंकि सिर्फ झगड़े नहीं हो रहे वहाँ पे ना.
1: हाँ वहाँ पे क्या होता है टॉपिक दिया जाता है.
0: टॉपिक दिया जाता है उस पर चर्चा करो.
1: उस पर चर्चा होती है. फॉर एग्जाम्पल कल का टॉपिक था कि बेस्ट फ्रेंड से कभी आप ऐसा खफा हो गए हो उसके ऊपर.
0: ओह वाओ.
1: या जले हुए हो अपने फ्रेंड से अगर आप तो उसके ऊपर टॉपिक था वो.
0: दैट्स सो कूल यार.
1: तो ऐसे
0: आई वुड एंजॉय दिस शो यार.
1: या तो एवरीडे वर्जन
0: बनना चाहिए यार एक लॉकअप वाला. लॉकअप न्यूजीलैंड.
1: समवन कैन स्पॉन्सर दैट.
0: या
1: सो या वो भी आप देख सकते हो. रेबल किट आ गई है उसमें अपूर्वा. एंड शी इज क्वाइट एंटरटेनिंग आई विल से. मतलब उसको अभी गेम समझने में दिक्कत हो रही है पहले दिन में. दो
0: आप ऐसे ऐसे शोज जब प्रमोट करो तो प्लीज वार्निंग भी दे दो ना कि यू कांट वॉच इट, लाइक इट्स अ पीजी
1: 100%. सो बिकॉज लॉकअप जो है वो क्योंकि ओटीटी पे है, वो टीवी पे नहीं है, तो इसके कारण उसमें लैंग्वेज के ऊपर बीप नहीं किया गया है. तो फुल लैंग्वेज है उसमें.
0: इसी बात का दुख है
1: क्या?
0: कि लॉकअप में लैंग्वेज के ऊपर बीप नहीं किया है, लेकिन वही नेटफ्लिक्स पे जब लेटेंट आ रहा है तो उसके ऊपर बीप है.
1: वो है ही बीप ना शो तो.
0: नहीं है अभी यार, अभी तो एकदम ही
1: अभी तो कपिल शर्मा हो
0: गया, कपिल शर्मा शो हो गया अभी वो.
1: या
0: एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ. अभी के लिए लेट्स हैव सम चाय.

0: members, ye aapke liye. Is July shop kijiye aur scan kijiye apna club card and you're in the draw to win 10,000 air points plus weekly air points prizes bhi. T's and C's apply. Get amongst it at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
1: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. The Trade Minister is focusing on the positives as the US slaps a 12.5% tariff on our goods. Todd McClay says it's better than the 15% that was ruled illegal earlier this year. He adds that New Zealand exporters have adapted really well since the Liberation Day levies.
6: We're actually selling more now by value than we were before tariffs were put in place, which means US consumers still want what New Zealand produces, they're just having to pay more for it.
5: Auckland Council has bought 100 hectares of rural land near Karaka for a new cemetery. For context, the council's 53 current cemeteries cover around 300 hectares. Three young people face charges over a spate of offending in King Country, including the aggravated robbery of a mini-mart. Several warrants were carried out in Te Kuiti today, with stolen goods recovered. A 13-year-old was among those caught. A sports and tourism expert thinks the successfully scaled-down Commonwealth Games could broaden its appeal to other potential hosts. The event is underway in Glasgow after Australia pulled out. Scarlett Hagen-Jacobs expects other nations will be watching closely.
7: It may demonstrate to other countries that it can be run in a more financially responsible format.
5: It was little more than an opposed training run for Otago and thrashing mid-Canterbury 78-14 in the Ranfurly Shield Challenge in Alexandra. All Blacks lock Fabian Holland looks to have come through unscathed on his return from that serious shoulder injury. He played the first half. Rugby was shift four. And our first look this evening at a couple of swimming New Zealand medal contenders in the heats at the Commonwealth Games, Erica Fairweather and Lewis Clairbert.
4: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
8: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
9: बा के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र सदा पिल्ले केशवन चिनैया और चंद्रकांता के भाई मनोज कुमार और एएनजेड की पूनम सिंह के पिता सेगा रियल्टी के कृष्णमूर्ति की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार रविवार 26 जुलाई को दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। बा के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र सदा पिल्ले केशवन चिनैया और चंद्रकांता के भाई मनोज कुमार और एएनजेड के पूनम सिंह के पति सेगा रियल्टी के कृष्णमूर्ति की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार रविवार 26 जुलाई को दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। सूचित किया जाता है रवि बा के स्वर्गीय अरमुगम रेड्डी की पुत्री शिमला लौतोका के स्वर्गीय यंकतेश परमल अर्जुन स्वामी की पत्नी पापा टोटो के अरविंद स्वामी की मां शेख मनोहर स्वामी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार मंडे सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। बा के स्वर्गीय अरमुगम रेड्डी की पुत्री शिमला लौतोका के स्वर्गीय यंकतेश परमल अर्जुन स्वामी की पत्नी पापा टोटो के अरविंद स्वामी की मां शेख मनोहर स्वामी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार मंडे सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। शरण संजेश शीमल कुमार के पिता सुशीलावती कुमार के पति भूतपूर्व नांदी निवासी वैली कंक्रीट लेयर्स के सत्येंद्र कुमार उर्फ बारू की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम दर्शन संडे शाम 6 से 7 के बीच होगा। अंतिम संस्कार मंडे दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 13 सेक्रेटेरिएट प्लेस रैंडविक पार्क जा सकते हैं या कॉल करें 021-0244-5080 पे। शरण संजेश शीमल कुमार के पिता, सुशीला वती कुमार के पति, भूतपूर्व सबेतो नांदी निवासी वैली कॉन्क्रीट लेयर्स के सत्येंद्र कुमार उर्फ बाडू की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम दर्शन संडे शाम 6 से 7 के बीच और अंतिम संस्कार मंडे दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 13 सेक्रेटेरिएट प्लेस रैंडविक पार्क जा सकते हैं या कॉल करें 021-0244-5080।
8: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: Good evening. It is Friday, 6:04, and you are listening to The Drive Show with Sandy and Rizbe.
4: A very, very good evening to you. Trend Makers आपके लिए शुरू हो चुका है और Trend Makers में आज हम आपके लिए गाने ऐसे लेके आने वाले हैं जिसके बारे में कल रुज़बे ने बात की थी.
3: जी, तो एक ऐसा
4: वही से आइडिया आया.
3: ऐसा थीम है आज का जहाँ पे हम आपको आज सुनाने वाले हैं गाने विच आर ओनली बेस्ड ऑन विमेन.
4: या मतलब जिसने सिर्फ फीमेल सोलो फीमेल सिंगर ने गाना गाया है.
3: या ओ वाओ, सोलो फीमेल सिंगर,
4: सोलो फीमेल सिंगर के गाने
3: नहीं
4: सिर्फ.
3: प्लीज सैंडी, इसमें एक एक्सेप्शन दे दो यार. मेरे को वो वाला गाना यार, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पीपल विल लव इट. वो श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान का जो कॉम्बो वाला गाना था ना, छैला मेरा छैला.
4: We'll see. If time allows.
3: Okay, you give us a
4: We're
3: call.
4: We're trying to give like different singers ko chance na is hour mein.
3: That is right, yes. 0800-004-866. Give us a call and tell us which is your that favorite song jisme aapko matlab jo female-led songs hai ya female-led movies hai, aapki favorite kaun si hai jisne aapke upar ek impact choda hai.
4: Yeah, aise kaun se singer hai. एंड ऑल्सो मेरे पास एक सवाल भी है रुज़बे.
3: अरे पूछो.
4: या सवाल ये है कि एक लेजेंडरी बॉलीवुड फीमेल सिंगर है जिसके पास ऑफिशियल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है फॉर द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक इंडस्ट्री. आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस.
3: मुझे पता है आंसर. यू डोंट गिव मी ऑप्शंस, आई नो द आंसर.
4: तुमसे आंसर नहीं चाहिए मुझे. सो गाइज, मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक इंडस्ट्री कौन सी फीमेल सिंगर हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 2 श्रेया घोषाल, ऑप्शन नंबर 3 आशा भोसले, एंड ऑप्शन नंबर 4 सुनिधि चौहान. सो लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आशा भोसले या फिर सुनिधि चौहान,
3: किसका है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट रिकॉर्डेड
4: आर्टिस्ट इन म्यूजिक इंडस्ट्री? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम है. ये 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था इस सिंगर को फॉर रिकॉर्डिंग ओवर 11,000 solo duets and
3: my God.
4: Wow, in more than 20 languages.
3: Oh wow, 11,000
4: solo songs. और हम जब solo songs के बारे में बात कर रहे हैं तो
3: ये तो जब आपने details दे दिए ना इतने, उसमें आपने जो options दिए हैं वो काफी eliminate हो सकते हैं.
4: हो सकते हैं, but then again it's a difficult choice for.
3: It's a difficult choice. और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक lifeline भी देते हैं आपको, आप 50-50 use कर सकते हैं.
4: जिसमें से दो ऑप्शंस निकल जाएंगी.
3: 0800-004-866. Give us a call यार. आपको क्या लगता है कौन है?
4: कॉल करो.
3: कौन है आपको लगता है इसका आंसर क्या है, जिनको जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा है फॉर द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट?
4: लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आशा भोसले या सुनिधि चौहान, चारों में से कोई एक आर्टिस्ट है, कौन सी सिंगर ये हो सकती है? मैसेज करके अगर आप बता रहे हैं तो 5555 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ बताइएगा, अदरवाइज कॉल करके बताओ यहाँ पे.
3: जी हाय, गुड इवनिंग.
5: हेलो.
4: जी
5: आशा भोसले.
4: आपने तो आवाज भी वैसी निकालने की कोशिश की लगता है.
3: क्या नाम है आपका?
5: बॉब नायडू.
4: इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको?
3: पढ़ा है उन्होंने. ऐसा ये गलत आंसर है बॉब नायडू. आपने बोला सुना है हम पे कभी.
5: हाँ.
3: सोनल ने भी आंसर भेजा है. फिर एक और आंसर
4: बेनेफर ने बोला है. अहान का आंसर भी आया है.
3: जी
4: सो हमारे पास एक्चुअली में दो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज बिटवीन, वी कैन से दिस इज बिटवीन आशा भोसले एंड लता मंगेशकर.
3: ऑब्वियसली बिकॉज 2011 में 11,000 सॉन्ग्स, I don't think सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल would have done that because it's what, how many, 15 years back. उन्होंने जब स्टार्ट किया था आई थिंक उनका करियर
4: क्या लगता है मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक इंडस्ट्री कौन हो सकती है?
3: फटाफट भेजिए आपके आंसर्स यहाँ पे. एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस आवर विद श्रेया घोषाल एंड हर ब्यूटीफुल वॉइस. और इस मूवी के साथ काफी लड़कियों ने रिलेट किया था क्योंकि उन्होंने अपने आप को बोला था ना, सीखनी हूँ मैं भटिंडा की.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हाजिर है

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. और सुनी चौहान की आवाज में आपने सुना था ये बहुत ही तगड़ा सा गाना. सुनी चौहान और श्रेया भोसले, श्रेया भोसले क्या बोल रहा हूँ, सॉरी श्रेया घोषाल. ये दोनों अभी के टाइम में टॉप फीमेल लेड सिंगर्स है.
1: ये मुझे लगता है आज के टाइम की लता मंगेशकर है, नाशा भोसले है. श्रेया घोषाल इज मोर अबाउट रोमांटिक सॉन्ग्स लाइक लता मंगेशकर एंड सुनिधि चौहान मोर अबाउट पॉप सॉन्ग्स, डांस नंबर्स लाइक
0: नाशा भोसले. दैट्स एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली. बट सुनिधि चौहान यार, द वे शी परफॉर्म्स लाइव, इट्स आउटस्टैंडिंग.
1: नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल.
0: बियॉन्से.
1: Anyway,
0: लेकिन अभी थोड़ी देर में हमने आपको जो सवाल पूछा था कि कौन से ऐसी सिंगर है जिनको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम जुड़ा है फॉर रिकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स,
1: मोस्ट रिकॉर्डेड
0: सिंगर.
1: तो हमने आपको ऑप्शन दी थी, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आशा भोसले, सुनिधि चौहान. उसमें से दो ऑप्शन हमारी ऐसा 50-50 की चॉइस में आई, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले के बीच में. आपको बताना है हु इज द वन. वैसे फीमेल सिंगर्स के बारे में बातें की जाती है, तुम्हें पता है ओवर द सेंचुरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा मोर देन 500 फीमेल प्लेबैक सिंगर्स जो है इन्होंने रिकॉर्ड किया है मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में.
0: वाओ, 500
1: फीमेल सिंगर्स है.
0: अगर आप लेकिन ऐसे सोचने को जाओ तो इतने ज्यादा फीमेल लेड सिंगर्स के आते नहीं है अपने जहन में. लाइक आई नो फ्रॉम 90s इट्स अलका याग्निक.
1: या अनुराधा पौडवाल देव.
0: अनुराधा पौडवाल भी एक्चुअली में. And of course, आशा भोसले और लता मंगेशकर were definitely there, legends.
1: लेकिन वो उससे पहले भी काफी थी ना?
0: उससे पहले भी थे.
1: उससे पहले से ही थी.
0: और कौन था ना अपने 90s 2000 में female led singers?
1: कविता कृष्णमूर्ति.
0: That's right. Yeah. That's right. Well, कोशिश करेंगे आज सारे तो नहीं आपको सुना पाएंगे.
1: कुछ female singers के.
0: Latest वाले जो female singers है, current जो है, I think उनके गाने आज हम आपको सुना रहे हैं.
1: लेकिन जो सवाल पूछे उसका भी जवाब देते रहिएगा 5599 पर.
0: थोड़ी देर में उसका आंसर हम आपको देंगे.
2: एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
10: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
11: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
10: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
11: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
10: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
12: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
13: Branchy Group, Tree Event New Zealand and Arwaha Autos साथे मली ने प्रस्तुत करे छे Raj Gadvi Live in Auckland. तैयार थई जाओ एक यादगार सांझ माटे जहां हशे म्यूजिक, मस्ती अने नॉनस्टॉप गरबा. सैटरडे नाइट 1st ऑगस्ट, द महात्मा गांधी सेंटर, राज गढ़वी साथे मनाओ एक शानदार गरबा नाइट. गरबा विद राज गढ़वी, सैटरडे नाइट 1st ऑगस्ट. टिकट्स माटे जाओ eventstickets.co.nz.
14: शाइन Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
15: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
16: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Trend Makers में आज हम female led songs और female led singers के बारे में बात कर रहे हैं और उनके ही गाने आपको सुना रहे हैं।
1: सवाल हमने पूछा था most recorded artist in music industry Guinness Book of World Record में किसका नाम है?
0: And the right answer is Yes, you got it right. It is Asha Bhosle.
1: It is Asha Bhosle.
0: Asha Bhosle ने इतने सारे गाने गाए हैं और अलग-अलग feel वाले गाने गाए। It's not that she's just sung party numbers या
1: romantic गाने भी everything. But you know what, Rusbe? So before Asha Bhosle was officially awarded the title in 2011, Lata Mangeshkar was listed in Guinness Book of World Record between 1974 to 1991 for having recorded the most songs in history. लेकिन बाद में रिकॉर्ड को जब री इवैल्यूएट किया इवेंचुअली इट पास्ड ऑन टू हर सिस्टर
0: माय गॉड
1: आशा भोसले
0: दैट्स क्रेजी यार
1: इट इज सो बोथ सिस्टर्स ने देखा जाए तो फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री को डोमिनेट किया
0: दोनों ने मिलके इमेजिन अराउंड 20,000 गाने गाए होंगे रफली
1: बहुत ज्यादा ही उससे भी ज्यादा मेरे को लगता है बट काफी इसके चक्कर में काफी आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ आर डी बर्मन म्यूजिक कंपोजर काफी क्लैशेज भी रहे थे So there was time when both were not on talking terms as well.
0: Oh yeah, that's right. Anyway, अभी आशा भोसले की आवाज़ में ये बहुत ही बढ़िया सा गाना enjoy कीजिए फिर और भी जो female lead singers हैं उनके गाने आपको सुनाएंगे आज trend makers में.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. नेहा कक्कर की आवाज में आपने ये गाना सुना. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज शिल्पा राव. मैं ऑनेस्टली मेरे को शिल्पा राव की शक्ल नहीं पता.
1: मेरे को पता है.
0: अच्छा.
1: शी इज वेरी मेरे को इसलिए पता है क्योंकि वो आईफा में गई थी. तो उस समय पर मुझे भी नहीं पता था कि जो सामने आई है वो शिल्पा राव है.
0: राइट. बट बाद में पता चला.
1: बाद में को पता चला. सो मतलब बच्ची से लगती है वो. मतलब देखने में ऐसा हाइट उसकी छोटी सी है. हाँ छोटी सी हाइट है उसकी. बट क्या सिंगर है यार. मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. जैसे बॉलीवुड में डायलॉग्स में रानी मुखर्जी है तो मेरे को लगता है कि ऐसा सिंगिंग में इज शिल्पा राव. ऐसा वैसी वाली आवाज है. हस्की आवाज है.
0: हस्की सी आवाज है. टेक्सचर काफी.
1: भूमि त्रिवेदी की भी सिमिलर है.
0: दैट्स राइट.
1: हस्की आवाज.
0: भूमि त्रिवेदी का भी गाना आपको सुनाएंगे. लेकिन अभी आपको बता दें कि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहे हैं फॉर द फोर्थ न्यूजीलैंड कैरम टूर्नामेंट. ये हो रहा है 22nd और 23rd अगस्त को बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में. इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि ऑल स्किल्स आर वेलकम, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इसमें तो आप इनके फेसबुक पेज को चेकआउट कीजिए. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज. और या फिर आप पंकज मोंगा को कॉल कर सकते हो 0210908 5067 पे.
1: एंड इसी वीकेंड पे हेल्थ वेलबिंग एक्सपो होने वाला है. फीजी गिरमिट फाउंडेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं. संडे को रहेगा बिटवीन 10 AM टू 3 PM A1 इवेंट सेंटर में. फ्री स्क्रीनिंग है फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, ECG, आई टेस्ट. बहुत ही सुपर बैनर उसमें, बिकॉज वहाँ पे देखो ना लर्निंग भी होने वाली है अबाउट CPR, EpiPen, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस.
0: मैंने रिसेंटली सीखा इस सब के बारे में. भाई इट इज समथिंग दैट आई थिंक एवरीवन शुड लर्न.
1: ये स्किल काफी लोगों को आनी चाहिए.
0: फर्स्ट एड वाली जो स्किल्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड आई थिंक यू शुड टेक योर फैमिली देयर, यू शुड टेक योर पेरेंट्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को भी पता होना चाहिए ना इस चीज़ के बारे में. अगर आपके टीनेज बच्चे हैं उनको भी आइडिया होना चाहिए कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना होता है. एंड EpiPen के बारे में देखो, अपने को मालूम भी नहीं था कितने टाइम तक. क्या आपको मालूम है कि EpiPen को आप अपने कपड़ों के ऊपर से यूज कर सकते हो कि आपको बेयर स्किन पे यूज करना है? किसके ऊपर यूज करना है?
1: बेयर स्किन पे
0: नहीं, कपड़ों के ऊपर से भी आप यूज कर सकते हो.
1: ओके वाओ.
0: या सो देयर सो मेनी थिंग्स ना दैट यू नो एंड यू विल गेट टू नो फ्रॉम प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल्स. सो डेफिनेटली हेड टू हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो A1 इवेंट सेंटर में ऑन द 26th of July सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक. आपको
1: वहाँ पे भी आप जरूर जा सकते हैं. फीमेल लेड सिंगर्स के बारे में बातें करते हैं तो नेक्स्ट गाना है
0: शिल्पा राव की आवाज में. दिस इज फीचर्ड ऑन दी क्लासिक श्रीदेवी. इंग्लिश का गाना है ना ये. एंजॉय कीजिए.

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स ओनली ऑन हम. वैसे आज हम फीमेल लेड सिंगर्स आपको सुना रहे थे ट्रेंड मेकर्स पे, एंड काफी हम बात नहीं कर पाए बीच में काफी सिंगर्स के बारे में. भूमि त्रिवेदी का गाना हमने सुना
1: बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गाने भी आपके लिए प्ले करते,
0: क्योंकि ना सैंडी बात बहुत करती है ना. बट इसी बात पे अभी हमारा कल्टी मारने का टाइम यहाँ पे आ गया है. इट्स टाइम टू से बाय बाय.
1: या सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस. आपसे जल्दी मुलाकात होगी अब कल शो में राहत फतेह अली खान के, एंड देन मंडे को इन द कॉफी ब्रेक एंड ड्राइव शो.
0: नो सैंडी यू आर रॉन्ग. आपकी संडे को भी मुलाकात होने वाली है.
1: ओ यस, मैं भूल गई, संडे नाइट मेलोडीज में ना जरूर सुनेगा बिकॉज मैंने गजल्स 9 बजे से तो गजल्स है, उससे पहले अनप्लग्ड गाने भी है, बट 9 बजे से जो गजल्स है ना, गजल्स में आई एम गोना डू सम शायरी एज वेल.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Own the game, own the gear. It's sale time at Rebel Sport. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store wide. Here Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
3: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
5: Curtain Studio's massive three-day sale is on now. Our top-selling studio curtain and blind range is now half price. That's right, 50% off all studio ready-mades and custom fabrics and blinds. But be quick, sale ends Saturday. Only at Curtain Studio.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह.
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

कबड्डी कबड्डी कबड्डी।

0: सेल्फ इनटू
1: रैम्बो का नाम सुना, टर्मिनेटर का और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है ना,

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Massive Rover Bin.
1: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
2: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol, served everywhere this winter with a lime.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा।
1: Non-stop Bollywood.
2: पूछोगे करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hit.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
7: It's Carpet Court's massive three-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
11: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
10: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
11: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
10: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
12: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
3: हाँ, अच्छा
2: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz. Night Flight.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight on

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight.

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with VJ and Pooja.

जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

Hello, 9821026212 BPL. Are 9820026235 Max Touch.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
11: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
12: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast balang jo. Saturday Breakfast on Hum.
13: Aa gaya.
12: You're listening to Avineet.
14: Kia ora, bula, salam, namaste, sasrikaal, a very good morning. Main hu abhi aapke saath mein on the 25th of July, jabki aaj hai shanivar. Aise mein lekar aaya hu subah subah aapke liye Saturday morning breakfast show. Aur abhi aap bhi safar kar rahe honge, shayad subah subah nikal pade hain, kaam par jana hai aapko, raaste mein safar kar rahe hain. Aapko kehna chahenge, have a wonderful day, have a pleasant day ahead. Aur aapke is din ko aur bhi behtareen banane ke liye, aapka saath dene ke liye aa gaya hu. Lekar aaya hu dher sare नगमे जो बारी बारी से आपके साथ में शेयर करता रहूँगा. इसके साथ में इधर उधर की भी बातें हैं, बॉलीवुड से भी गपशप है. लेकिन आज तड़के सुबह सुबह एक एर्थक्वेक महसूस किया गया ताउ मरानुई के आसपास, बिल्कुल नॉर्थ आइलैंड में. क्या आपने भी ऐसा कुछ फील किया है कि जो क्वेक है ये अकॉर्डिंग टू जियोनेट रिपोर्ट्स आज सुबह सुबह 4:50 AM के करीब इसे महसूस किया गया है अराउंड ताउ मरानुई. तो जियोनेट ने बताया है कि कुछ लगभग 10 किलोमीटर्स के डेप्थ पे इसे महसूस किया गया है और जो इसके शोक से ये फील किया गया है पूरे के पूरे नॉर्थ आइलैंड में, कहीं ना कहीं साथ में साउथ आइलैंड में भी लोगों को इस झटका का महसूस किया है. तो ये सभी कुछ है आपके साथ में, इस पर और भी बातें आपके साथ में करते रहेंगे. और जो आफ्टर शोक से कहीं ना कहीं 5 बजे तक महसूस किए गए हैं और मैग्नीट्यूड 3.4 तक ये शायद था रिक्टर स्केल पर. क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? 5599 पर हमारे साथ में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए मैं हूं अवि, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है आपके फेवरेट डाल हम पर, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM. साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं पर भी हैं, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको विश करते हैं. ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा. और हाँ, मैजिक नंबर आपको याद है 5599, यहीं पर ही आपको अपने जो मैसेजेस हैं भेजने हैं हमको.
15: Quite a bit of that.

हम पर यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, मैं हूं आपका साथी अवि। और मौसम की तरफ अगर जो एक नज़र देख लेते हैं तो ओकलैंड के लिए खासकर आज का जो वेदर फोरकास्ट किया गया है तो शायद इसे सुनकर आप ज़्यादातर घर पर ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि काफ़ी जगहों पर शावर्स फोरकास्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ जो आगे चलकर एक हेवी रेनफॉल भी हो सकता है, शाम होने तक या इवनिंग होने तक ये थम भी सकती है। और इसके साथ में जो विंड है, यानी कि जो साउथ वेस्टर्ली की दिशाओं में आज हवाएं बहेंगी और आफ्टरनून तक ये कुछ गस्ट हो जाएंगी अप टू 100 किलोमीटर्स पे आवा, जो रात होने पर शायद ईज ऑफ हो सकती है। इसके साथ साथ आज का जो सनराइज है 7:25 AM और जो मैक्सिमम टेम्परेचर आज आप महसूस करेंगे कुछ 14 डिग्रीज तक रहेगा। इसके साथ साथ नेशनली अगर जो देखें तो जो मिक्स्ड वेदर पैटर्न है पूरे के पूरे शहरों में, नॉर्थ आइलैंड में, साथ में साउथ आइलैंड में ही भी ऐसा ही फोरकास्ट किया गया है, यानी कि काफ़ी जगहों पर ओवरऑल बारिश का

0: आज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यह था मौसम जो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, ताकि आप भी बिल्कुल प्लान रहें। आज के जो आपके एक्टिविटीज़ है, प्लानिंग्स है, इसमें भी आप एक नज़र मौसम को देखकर अपना प्लान्स बना सकते हैं।
1: डुमर चिकर डाकर चिकर डुमर चिकर डाकर चिकर डुमर चिकर डाकर चिकर डुमर चिकर डाकर चिकर डाकर चिकर डाकर चिकर डाकर चिकर डाकर चिकर डाकर चिकर डाकर

0: हाँ, जैसे घड़ी का काटा हिकरी डिकरी डोकरी एंड इट्स 6:20 AM, ऐसे में आपको विश करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। अभी का साथ है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, 25th of July है आज, हम पर आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM साथ में रोवा पर। आपकी भी सुबह हो गई है, आप भी जाग गए, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अपना प्यारा सा गुड मॉर्निंग का जो मैसेज है 5599 पर भेजिए, ताकि हमें भी पता चले आप कहाँ से सुन रहे हैं और कैसे हमारा साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि आज सुबह करीब करीब 10 to 5 5.7 मैग्नीट्यूड का जो एर्थक्वेक है, ये क्लोज टू ताओ मारानुई यहाँ पर महसूस किया गया। और इसके साथ में इसका जो इफेक्ट है पूरा का पूरा नॉर्थ आइलैंड और कुछ जगह साउथ आइलैंड में भी इसे लोगों ने महसूस किया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय जियोनेट, ये जो झटका है लगभग एट अ डेप्थ ऑफ 9 किलोमीटर्स पर थी, और इसका जो आफ्टर शॉक से ये भी महसूस किया गया। क्या आपने भी अपने इलाके में इसे महसूस किया, तो आप ज़रूर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। और इसके साथ में आपको बता दें इंटरनेशनल न्यूज़ में कि स्पेन, इटली और साथ में फ्रांस में, यहाँ पर इन तीनों देशों में काफ़ी मुसीबतों का सामना कर पर रहा है, जबकि अभी जो वाइल्ड फायर्स है यहाँ पर तीनों देशों में काफ़ी नुकसान मचाए हुए हैं। जो वाइल्ड फायर्स है ये स्पेन, फ्रांस, साथ में इटली में अभी जारी है। और इसके साथ में BBC ने रिपोर्ट में बताया है कि इतने एक्सट्रीम पर है कि कुछ 65,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है अक्रॉस फ्रांस एंड स्पेन। तो ये सभी कुछ जानकारी है, आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। और याद रहे आपके लिए जो सुबह 8 पर जो आज का पहला समाचार न्यूज रहेगा, ये भी आपके लिए लेकर आएंगे।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
3: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90. Or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
4: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट। ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू, 7 साल की वारंटी के साथ। एसयूवी हाइब्रिड्स, फोर व्हील ड्राइव्स, परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है। विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकानिनी। ट्रेड-इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल। फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। टाकानिनी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकानिनी।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम और मैं हूँ आपका साथी अभी. आज जबकि 25th ऑफ जुलाई है, ऐसे में आपका जन्मदिन है, आपको विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से, हम की पूरी टीम की ओर से. और इसके अलावा अगर जो आपकी शादी की सालगिरह है और इसका भी सेलिब्रेशंस आज ऑन है, तो इसके बारे में भी आप 5599 पर अपना जो प्यारा सा संदेश है, मैसेज है बर्थडे का या फिर वेडिंग एनिवर्सरी का, आप हमारे पास में भेज सकते हैं और यहां से आपको भी शामिल करेंगे, विश करते चलेंगे ऑन एयर. और क्योंकि हम कहते हैं अक्सर ना, जो खुशियां हैं ये बांटने से हमेशा बढ़ती हैं.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सरडे ब्रेकफास्ट शो में मैं हूं अभी आपके साथ में सुबह की पहली पहली चाय लेकर. और आपको बता दूं, जबकि आज है 25th of July, तो कुछ स्पेशल होने वाला है आज रात, जबकि ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म करने वाले हैं द वन एंड ओनली राहत फतेह अली खान. और इनके टिकट्स मैं यूं कहूंगा कि 300 से भी कम टिकट्स अब बाकी है. और ऐसा एक नाइट जो दोबारा वापस अभी हाल ही में होने वाला नहीं है, क्योंकि नो रिटर्न शोज और एक ही शो है. और अक्सर ये होता है ना कि शो हो जाता है, उसके बाद में हम सुनते हैं लोगों से कि कितना मज़ा आया, कितना फ़न था, और उसी समय हम सोचते हैं कि टिकट्स ले लेने चाहिए थे. तो dryTickets.com पर अभी भी आपके पास में मौका है, यहाँ पर जाकर अपने टिकट्स आप ले सकते हैं. जबकि इनको लेकर आ रहे हैं जेक स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइफ, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, साथ में सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन. याद रहे, आज रात को ही ये शो होने वाला है. और अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए जल्द से, क्योंकि एक ही शो है और इतने खूब ये गाते हैं, इतने दिल से गाते हैं. इनकी आवाज़ में एक ऐसी जादू है जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाती है. तो पूरा का पूरा पैसा वसूल शो ये रहेगा.

0: हम पर आप सुन रहे थे कुमार शानू को ऑन अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग, और यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। हमारी ओर से आपको बेस्ट विशेस। आप भी शायद निकल पड़ रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए, ऐसे में आपको यही कहना चाहेंगे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। मैं हूँ आपके साथ में हम पर अभी, मेरा ढेरों सारा प्यार।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: That's right, Saturday Breakfast Show on हम अभी का साथ है और लगातार कोशिश करने के बाद अगर जो आप हार जाओ और थक जाओ तो इतना ही याद रखिएगा, don't give up, great things take time.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: When hard work calls from dawn's first light, Tianli Tractor Tires keep you rolling right. Premium performance at a price that's fair, with a comprehensive range for every job out there. For farmers and contractors tried and true, built for the tough demands you put them through. For value, grip and reliability all day and night, see your local dealer for Tianli Tires with a lifetime warranty. That's peace of mind done right. T's and C's apply. Tianli Ag Tires, lifetime warranty.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
10: अच्छा
9: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
2: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: It's a client who tried DIY, it did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier, everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
13: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
14: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
15: Join the Tribe!
14: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
15: join the Tribe!
16: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
16: Saturday Breakfast on Hum.
17: Yo.
0: You're listening to Avineet.
18: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और सुबह के 7 बज चुके हैं और ये कारवा हमारा सैटरडे ब्रेकफास्ट शो चलता रहेगा आपके साथ में टिल 12। ऐसे में सुबह सुबह जो पहली चाय की आप चुस्की लेते हैं या फिर जो पहली कॉफ़ी आपकी होती है, जो भी आपकी पसंद है, प्रेफरेंस है, एंड इसका जो टेस्ट होता है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो आप भी अपना टी या कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, आपको शामिल कर रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, जो गुड मॉर्निंग हम आपको विश करते आ रहे हैं सुबह 6 से, आपको विश करते आ रहे हैं कि आपका दिन बिल्कुल बेहतर रहे, बेहतरीन रहे, आप इसको बिल्कुल इन्जॉय करें। और बदले में अगर जो आपका भी ग्रीटिंग्स हमारे पास में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। 5599 पर आप भी हमें सुन रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ़ कीजिएगा, अपने आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दीजिएगा। 5599 पर अपना जो प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज है आप हमारे पास में भेजें, और पढ़कर भी हमें यहाँ पर अच्छा लगेगा। ऑन दिस आवर आपको वेकअप कराने शंकर महादेवन आ रहे हैं।

0: up.
1: That's right. Beautiful Saturday morning and it's time to wake up. 7:05 AM ho chuka hai. Aise mein aapko bhi kuch karna hai aaj. Iske liye aapko jald jagna tha ya fir aapki jo alarm clock hai na bar bar aapko jagaye ja rahi hai. So it's time to wake up. Main hu abhi aapke saath mein breakfast show lekar aaya hu garma garam. Aur jo pehla message aaya hai good morning ka Sumit aapka hamare paas mein aa gaya hai. Thank you so much mere bhai. Aur isi tarah se aap sunte rahiye Saturday breakfast show ka maza lete rahe. Apne breakfast ka bhi aap maza lete रहे मोर इम्पोर्टेंटली इसके साथ में आप भी हमारे पास में मैसेजेस प्यारा सा भेज सकते हैं गुड मॉर्निंग का ना हम कहते हैं सुप्रभात हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग का जो मैसेज है ना 5599 पर आप भेज सकते हैं आपको भी कुछ सुनना है इसके बारे में भी आप अपने जो डेडिकेशन है रिक्वेस्ट है आप हमारे पास में भेज सकते हैं इसके अलावा आज जबकि 25th of July है आपका जन्मदिन है तो ये खुशियाँ भी आप हमारे साथ में बांट सकते हैं 5599

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: सरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर मैं हाजिर हूं अभी आपके लिए ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं तो क्वीन का प्यारा सा मैसेज आया है गुड मॉर्निंग अभी लिसनिंग टू योर ऑसम प्रोग्राम एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स थैंक यू सो मच इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें आप भी हमें सुन रहे हैं अभी तक आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज हमारे पास में नहीं भेजा है तो भेज दीजिए जल्द से आपको भी ओ नया हम शार्ट आउट देते चलेंगे या फिर कुछ आपको स्पेशल सुनना है ये भी आपके साथ में आपके लिए बजाते रहेंगे ऑन हम और हाँ आपको बता दे इसी आवर सनराइज होने को है 7:25 पर और 8 पर आपके लिए दिन का पहला समाचार भी रहेगा न्यूज़ एट 8

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है और मैं हूँ अभी आपके साथ में। और ये गाना सुनने पर मुझे ये याद आया कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ऐसे में आपको भी आपका दिल बहलाने के लिए सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर आए हैं 104.2 एफएम पर और साथ में रोवा पर। गुड मॉर्निंग भाई, आई एम जितेन। थैंक यू सो मच जितेन, आपका भी जो मैसेज है हमारे पास में पहुँच गया है। आपने सुबह सुबह हमको याद किया, थैंक यू सो मच फॉर देट। इसके अलावा आप भी सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आपको कहना चाहेंगे 5599 पर आप भी प्यारा सा मैसेज हमारे पास में भेजी दीजिए। और इसके साथ साथ में अगर जो आपने मिस किया है तो आपको बता दूं, आज तड़के सुबह लगभग 10:05 पर अगर जो आप सो रहे थे तो ताउमरो नुई में एक एथक्वेक लगभग रिक्टर स्केल पर 5.9 की रीडिंग पर ये स्ट्राइक किया है ताउमरो नुई में। और इसके जो इफ़ेक्ट्स है नॉर्थ आइलैंड में काफ़ी जगहों पर लोगों ने इसे महसूस किया, साथ ही साथ में साउथ आइलैंड में भी लोगों ने इस पर कुछ कमेंट किया है कि उनको भी ऐसा कुछ फील हुआ है। तो आपको भी अगर जो इसका असर आपने महसूस किया है, आपने भी फील किया है इस ट्रेमा को, तो 5599 पर आप हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं। इस पर जो और जानकारी है ये 8 बजे सुबह वाले समाचार में भी आपके साथ में शेयर करेंगे।
1: जबरदस्त हिट्स
2: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: When hard work calls from dawn's first light, Tianli Tractor Tires keep you rolling right. Premium performance at a price that's fair, with a comprehensive range for every job out there. For farmers and contractors tried and true, built for the tough demands you put them through. For value, grip and reliability all day and night, see your local dealer for Tianli Tires with a lifetime warranty. That's peace of mind done right. T's and C's apply. Tianli Ag Tires. Lifetime warranty.
3: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
4: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
5: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
4: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
5: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
4: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
7: Branchy Group 3 Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
8: Hey, hello.
7: Taiyar thai jao ek yaadgar sanj mate jyan hashe music, masti ane non-stop garba. Saturday night, 1st August, the Mahatma Gandhi Center. Raj Gadvi sathe manao ek shandar garba night. Garba with Raj Gadvi. Saturday night, 1st August, tickets mate jao eventstickets.co.nz.
9: Hum,
1: playing Bollywood's biggest hits. Saturday Breakfast on Hum.
10: जी हाँ, ये सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम, मैं हूँ अभी आपके साथ में और अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ आप जाकर आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। अक्सर हम वीकेंड में सोचने लगते हैं ना कि कहाँ जाए, क्या करें, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है इसको दूर करेंगे कहीं ना कहीं। इसके साथ में एक और एक प्यारा सा मैसेज आया है, जस, आप सुन रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच, शुक्रिया भाई। एंड आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग, इज जस्ट दिस साइड क्रूजिंग ऑन योर सॉन्ग्स। इसी तरह से आप हमारे साथ में एंजॉय करते रहे, वीकेंड है और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है, ऐसे में आप भी अपना ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे हैं, तो एंजॉय योर ब्रेकफास्ट विद हम। और मैं हूं अभी आपके साथ में, और भी बातें आपके साथ में थोड़ी देर में होंगी, लेकिन अभी के लिए अगले जो कलाकार है अल्ताफ राजा साथ में टोनी कक्कर, ये कोलैब करके आपके लिए साथ क्या निभाओगे, ये गाने वाले हैं, ये बजाने वाले हैं आपके लिए हम पर। अभी हाल ही में अल्ताफ राजा एक शो पर गए थे इंडियन आइडल में मेरे ख्याल से, और वहाँ पर इनकी अलग ही फैन फॉलोइंग थी और वापस कहीं ना कहीं हमको लेकर गई उस दुनिया में जहाँ पर ये अक्सर इनको देखते थे फिल्मों में, इनके गाने बजते थे।

मजा ले रहे हैं आप सरडे ब्रेकफास्ट शो का हम पर, और मैं हूं आपका साथी अभी। और आज जबकि सरडे है तो ऐसे में आप सोच रहे थे कि कहाँ जाए क्या करें, तो आपके लिए बता दें एक मार्केट लगेगा एवनडेल आर्ट पार्क में। एवनडेल आर्ट पार्क जो सिचुएटेड है 1925 ग्रेट नॉर्थ रोड एवनडेल में, यहाँ पर आज शाम 4 बजे से जो मार्केट है ये लगेगा, जिसे आप जाकर इंजॉय कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशंस आपके कुछ ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे फूड वेंडर्स रहेंगे जिसका आप मज़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ में क्रिएटिव मार्केट स्टॉल्स भी लगेंगे, लाइव म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट भी रहेगी, बच्चों के लिए फेस पेंटिंग और एक्टिविटीज़ भी रहेगी साथ में, ये सभी कुछ है। इसके अलावा एक इल्यूमिनेटेड फेस्टिवल लाइट्स भी यहाँ पर रहेगा, तो इसका आप मज़ा ले सकते हैं आज शाम 4 बजे से लेकर 9 बजे रात तक एट एवनडेल आर्ट पार्क। और इसके साथ में सरडे मार्केट्स की अगर जो बात करें तो एक और मार्केट है हाउविक विलेज मार्केट, अगर जो आप ईस्ट ओकलैंड में हैं तो यहाँ पर भी आप जाकर मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अमेजिंग फूड वेंडर्स रहते हैं, साथ में जो यूँ कहें जो एंटीक आइटम्स होते हैं ये भी आप ले सकते हैं उनके स्टॉल से, और ढेर सारे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जो कुछ ना कुछ आर्टवर्क बनाकर यहाँ पर बेचते रहते हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग्स टू डू आज आप कर सकते हैं सैटरडे 25th of July। और इसके अलावा अगर जो आपने आज रात का कुछ प्लान नहीं बनाया है तो 300 से कम टिकट्स बाकी है, तो राहत फ़तेह अली खान को देखने का मौका है लाइव इन ओकलैंड एट दी ट्रस्ट अरीना। ये आपकी बार जो आए हैं तो धूम धड़ाका ही करने वाले हैं, जिनको प्राउडली लेकर आए हैं जेके स्टार प्रोडक्शन, साथ में गोट लाइफ ड्रीम एंटरटेनमेंट, साथ में सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन। तो टिकट्स आपने नहीं लिए हैं अभी तक, dryTickets.com पर आप जाकर ले सकते हैं, अगर जो कोई प्लेन्स नहीं है इवनिंग में, क्योंकि इनका जो कोई एक्स्ट्रा शो नहीं रहेगा, कोई सेकेंड चांस नहीं है आपके पास में। अक्सर बहुत ही बढ़िया गाते हैं, जब भी गाते हैं बढ़िया गाते हैं, और एक ऐसा मैजिकल एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर देते हैं स्टेज पर। ये सभी कुछ आप लाइव देख सकते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस फॉर टुनाइट एट दी ट्रस्ट अरीना। और यहाँ पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं dryTickets.com पर। तो अगर जो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं, दिस इज ऑल यू हैव टू डू, गो टू dryTickets.com, ग्रैब योर टिकट्स नाउ।

0: ये सरडे ब्रेकफास्ट शो और आप हरिहरन साथ में लता मंगेशकर की आवाजों में सुन रहे थे चाई चपा चाई। ऐसा लग रहा था कि प्लेफुली एक बेंटा चल रहा था दोनों के बीच में, एंड वंडरफुल सॉन्ग। और आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स ये पूरे पैमाने पर जारी है स्कॉटलैंड में ग्लेसगो में, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी भी कल रही है। और इस कॉम्पिटिशन के अंतर्गत दो कीवीज ने अपने आप को सिल्वर मेडल दिला दिया है, जबकि कॉम्पिटिशन में भाग लेकर दोनों ने सेकेंड फिनिश किया है। स्विमिंग कॉम्पिटिशन में एरिका फेयरवेदर ने 400 मीटर्स के फ्री स्टाइल में फाइनल में फिनिश किया है सेकंड प्लेस में। इसी तरह से इनके हाथ सिल्वर मेडल लगा है। और साथ ही साथ में एक और एक स्विमर है लुइस क्लेबर्ट, इन्होंने अपने डिवीजन में 200 मीटर्स इंडिविजुअल मेडली फाइनल में सेकंड प्लेस पर फिनिश किया है। इसी तरह से दो सिल्वर मेडल्स हमारे हाथ लग चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें थोड़ा सा वॉटर डाउन कॉमनवेल्थ गेम्स है, और क्यों ऐसा है, थोड़े से छोटे पैमाने पर इस कॉम्पिटिशन को किया जा रहा है, और ऐसा क्यों है ये अगले आवा पर आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे टेक्स्ट प्लेटफॉर्म में अगर जो देखें प्यारा सा मैसेज है, गुड मॉर्निंग अवि पाजी, की हाल है, सत श्री अकाल भाई साहब, थैंक यू, एकदम बढ़िया है, योर ब्रेकफास्ट शो इज़ वेरी गुड। और आप हैं जी टेन सिंह पपटोय से, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, आपने बड़ा ही क्रिएटिव वे अपना नाम लिखा है, जी टेन यानी कि जीतेन सिंह पपटोय से, लेकिन जी टेन लिखकर आपने भेजा है, वंडरफुल। इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें, और कुछ 17 मिनट बाकी है 8 बजने में, 8 पर आपके लिए समाचार भी रहेगा।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hump.

0: चाहे आप हम की दिनचर्या 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Mitre 10 Club Members, ये आपके लिए। इस जुलाई शॉप कीजिए और स्कैन कीजिए अपना क्लब कार्ड एंड यूर इन द ड्रॉ टू विन 10,000 एयर पॉइंट्स प्लस वीकली एयर पॉइंट्स प्राइजेस भी। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट अमंगस्ट इट एट Mitre 10 Mega Westgate और Henderson।
2: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: When it comes to your vehicle, trust is key because, well, no one wants surprises, especially the expensive kind. That's why thousands of Kiwi drivers choose MTA. MTA members are qualified automotive professionals covering everything from servicing and repairs to buying and selling. So whether it's a service, a WAF, or checking that mysterious noise that you're definitely not imagining, look for the bright blue MTA badge at your local automotive business. MTA, keeping Kiwi drivers moving and your vehicle behaving itself.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
5: Thank you.
6: It's all I can think about.
5: What does it sound like?
6: Yeah, I'd rather not.
5: Go on, why don't you have a crack?
6: Okay, got a plumbing problem.
5: Oh, I need a bit more than that.
6: They've got your back.
5: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
6: Oh, okay.
7: There's no better plumber to give it a crack.
5: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
6: No, I want a plumber.
8: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
9: Branchy Group 3 Event New Zealand ane Aroha Autos sathe maline prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
10: Hey, hello, bhai, hello, hello.
9: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજ ગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ગઢવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
12: Playing Bollywood's biggest hits.
13: Toast, coffee aur hum ka energy. Saturday breakfast on hum.
14: जी हाँ, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी का साथ है और सुबह सुबह जो फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी की जो अरोमा होती है इसकी बात ही कुछ अलग होती है. इसका आप मज़ा ले रहे हैं हमारे साथ में जुड़कर हम पर, तो आपका खास स्वागत करते हैं 104.2 एफएम साथ में रोवा पर. आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी न्यूज़. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इन्वाइट कर रहा है टू द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो कि 22nd और 23rd अगस्त को रहेगी एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल. तो अभी तक आपके पास में समय है, अभी से जबकि अबाउट अ मंथ ही है, आप वापस गेम में आना चाहते हैं तो जितने भी खिलाड़ी हैं आप किसी भी स्किल लेवल के हो तो आपको इनवाइट किया जा रहा है पार्टिसिपेशन के लिए. और रजिस्ट्रेशन साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 0210908506 पर आप कॉल कर सकते हैं. तो याद रहे जो कैरम का कॉम्पिटिशन है इट्स अपकमिंग ऑन द 22nd एंड 23rd ऑफ ऑगस्ट. अभी से ही आप वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: अभी का साथ है और जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव साथ में ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन राहत फतेह अली खान जबकि 300 से कम टिकट्स बाकी है और ट्रस्ट अरीना में आज रात को ये परफॉर्म करने वाले हैं तो अभी से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं dryTickets.com। तो अगला ये गाना सुनिए और सुनते ही अपने टिकट्स बुक कीजिए।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मालूम
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: यो मैं हूँ सुता सा छोरा
0: You're listening to Avineet.
3: हम पर सुबह सुबह 8:02 हो रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आपने अभी अभी ज्वाइन इन किया है, हमको ट्यून इन किया है 104.2 FM साथ में रोवा पर. आपका खास स्वागत करते हैं. इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अलावा एक जगह और है जहां पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं. हम FM का जो फेसबुक पेज है, इसे भी आप फॉलो कीजिएगा. हम FM 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है, यहाँ सुबह सुबह हमने आपके लिए खास एक पोस्ट अपलोड किया है, इसे भी जाकर चेकआउट कीजिए. क्योंकि यहाँ हमने बातें की हैं अब इसके बारे में कि कैसे हम आप अपने आप को खुद को बदलते रहते हैं और टाइम एंड अगेन चेंज करते रहते हैं, वेदर देट इज़ राइट या फिर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. इसके बारे में कुछ बातें हुई. आप जाकर इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए. वहाँ पर भी अपने कमेंट्स आप डाल सकते हैं और ये सभी कुछ हमारे साथ में है. अगले आवर पर आपके लिए रहेगा मस्ती मीठा का शो, और वो भी इस आवर के बाद में 9 पर आपके लिए लेकर आएंगे.

सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अक्सर आपके लिए हम लेकर आते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से भी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन। अभी आपने सुना होगा, जबकि थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि न्यूजीलैंड के दो स्विमर्स के हाथ सिल्वर मेडल लग चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत, जबकि एरिका फेयरवेदा ने सिल्वर मेडल 400 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल में जीता। इसके साथ साथ लुइस क्लेबर्ट ने अपने डिवीजन में मेंस 200 मीटर्स इंडिविजुअल मेडली फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि क्यों ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, कैसे इतने इसको वाटर डाउन किया गया है, यानी कि इसका स्केल जो है कहीं ना कहीं नीचे लेकर आया गया है। आपको मालूम होगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये

एक्चुअली 2026 का विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होस्ट करने को था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट आफ्टर द कोस्ट, यानी कि उनके जो प्रोजेक्शंस थे ये काफ़ी ओवर बजट जा चुका था. फ्रॉम 2.6 बिलियन डॉलर्स से लेकर ऑस्ट्रेलियन 6 बिलियन डॉलर्स तक खर्च हो सकते थे इस गेम्स को होस्ट करने में, और इसीलिए विक्टोरिया ने इस कंपटीशन से को होस्ट करने से विड्रॉ कर लिया. उसके बाद में इन स्टेप्ड स्कॉटलैंड और कहा कि ग्लासगो में इसको हम अकॉर्डिंग टू अ वेरी स्ट्रिक्ट बजट होस्ट कर सकते हैं. और इसके बाद में ग्लासगो ने जो अपना जो बजट है ये पुट फोर्ड किया है 700 मिलियन से लेके 800 मिलियन पाउंड से रिड्यूस करके 160 मिलियन पाउंड तक इस गेम को होस्ट किया जाएगा. और सारे कंडीशंस भी इसमें ऑर्गेनाइजर्स ने लगाए हैं, जैसे कि कोई और नया स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करेंगे, जितने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने बिल्डिंग्स है, इसको इसमें ही जो एथलीट्स के विलेज हैं ये इनको प्रोवाइड करेंगे, और ना कि कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा. उसके साथ साथ में जो पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स है, कहीं ना कहीं इसको रीसेट किया गया है. कम से कम स्पोर्ट्स रखेंगे और द लाइनअप ड्रॉप फ्रॉम 19 स्पोर्ट्स. 2022 में कुछ 19 स्पोर्ट्स थे, अब 10 को स्पोर्ट्स है, तो कुछ 9 गेम्स को इवेंट्स को रिड्यूस किया गया है. तो ये सभी कुछ करके जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इस साल का, इसे आप लाइव देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रिड्यूस्ड बजट पर और अभी के शायद फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस को लेकर एक छोटे स्केल में किया जा रहा है. लेकिन ढेर सारी बातें भी आपके साथ में और रहेंगी, जबकि कल ओपनिंग सेरेमनी हुई है तो कुछ ऐसे ऐसे टीम के नाम सामने आए जो शायद मैंने पहली दफ़ा सुनी.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हम पर सिलसिला है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का और अभी का साथ है और आपको बता दें कि अभी से स्ट्रेट वन मंथ आफ्टर यानी कि अगले महीने और आ रहे हैं 25 अगस्त को नन अदर देन करण औजला ग्लोबल सेंसेशन ये अपना पॉप कल्चर लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड टूर टू ओकलैंड और आपके पास में मौका है इस कॉन्सर्ट में जाकर इनको देखने का. इनके साथ में रहेंगे स्पेशल गेस्ट इकी जो करण औजला को ऑन स्टेज शो ज्वाइन करेंगे ताकि आपके शो में चार चांद लग सके. ये सभी कुछ रहेगा स्पार्क अरीना ऑन द 25 अगस्त. तो आपको अगर जो टिकट्स चाहिए तो हम .rova.nz पर जाकर और इन्फॉर्मेशन लीजिए. साथ में livenation.co.nz पर आप भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. जो पॉप कल्चर वर्ल्ड हुआ है 25 अगस्त को स्पार्क अरीना में रहेगा. इसके बारे में आप अभी से टिकट्स ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. या फिर आपको जीतना है डबल पास तो इसका भी मौका आपको दे रहे हैं. कैसे? अगला जो गाना है आपको सुनाने जा रहे हैं करण औजला की आवाज़ में, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आपका फेवरेट करण औजला सॉन्ग कौन सा है और ये लिखकर आपको टेक्स्ट करना होगा. लेकिन सबसे पहला पहल लेटेस्ट के और ए ज़रूर लिखे, उसके बाद में अपने फेवरेट करण औजला सॉन्ग को लिखे, साथ में अपने नाम लिखकर भेज दे 555 99 पर.

सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब। सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में एक जरूरी सूचना आपके लिए। हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026 इसे आप तक लेकर आ रहे हैं फिजी ग्रिमेट फाउंडेशन न्यूजीलैंड साथ में एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस की ओर से। यहां पर आपको सिर्फ कल जाना होगा, संडे 26 जुलाई को एट A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साथ रोड पापटोए सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक। और एडवांटेजेस आपके लिए क्या है, फ्री स्क्रीनिंग रहेगी आपके लिए। अगर जो आपको ब्लड प्रेशर साथ में ECG या आई टेस्ट करवानी है तो यहाँ पर फ्री स्क्रीनिंग रहेगी। इसके साथ में आपको कुछ ऐसे ऐसे स्किल्स सिखाए जाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जैसे इजी योगा पोस्चर्स आपको सिखाए जाएंगे। इसके साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आपको बताई जाएगी, CPR भी आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन और करियर पर भी एडवाइस आपको मिल सकता है, जबकि यहाँ पर मेनेकाओ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साथ में NZ पुलिस रिक्रूटमेंट भी रहेगी। तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है संडे 26th ऑफ जुलाई एट A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापटोए सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक।

ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग 8:35 हो चुके हैं और ऐसे में आप भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने फ्यूल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। बस हमारे साथ में रहिएगा, थोड़ी देर में आपके साथ में ये जो टिप्स है आपके साथ में शेयर करेंगे।

0: हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में आपको सुनवा रहे थे आने वाली फोर्थ कमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है से ये गीत, एक और एक रिमिक्स आंखों से तूने ये क्या कह दिया, जिसे फिल्माया गया है फिल्म के स्टार राघव जुयाल पर, जो आप इन्हें प्यार से कॉकरोच भी कहते थे जबकि ये होस्ट करते थे डांस में, कॉम्पिटिशन्स में भाग भी लेते थे, स्टेज शोज भी काफ़ी किए हैं और इसके साथ में काफ़ी डांस प्लेटफॉर्म पर ये एज अ होस्ट भी आपने देखा है। तो राघव ये आज कल चर्चों में है जबकि इनकी जो फिल्म है 30 जुलाई को आने वाली है, और जबकि कॉकरोच का नाम लिया है तो हमको मालूम है कि नीट प्रोटेस्ट भी बिल्कुल जारी है भारत में, इंडिया में, जहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बारी बारी से। इस पर भी जो जानकारियां हैं आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। जो प्रोटेस्ट है बाद में चलकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं और समय पर आने पर इस पर और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए 20 मिनट बाकी है 9 बजने में और 9 पर आपके लिए मस्ती मीठा भी रहेगा, वीकेंड का माहौल है। मैं हूँ अभी आपके साथ में, आप भी कुछ अपना लैंडमार्क ओकेजन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद आपकी मंगनी होने वाली है या फिर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन का कारण जो भी हो 5599 पर आप हमारे पास में टेक्स्ट करके अपनी जो खुशियां हैं ये और भी बढ़ा सकते हैं।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
8: Māori Mā, every day we make choices, choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role? No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
9: It's Double Points Week with Everyday Rewards. Boost, spend and scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
10: Jen didn't think she needed a DVS system.
11: Oh, I've got insulation in that.
10: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
11: Ah, yeah.
10: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
12: The heart of a healthy home, DVS.
2: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
13: Join our tribe!
2: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
13: join our tribe!
14: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
15: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognised qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
16: SIT Online. Learn without limits.
17: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
1: The beat of Bollywood.
18: World's best. Hamari good brands nahi hai.
1: Saturday breakfast on Hum.
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अभी का साथ है और बातें होंगी अब पैसे बचाने की, यानी कि सेविंग्स के बारे में बात करेंगे, जबकि फ्यूल कॉस्ट को लेकर कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को विद इन कंट्रोल रख सकते हैं, इस पर जल्द से आपको कुछ टिप्स दे देते हैं. अक्सर हम देखते हैं जो आपके टायर्स है, कहीं ना कहीं ये ओवर टाइम एयर लूज़ करने लगता है. इट्स क्वाइट नेचुरल टू डू सो. और अगर जो आप नहीं नोटिस करते हैं तो आप कैन डू अ टच टेस्ट, यानी कि अपने टायर्स को आप सुबह सुबह साइड वॉल पे उसको टच करके, उसको पुश करके देखें कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके टायर्स की जो इन्फ्लेशन है, टायर इन्फ्लेटेड टायर्स है, इनमें जो हवा है या कम हो गई है या नहीं, तो ये आप चेक कर सकते हैं. और अगर जो ऐसा है तो आप इसको सर्विस स्टेशन में लेकर जाकर करेक्ट प्रेशर का जो एयर है भर सकते हैं. इसको करने से आपके कार को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है टू ड्राइव. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना. इन्फ्लेशन टायर्स के आपके बराबर रीडिंग पर होने चाहिए. इसके साथ साथ अगर जो आपके गाड़ी में एक्सेस लोड है, जो आप बूट में नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे निकाल कर रख दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपके फ्यूल कॉस्ट को ऊपर करता है. तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ताकि आप फ़ायदे में रहे हमारे साथ में. हम पर जब भी आप रहते हैं तो फ़ायदे में रहे हमारे साथ में, एंड दैट इज़ द मोटिव. और इसके अलावा अगर जो कुछ ऐप्स है जहां पर आप यूं ही घर पर बैठे बैठे ऐप्स पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि सबसे चीपेस्ट फ्यूल प्राइस कहां पर, कौन से सर्विस स्टेशन में आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है. सो सर्टेन टिप्स जो आपके साथ में लेकर आते रहते हैं

0: Saturday Breakfast on Hum. Masti Meter on Hum.
1: Yo,
2: main hoon
1: chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में एंड वी आर हाफ वे थ्रू द शो, जबकि सुबह के 9 बज चुके हैं और ऐसे में आप हमारा साथ दे रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर. शुक्रिया इसके लिए. 5599 पर आप अपने मैसेजेस अभी भी हमारे पास में भेज सकते हैं. कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, घर पर कोई इवेंट है, फंक्शन है, तो इसके बारे में 5599 पर ज़रूर शेयर कीजिएगा. इसके साथ साथ जो न्यूज़ है ये इस आवा नहीं बल्कि 10 पर रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस आवा आपके लिए है मस्ती मीठा, जहां पर वीक लॉन्ग के थकान के बाद में कुछ ऐसा कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे, कुछ हंसेंगे और आपको भी हंसाएंगे. ये सभी कुछ इसी आवा पर रहेगा आपके साथ में. और 104.2 FM साथ में रोवा के अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर इस पेज को फॉलो करने पर हम जो पोस्ट अपलोड करते हैं इसे भी आप जाकर देख सकते हैं. आज सुबह सुबह हमने एक पोस्ट डाला है जहां पर बातें की हैं टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, इसे भी आप जाकर ढेर सारा प्यार दे सकते हैं. इस हवा को शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह के साथ में.

0: तक पहुंचा रहे हैं।
1: मारो पिताजी कहते हो नमक खाने से प्रेशर हाई हो और नमक हलाली से ईमानदारी और हाई होए।
2: बी ए दो अक्षर पढ़े वो भी उल्टे बी ए
3: अपना क्रोध को बिल्कुल आप पे गई है।
1: मैं था मैं नहीं था। चौबे जी मूछनिया और दुबे जी नचनिया।
3: अरे वाह कट गया टिकट तो रंग बदले घिर के।
2: काई बोली काई बोली
3: था हुकुम खुशी से खुशी से।
0: हाँ तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि किस कलाकार की ये आवाज़ थी। और अगर जो इनके बारे में बातें करें तो इन्होंने काफ़ी हिट्स बॉलीवुड में पहनी हैं और साथ में डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, एक्टर भी थे, फिल्म प्रोड्यूसर और साथ में कंपोज़र भी थे। तो मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। अगर जो आपको पता लगा कि किसकी आवाज़ है तो 5599 पर अपने नाम के साथ में ज़रूर टेक्स्ट कीजिए।

0: Sister on Hum.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ में हम पर मस्ती मीठा का भी मजा ले रहे हैं और मैं हूं अभी आपके साथ में जिस एक्टर अभिनेता या फिर यूं कहें मैन विद मैनी टैलेंट्स की आवाज़ हमने सुनाई थी, जो क्लिप हमने आपको सुनाया था उसका सिर्फ एक ही जवाब आया है और कोमल ने ही अटेम्प्ट किया है। गुड मॉर्निंग कोमल, थैंक यू सो मच आपने पार्टिसिपेट किया। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, आपको भी हम कहना चाहेंगे। तो सिर्फ कोमल ने ही अटेम्प्ट किया है, शायद डिफिकल्ट हो गया, लेकिन इतना होना तो नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी आपने इनको काफ़ी दफ़ा फिल्मों में देखा है, कॉमेडी रोल्स में, और साथ में कई ऐसे ऐसे हिट फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट भी किया है, साथ में स्क्रिप्ट भी लिखे हैं। तो चलो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, मस्ती मीठा है ये, इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, इसे सुनिए और इसके बाद में अंदाजा लगाइए कि किस कलाकार की आवाज़ थी।
1: मारो पिताजी कहते थे नमक खाने से प्रेशर हाई हो और नमक हलाली से ईमानदारी और हाई हो।
2: BA दो अक्षर पढ़े वो भी उल्टे, BA
1: कितना क्रोध को
2: बिल्कुल आप पे गई है।
1: मैं था, मैं नहीं था, चौबे जी मूछनिया और दुबे जी नचनिया।
2: अरे वाह, कट गया टिकट तो रंग बदले घिर के।
1: आई बोली
2: था हुकुम, खुशी से।
0: तो ये जो कलाकार है इनको आपने कई बार सिनेमा में देखा है और आपका एंटरटेनमेंट भी इन्होंने खूब किया है। 5599 पर आप हमारे पास में अपना जवाब जो है भेज सकते हैं।
3: Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi.
4: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मानो सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: सरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम अभी का साथ है और मस्ती मीठा में जो आवाज़ हम आपको सुनवा रहे थे ये नीरज वोरा की आवाज़ थी और सही जवाब दिया है विधि ने और साथ में कोमल और उसके अलावा रिजवान आपका जवाब आया थैंक यू सो मच इसके लिए नीरज वोरा जिनकी पैदाइश हुई थी 22 जनवरी 1963 में और ही पास्ड अवे ऑन द 14th of December 2017 इसके बीच में काफ़ी काम किया है इन्होंने एज अ डायलॉग राइटर एज अ स्क्रिप्ट राइटर साथ में डायरेक्टर एक्टर इन सभी का जो टाइटल्स है इन्होंने बारी बारी से इस पर इसको अपनाया है और भली भांति काम किया है कुछ फिल्में जहाँ इन्होंने डायरेक्ट की हैं फिर हेरा फेरी 2006 में आई थी इसके अलावा खिलाड़ी 420 जो 2000 में आई थी इसको भी इन्होंने डायरेक्ट किया था इसके साथ साथ कुछ फिल्में जहां आप इन्हें बतौर एज एक्टर देख सकते हैं बोल बच्चन साथ में खट्टा मीठा हेलो ब्रदर और साथ में मन इन फिल्मों में आप इन्हें देख भी सकते हैं और ये एक ऐसे कलाकार अगर जो आपने दौड़ नहीं देखी है अभी तक तो इसमें आप ज़रूर इसे चेकआउट कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीच में ही आते हैं और पूरा का पूरा जो कॉमेडी का एलिमेंट है इसमें आप इनका चेकआउट कर सकते हैं तो ये नीरज वोरा की आवाज़ थी मस्ती मीठा में

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये, और लोग कई जगहों पर जिम से वापस भी आ रहे होंगे या फिर जिम की ओर जा रहे होंगे. अच्छी बात है क्योंकि एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन जो क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं, ही इज़ टोटली अगेंस्ट एक्सरसाइजिंग. यानी कि इनका कहना है कि एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए. क्या आप इनसे सहमत हो या नहीं? चलो इनको सुनवाते हैं मस्ती मीठा में. मस्ती मस्ती की बातें हैं और इसको सुनकर, इनको सुनकर इनका नाम टेक्स्ट कीजिए 5599 पर कि कौन ये शख्स है, कौन ये कवि है जो कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए.
1: थोड़ी थोड़ी टिप्स देता हूँ. एक तो आप लोगों को एक नया बीमारी चली है सुबह जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की मत करना, उम्र कम हो जाएगी आपकी. मैंने रिसर्च की इस पर. घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है.
0: हाँ, तो मालूम पड़ा कि ये किसकी एडवाइस थी जो अपने रिसर्च के मुताबिक कुछ एग्जांपल दे रहे थे. और चलो एक बार फिर सुनाते हैं और इसको सुनकर टेक्स्ट कीजिए 5599 पर कि कौन ये शख्स है, कौन ये पर्सनालिटी है, कौन ये कवि है जो एक्सरसाइज के सख्त खिलाफ है.
1: थोड़ी थोड़ी टिप्स देता हूँ. एक तो आप लोगों को एक नया बीमारी चली है सुबह जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की मत करना, उम्र कम हो जाएगी आपकी. मैंने रिसर्च की इस पर. घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है.
0: हाँ, तो इनकी माने तो अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है, और घोड़ा दौड़ता है तो सिर्फ 20 साल चलता है या जिंदा रहता है. तो आप बताइए 5599 पर कि कौन ये शख्स है, कौन ये कवि है जिनकी ये आवाज़ थी और जिनकी ये एडवाइस थी.

0: हम पर रवि का साथ है और विधि इज ऑन फायर। जी हाँ, विधि ने अपना जो जवाब है सुरेंद्र शर्मा लिखकर भेजा है हमारे पास में, और ये जो क्लिप थी ये सुरेंद्र शर्मा की ही आवाज़ में थी। ये एक हास्य कवि है जो कविताएं पढ़ते हैं और आपने इनको कई बार सुना होगा, और ये अभी 80 ईयर्स के हो गए हैं, 1945 की इनकी पैदाइशी है, और साथ में हरियाणा में ये बोर्न हुए थे, और इसके अलावा इन्होंने पोइट्री परफॉर्म करना शुरू किया था 1966 में, और उसके बाद में प्रोफेशनली 1970s में जाकर शुरुआत की थी। ज़्यादातर के ये मारवाड़ी या फिर हरियाणवी डायलेक्ट में काम बोलते हैं, और इनकी खुद की एक रिलीज़ की गई कैसेट थी, चार लाइना कवि टी सीरीज़ में 1980s में इसको रिलीज़ किया था, और अभी हाल में ये ऑकलैंड में भी आकर परफॉर्म करके गए। तो ऐसे हास्य कवि हैं जो कविताएं पढ़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको हंसाने हंसाने का काम ये कर जाते हैं।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती ज़रूरी है।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Keen to score 15 cents per litre off your fuel? From Friday to Sunday, scan your Club Plus card when you spend $100 at Pack and Save, Newworld or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
2: Curtain Studio's massive three-day sale is on now. Our top-selling studio curtain and blind range is now half price. That's right, 50% off all studio ready-mades and custom fabrics and blinds. But be quick, sale ends Saturday. Only at Curtain Studio.

0: मीटर।
1: मस्ती मीटा में मैं हूं अभी आपके साथ में, और कम्युनिटी न्यूज भी लगे हाथ आपके साथ में शेयर कर देते हैं। श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में है, ये लेकर आ रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं अखंड रामायण पाठ की, जो रहेगा 1st और 2nd अगस्त को, सैटरडे 1st अगस्त को, साथ में संडे 2nd अगस्त को ये प्रोग्राम रहेगा। सैटरडे को सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में ये आरंभ होगी, इसके बाद में आरती और फिर रामायण पाठ जो है अखंड पाठ, इसकी शुरुआत होगी। ये चलती रहेगी संडे सुबह 10 तक, जब जाकर रामायण पाठ समाप्त होगा उसके बाद में हवन और आरती रहेगी। आपके लिए महाप्रसाद थ्रू आउट द प्रोग्राम दिया जाएगा, और जानकारी के लिए 09836 4647 पर आप कॉल कर सकते हैं।

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम

0: मीटर ऑन हम
1: मस्ती मीटर में अभी का साथ है। एक और एक कम्युनिटी न्यूज है हमारे पास में जो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। किवी फिन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट अलोंग विद हम एज मीडिया पार्टनर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला। जो रामलीला का जो ड्रामा है 8 अगस्त को रहेगा सैटरडे, और आपको सिर्फ जाना होगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेस्को एवेन्यू पापटोई जहां पर ये ड्रामा रामलीला रहेगी। टिकट प्राइसेस है $10 पे पर्सन। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है। अगर जो आपको स्टॉल्स के लिए और जानकारी या इंक्वायरीज करनी है तो मास्टर अशोक को 0211795459 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है ये रहेगी शुक्रवार फ्राइडे 31 जुलाई को 7:15 PM से ये शुरू होगी। जगह है ARST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मेंगरे। एक बार फिर से ARST कम्युनिटी हॉल एट 53 स्किप्टन स्ट्रीट मेंगरे, और यहाँ पर आप सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है और इसके लिए भी आप जा सकते हैं।

0: ब्रेकफास्ट में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर।
1: यो मैं हूँ सुता सा छोरा।
0: You're listening to अविनीत।
2: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। 25th ऑफ जुलाई का ये सफर है, 12 तक चलता रहेगा और 10:02 हो रहे हैं। इस आवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं। इस आवा पर कुछ स्पेशल रहेगा, जबकि जुगाड़ जंक्शन तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको पता होगा शायद, अगर जो नहीं पता है तो मैं बता दूँ, 11th सनातन वर्ल्ड कप ये इस साल सितंबर में न्यूजीलैंड में होने को है और इसी को लेकर बातें करेंगे, जबकि आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है। बातें करेंगे चेयरमैन जितेन लाल से और ये सभी कुछ इसी आवा रहेगा, जबकि सनातन वर्ल्ड कप का जो मीडिया पार्टनर हम ही है, यानी कि हम पर आपके साथ में वर्ल्ड कप को लेकर जितने भी बातें हैं सनातन वर्ल्ड कप को, इस पर जानकारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको हमसे ही मिलती रहेंगी। वी आर ऑफिशियली लिंक्ड इन विद सनातन वर्ल्ड कप और इसको लेकर जितेन लाल से आपसे आपकी बातें करवाएंगे ताकि और इन्फॉर्मेशन ये दे सके। ये सभी कुछ रहेगा अराउंड 10:30 के आसपास। इसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहें और 104.2 FM साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट डाला है, आज आप इसे जाकर चेकआउट कीजिए कि टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, या फिर आप बदलना चाहते हैं, अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। अभी का ढेर सारा प्यार इस आवा पर भी।

इसको वेबलाइज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ढेर सारे और मसल्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं आपके ब्रेन में, और जो लैंग्वेज सेंटर्स है ये इस थॉट को वेबलाइज़ करने के बाद में एक बहुत ही अच्छा मेंटल नोट बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने टेम्परली उस चीज़ को कहाँ पर रखा है और कहाँ से उसको फिर वापस उठाना है। तो ऐसा करके आप अपने लाइफ को बिल्कुल ईजी बना सकते हैं।

हम्बर, मैं हूं अभी आपका साथी और ये है जुगाड़ जंक्शन। और उससे पहले आपको बता दें, गरबा नाइट विद राज गढ़वी ये आ रहे हैं ऑकलैंड में परफॉर्म करने के लिए। इनको ला रहे हैं प्राउडली लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और साथ में प्रांशी ग्रुप। और ये परफॉर्म करेंगे राज गढ़वी सैटरडे 1 अगस्त को महात्मा गांधी सेंटर ऑकलैंड में। अभी तक अगर जो आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो टिकट्स आर सेलिंग क्वाइट क्विक। और यहाँ पर जाइए eventstickets.co.nz पर जाकर अपने टिकट्स आप ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्वप्निल को कॉल कर सकते हैं 022-439-4736 पर। और आपके पास में एक मौका है कि आप डबल पास जीत सकते हैं अगर जो आप राज गढ़वी को लाइव देखना चाहते हैं, गरबा खेलना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, RG लिखे, शॉर्ट फॉर्म फॉर राज गढ़वी, RG लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर भेजें। अभी थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि कैसे आप एक रेंटल प्रॉपर्टी को कम से कम खर्चे में अपडेट कर सकते हैं, उसको और एक खूबसूरत मेकओवर दे सकते हैं। ये जो टिप्स है आपके साथ में बस थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: VG is on sale now at Flight Centre. Take the family to Plantation Island with 7 nights plus flights from $1,499 per person. Book in store today. Depart Auckland, fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
6: Bunnings has great value nailed across the store.
7: Like a Wrap and Move 105-litre moving bag, only $3.45. Or a 52-litre light-duty moving carton, just $3.45. Head in store or online for even more great value. Bunnings Warehouse.
8: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
9: IKEA.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods multigrain dosa batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
11: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए. हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर. ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर. 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध. आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है. स्वाद भी, सेहत भी.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
13: हाँ. अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
13: मिसेस सिंह.
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
16: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है? तो इसका जवाब है टाकनेरी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट. ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू, 7 साल की वारंटी के साथ. एसयूवी हाइब्रिड्स, फोर व्हील ड्राइव्स, परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है. विजिट टाकनेरी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकनेरी. ट्रेड इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल. फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. टाकनेरी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकनेरी.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
17: Saturday breakfast mein hum aaye hain Jugaad Junction par.
18: That's right, ये है जुगाड़ जंक्शन अभी के साथ में. और कुछ 10:23 हो चुके हैं हमारे स्टूडियोज में. आपने नया फ्लैट लिया है या फिर कहीं रेंटल प्रॉपर्टी ली है जहां पर स्पेस थोड़े कम हैं और आप सोच रहे हैं इसको कैसे मेकओवर करें, क्योंकि अक्सर ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें आप ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएंगे, शटल्स वगैरह नहीं लगा पाएंगे या फिर आपको स्टोरेज को लेकर दिक्कत होगी. तो एक ऑप्शन ये है कि आप ऐसे स्टोरेज सॉल्यूशंस को ले जहाँ पर आप फ्री स्टैंडिंग कैबिनेट्स हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वार्डरोब्स हो फ्री स्टैंडिंग इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि इनमें क्या खासियत होती है, आजकल तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास में होते हैं जहाँ पर ड्रॉर्स होते हैं, उसके साथ में डिस्प्ले यूनिट्स साथ में होती है और दे आर क्वाइट ईजी टू असेंबल. और जब आपकी टेनेंसी फिनिश हो जाती है उसके बाद में आप उसे क्वाइट ईजिली डिसअसेंबल करके रिमूव भी कर सकते हो. इसके साथ साथ अगर जो आपको जो आपका रेंटल प्रॉपर्टी स्पेस है आपको टाइट लग रहा है, देखने में छोटा लग रहा है, तो इसको आप एक ऐसा एम्बियंस दे सकते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्शन दे सकते हैं कि देखने में थोड़ा बड़ा लगने लगे। आप सिर्फ क्या करें, एक ओवल शेप का मीरा लाकर टांगे, क्योंकि जो ओवल शेप्ड का मीरा है ये एक ऐसा डायमेंशन क्रिएट कर देता है कि आपको आपके कमरे को या फिर आपके प्रॉपर्टी को, रेंटल प्रॉपर्टी को प्रोजेक्ट करता है कि थोड़ा बड़ा लगने लगता है देखने में। कशिका ने मिडविक भी माइटम में शेयर किया था कि होटल्स में क्यों ओवल मिरर्स लगते हैं, ताकि वो इल्यूजन क्रिएट कर सके कि आपको रूम देखने में थोड़ा बड़ा लगे। तो ये सभी कुछ आप अपने रेंटल प्रॉपर्टीज़ में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है आपके लिए जुगाड़ जंक्शन में। और हाँ, अगर जो आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है लेट करने के लिए, तो 11 बजे के बाद में आपके साथ में देसी बिज शाउटआउट भी रहेगा, जहाँ पर आप अपने रेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारे पास में टेक्स्ट भी कर सकेंगे 1559।

0: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। हमने आपसे बताया था कि इस ईयर यहां पर एक उच्च कोटि का जो टूर्नामेंट है ये होने जा रहा है, 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026। इसके बारे में हमने आपसे कहा था कि इसकी लॉन्चिंग आज कर रहे हैं हम पर, जबकि हम मीडिया पार्टनर्स हैं और सनातन वर्ल्ड कप के साथ में जुड़ी हुई है। और इस पर और भी बातें करने के लिए हमारे साथ में टेलीफोन लाइन्स पर है भाई श्री जितेंद्र लाल, जिन्होंने सनातन बोर्ड में एक कार्यकर्ता है, बोर्ड सेक्रेटरी है, बोर्ड मेम्बर है और ख़ासकर इस टूर्नामेंट को लेकर ये चेयरमैन है। और इनसे बातें करेंगे ताकि आपके लिए और सारा इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ सके कि क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टूर्नामेंट से जो आने वाला है सितंबर में। तो चलिए बातें करते हैं जितेंद्र लाल से। भाई जी आपका स्वागत है।
1: थैंक यू। अभी कैसे हो आप?
0: बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका थोड़ा सा फीडबैक आ रहा है बैकग्राउंड में।
1: अभी राइट है?
0: हाँ ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने कहा है कि 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 ये होने जा रहा है सितंबर में, इसके बारे में क्या आप हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं?
1: वेल, अभी आप जैसे जानते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड 11th सनातन वर्ल्ड कप। ये एवरी सेकंड ईयर होती है और लास्ट वर्ल्ड कप ये जो हुआ था 2024 में सिडनी में, उसके बाद में यहाँ न्यूजीलैंड में इस साल है, फिर आगे चल के और भी कंट्री में होगा। लेकिन ये बात बता दे कि ये आपने जैसे कहा कि ये टूर्नामेंट जो है 30th अब सितंबर से लेकर 4th अक्टूबर यहाँ पर ऑकलैंड में होगी। और आज इसका जो हम लॉन्चिंग कर रहे हैं आज यहाँ ऑकलैंड में, इसका बहुत सी बड़ा लॉन्चिंग होने वाला है आज शाम को 6:30 PM पर। और इसमें हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया से और फिजी से दूर दूर से काफी गेस्ट आए हुए हैं जो वर्ल्ड कप में बोर्ड मेंबर्स है, और उनके साथ में और भी सपोर्टिंग गेस्ट आए हैं टूर्नामेंट के लॉन्चिंग के लिए आज शाम को।
0: ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़। इसके मतलब है कि आज शाम को 6:30 के आसपास इसका जो लॉन्च है ऑफिशियली आप कर देंगे?
1: डेफिनेटली अभी भाई इसका बहुत बड़ा सा लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर कुछ और यहाँ का भी चीफ गेस्ट आने वाले हैं शाम को। और यहाँ पर सिर्फ खाली फुटबॉल नहीं है, इट्स अबाउट कल्चर एज वेल। तो इसमें काफी कल्चरल प्रोग्राम्स रहेगा। आप जानते हैं कि हमारा और रिलीजन में वी गोट कीर्तन, भजन एंड संगीत एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉन्ग्स इत्यादि सिंगिंग सब होगा आज शाम को यहाँ पर।
0: ओह दैट्स वेरी गुड। आपसे जानना चाहेंगे कितने टीम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए?
1: एक्सपेक्ट का वर्ड ही नहीं है अभी भाई, क्योंकि टीम कन्फर्म कर चुके हैं। क्लोज टू 80 फुटबॉल टीम्स है हमारे पास, 80, और 20 नेटबॉल टीम्स है, और अब करीबन 12 हमारे पास वॉलीबॉल टीम्स, और 80+ गोल्फ प्लेयर्स है इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले।
0: सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टूर्नामेंट।
1: डेफिनेटली अभी हमने काफी इसका जो राइट अप या इसका काफी पब्लिक में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माई टीवी पीजी में हो चुका है, न्यूजीलैंड में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। सभी लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि दिस इज गोना बी अ बिगेस्ट, बिकॉज न्यूजीलैंड में कभी इतना टीम्स कोई भी कैटेगरी में नहीं हुआ है। नॉट ओनली अबाउट कैटेगरी, अबाउट एनी अदर रिलीजन भी नहीं होस्ट कर सके इतना ज्यादा टीम जो हम कर रहे हैं इस साल यहाँ पर ऑकलैंड में।
0: मैं आपको बताऊँ, मैं जुलाई में छुट्टियां मनाने के लिए सरी में था, और सरी में लोगों से बातें हुई हैं जो टीम्स लेकर आ रहे हैं सरी से इन सितंबर फॉर द न्यूजीलैंड सनातन टूर्नामेंट।
1: डेफिनेटली कैलिफोर्निया से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से टीमें हैं, फिजी से फर्स्ट टाइम क्लोज टू 20 टीम सिर्फ फिजी से आ रहा है।
0: अच्छा, इस इन गेम्स के लिए, खासकर फुटबॉल के लिए जो लोग देखना चाहेंगे, कौन कौन से ग्राउंड्स को आप इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन से वेन्यूज रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।
1: अभी हमारा जो मेन वेन्यू न्यूजीलैंड में जितना सोका प्लेयर्स है, सपोर्टर्स है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सपोर्टर्स है वो जानते हैं, बिल मिकली जो होम ऑफ फिजी सोका है, आप जानते हैं कि वहां पर सभी टूर्नामेंट होती है, आधा रिलीजन का, सनातन का, संगम का, यूनाइमिट NZFFI वहाँ बहुत होस्ट करते हैं, साथ साथ में गुजराती टूर्नामेंट। सब मेन वेन्यू हमारा जो रहेगा इट्स अ बिल मिकली पार्क, और उसके साथ में 2-3 और भी वेन्यूज है, बिकॉज हमारे पास करीबन 155 मैचेस खेला जाएगा 5 days में। तो विदाउट हैविंग 5 वेन्यूज वी कांट होस्ट इट एट वंस। हमने विलियम ग्रीन पार्क है जो पेकोरांगा रोड पर है, वो फील्ड हम यूज कर रहे हैं, और साथ साथ में ओमिस्टन प्राइमरी स्कूल पर वहां पर भी फील्ड है और बेरी केटस पे भी जो फील्ड है वहां भी हम इस वेनी को इस्तेमाल करेंगे।
0: और मैं लगे हाथ ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी बातें कल तो हुई थी लेकिन हमारे लिसनर्स के लिए क्या एंट्री फीस ये देख रहे हैं या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एंट्री रहेगी?
1: भाई हमने कभी आज तक ईदा हमने लोकल टूर्नामेंट सनातन आईडीसी का किया है या वर्ल्ड कप किया न्यूजीलैंड में, नेवा, वी हैव, हमने एंट्री फी कभी नहीं चार्ज किया। सिर्फ कार पार्किंग का फी रहेगा, आप जानते हैं कि कार पार्किंग न्यूजीलैंड में कहीं फ्री नहीं है, तो कार पार्किंग तो आप करना चाहेंगे तो उसका फी रहेगा, अदरवाइज एंट्री फॉर पीपल सपोर्टर्स एनीवन कमिंग इज फ्री। और ये भी बता दें कि जो सैटरडे एंड संडे रहेगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ सैटरडे संडे को यहाँ पर फ्री वेजिटेरियन मील सभी के लिए मिलेगा, तो लोग आकर वहाँ पर यू नो दे कैन हैव अ नाइस लंच बिटवीन 12 एंड 2 बिल मैकिनली पार्क, बोथ डेज सैटरडे एंड संडे बोथ।
0: अच्छा, आज जो आप लॉन्च कर रहे हैं शाम को, ये इनविटेशन ओनली है?
1: डेफिनेटली इनविटेशन ओनली है क्योंकि लॉन्च में इन्वाइटेड गेस्ट कल ही आ रहे हैं और टीम्स डेलीगेट्स रहेंगे यहाँ पर, टीम में से एक एक डेलीगेट आ रहे हैं और हमारे साथ में स्पॉन्सर्स रहेंगे वहाँ पर, मीडिया भी रहेगी, यू नो, तो वी एक्सपेक्टिंग एनीवेयर बिटवीन 150 टू 180 पीपल एट द लॉन्च टुनाइट।
0: थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला हमसे बातें करने के लिए। आपको विश करना चाहेंगे बेस्ट ऑफ लक आज शाम के लॉन्च के लिए, और जबकि हम आपके साथ में एज मीडिया पार्टनर्स जुड़ चुके हैं तो आपसे बातें तो होती रहेंगी।
1: Definitely, definitely. Avi, before I leave, I just want to mention ki, you know, this tournament, 11 Sanatan, is not only a tournament. Ye hamara celebration yahan par rahega. Aur unity by faith rahega yahan par, you know. People kahan kahan se, jahan America, Canada, Fiji, Australia se aayenge, yahan par unity by faith rahega. Aur ye hamara strength karega, hamara jo culture hai, you know, Hindu dharam, jo Sanatanis hai, they can come in other religions as well. Koi bhi aa sakta hai is tournament mein, but mostly jaise players hai, they should be the heritage of Fiji Hindu. Wo hamara tournament rule mein hai. Aur, you know, everyone will be inspired by sport. I know this football thing altogether.
0: Ji, aisa kehte hai na, sports brings people together. Aur best of luck ek baar phir se aaj sham ke launch ke liye. Aur aapse phir baatein hongi bhai Shri Jiten Lal. And aane wale dinon mein bilkul baatein karenge. Thank you so much.
1: Thank you so much. Thank you, Abhi. Thank you for taking me on there.
0: Thank you. तो ये थे सनातन एग्जीक्यूटिव जितेन लाल, जिन्होंने समय निकालकर आपको बताया है 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 के बारे में, जो सितंबर महीने में यहाँ पर होने को है और इसकी लॉन्चिंग आज शाम को जैसा कि आपने सुना है होने वाली है और एट वैदिक सेंटर। लेकिन आने वाले दिनों में जबकि हम जुड़ चुका है इस इवेंट के साथ में एज ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स, तो आप तक और भी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाते रहेंगे।

0: Jugaad Junction on Saturday Breakfast.
1: जुगाड़ जंक्शन है ये, मैं हूँ अभी आपके साथ में, हम पर 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आपका साथ दे रहा हूँ। करण औजला ये लेकर आ रहे हैं अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ओकलैंड, और जबकि अगले महीने इसी डेट को 25th ऑफ अगस्त को, यानी कि एग्जैक्टली वन मंथ फ्रॉम नाउ, इनका जो कॉन्सर्ट है स्पार्क अरीना में रहेगा। इनके साथ रहेंगे स्टेज पर इकी, जो यहाँ पर कॉन्सर्ट में चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं। और अगर जो आपको टिकट चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए, hum.rova.nz पर जाइए या फिर livenation.co.nz पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको डबल पास भी चाहिए ना, तो डबल पास देने का मौका आ गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप अपना फेवरेट करण औजला जो गाना है, सॉन्ग है, इसे हमारे पास में लेटर्स के और ए लिखकर, कीवर्ड के और ए है लिखकर, अपना जो फेवरेट गाना है उसके साथ में अपना नाम 5599 पर भेज दें, और जैसे ही आप भेजेंगे आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर दिया जाएगा। बस इतना सिंपल।
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday Breakfast on Hum.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: हुनुआ और वेटाकरे।
4: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
5: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast mein hum aaye hain Jugaad Junction par.
2: जुगाड़ जंक्शन में मैं हूं अभी आपके साथ में, और अगर जो आपने मिस आउट कर दिया है तो आपके पास में मौका है अपने फेवरेट करण ओजला का जो गाना है 5599 पर विद द कीवर्ड्स KA लिखकर आप टेक्स्ट कर सकते हैं और आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां पर आपके हाथ डबल पासेस लग सकते हैं। इसके अलावा जुगाड़ जंक्शन में आपको बता दें, जबकि बातें हो रही थी एक ऐसे रेंटल प्रॉपर्टी के की जहां पर आपको शायद मूव होने के बाद में कहीं ना कहीं चेंजेस ऐसे करने हैं ताकि आपका जो रेंटल प्रॉपर्टी है देखने में प्रेजेंटेबल लगे, और साथ ही साथ में अक्सर काफी टाइट स्पेसेस होते हैं और इसको बड़ा दिखाने के लिए क्या कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक आइडिया ये है कि एक स्टेटमेंट फर्नीचर आप रख सकते हैं एज अ सेंटर पीस, ऐसे कोई फर्नीचर आप रख सकते हैं जो जैसे ही कोई एंटर करे आपके फ्लैट में तो सीधा उनका अटेंशन ये ग्रैब कर ले। तो सेंटर पीस होने से क्या है कि आपको रूम को ये ब्राइटन अप करता है, आपके फ्लैट को ये ब्राइटन अप करता है, और कहीं ना कहीं एज अ मेन पीस ऑफ अट्रैक्शन आपके जो विजिटर्स होते हैं इनकी नज़र कमरे की साइज़ या फ्लैट की साइज़ से हट जाती है। और जो आपका स्टेटमेंट फर्नीचर है, नॉट नेसेसरी कि ये नया भी हो, आप प्री लव्ड फर्नीचर्स भी ले सकते हैं। कई जगहों पर शहरों में प्री लव फर्नीचर है जो काफ़ी यूनिक होते हैं, एंटीक होते हैं, एंड दे कैन बी एन आइडियल सेंटर पीस। तो ये कुछ ट्रिक्स है, आइडियाज़ है जो आप जुगाड़ जंक्शन में सुनते हैं और अपने लिए आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

0: हम पर आज के लिए जुगाड़ जंक्शन में बस इतना ही, और अब तो 11 बजे के बाद में देसी बिज शाउट आउट रहेगा आपके साथ में। इसके बारे में अगर जो आपके लिए कोई मैसेजेस है, कोई बिजनेस आप चला रहे हैं, घर से होम बेस्ड है और प्रमोट करना चाहते हैं हम पर, तो 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिए, और 11 बजे के बाद में आपको ऑन एयर टाइम भी देंगे ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें और क्लाइंटेल भी आप बढ़ा सकें। ये सभी कुछ जस्ट आफ्टर 11 विद देसी बिज शाउट आउट।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hump.

0: चाहे आप हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Please use your imagination for the following ad.
2: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
1: Imagine winning $40 million this Saturday. Play in store or online.
3: Spending more time indoors this winter? Freshen up with the Resene Winter Sale. 50% off test pots, 20% off Resene interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Resene, the paint the professionals use. T's and C's apply.
4: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
5: टाटा नैनो ऑटो ग्रुप में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स और एसयूवीज ब्रांड न्यू सिर्फ 29,990 से। लीप मोटर, डोंगफेंग और बाइक के लेटेस्ट हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स। ट्रेड-इन्स वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है। विजिट टाटा नैनो सुपरसाइट। पेट्रोल और डीजल के क्रेजी प्राइसेस को बोलिए गुडबाय और नई या क्वालिटी यूज्ड ईवी या हाइब्रिड घर ले जाइए। और हाँ, ये ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेड कर लेंगे बस आपके मदर इन लॉ के अलावा। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साउथ रोड, टाटा नैनो। फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया apply.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: listening to Avineet.
1: हम पर देसी बीस शॉर्ट आउट में ये फाइनल आवा है, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। मैं हूँ अभी सुबह 6 से आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर आप हमें सुनते आ रहे हैं। और हाँ, मैंने एक फेसबुक पेज पर, हमारे हम के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट भी अपलोड किया है, इसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन अभी के लिए, जबकि ये सेगमेंट है देसी बीस शॉर्ट आउट के लिए, तो आपके लिए आपके पास में कोई भी होम बेस्ड बिजनेस है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो 5599 पर आप अपनी बिजनेस डिटेल्स टेक्स्ट कीजिए और यहाँ से आपके जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन है हम उन्हें पढ़ते रहेंगे। ऐसा करने में आप ही की फायदा है, क्योंकि हम जिसे आपने बनाया है न्यूजीलैंड्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन, यहाँ पर जितने लिजनेस है, तमाम लिजनेस है, आपके सर्विसेज को ये सुन पाएंगे और आपके लिए जो क्लाइंटल है, जो मार्केट है आपका, ये बढ़ेगा। तो सबसे पहला पहल मो जहीर, अगर जो आप घर पर हीट पम्प इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं या फिर सर्विसिंग करवाना चाहते हैं, आपका हीट पम्प सही तरीके से काम नहीं कर रहा है विंटर के सीजन में, तो आप मो जहीर को कॉल करें 022-08018817 पर, और ये आकर आपके घर पर आपके जो यूनिट्स हैं इनको इंस्पेक्ट करेंगे, साथ ही साथ में आपको एक कोटेशन भी दे देंगे। एंड इफ यू आर हैप्पी तो आप प्रोसीड कर सकते हैं मो के साथ में, जो एक बहुत ही रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 022-08018817 पर आप मो को कॉल कर सकते हैं फॉर योर हीट पम्प इंस्टॉलेशंस एंड सर्विस।

0: हम पर रवि के साथ देसी बिज का ये गोल्डन आवा है जहां पर आपके बिजनेसेस को प्रमोट करने का मौका है। तो अगर जो आप भी प्रमोट करना चाहते हैं तो 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर जो ओन आकर भी हमसे बातें करना चाहते हैं तो 0800004866 पर आप कॉल कर सकते हैं। अपने बिजनेस के बारे में, होम बेस्ड बिजनेस है, खासकर अगर जो आप गार्डनिंग करते हैं, वेजीज है आपके पास में बेचने को, साथ में फ्लावर्स है जो आप बेच रहे हैं घर से, इसके अलावा अगर जो आप ट्यूशंस दे रहे हैं, या फिर टेलरिंग सर्विसेज है, या फिर यूं कहें कि और कोई सर्विसेज है जो लेजिट है और आप घर से प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में आप प्रमोट कर सकते हैं विद हम।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू। सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।

हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का जो सिलसिला है जारी है और एक मैसेज आया है हमारे पास में स्टीवन, ये प्रोवाइड कर रहे हैं स्टील गेट फैब्रिकेशन साथ में इंस्टॉलेशन, अगर जो आपको चाहिए स्टील गेट्स और इसके अलावा इसके साथ साथ न्यू बिल्ड हाउसेस और रेनोवेशंस के लिए आप स्टीवन को कॉल कर सकते हैं 0221998959. याद रहे, फॉर ऑल योर स्टील गेट्स फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन न्यू बिल्ड हाउसेस रेनोवेशंस के लिए स्टीवन को आप कॉल करें 0221998959 पर, ये आकर आपको कोट करके दे सकते हैं एंड ही विल बी हैप्पी टू पुट अ कोट.

0: Gucci.
1: Lovable investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.
2: Desi Biz shout out on Saturday Breakfast.
3: That's right, ये है देसी बिज शाउट आउट हमारे साथ में. मैं हूँ अवी ऑन 104.2 FM, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. और देसी बिज शाउट आउट में अगर जो आपको घर में कोई रिपेयर मेंटेनेंस करवाना है या फिर आपको डेक्स बनवाने हैं फो समा, तो आप शेल्विन को कॉल कर सकते हैं ऑन 022-131-7620. 022-131-7620 पर शेल्विन को आप कॉल कर सकते हैं और ये आकर आपके जो रिपेयर मेंटेनेंस वो के उसको देखकर इवेलुएट करके एक कोट भी दे सकते हैं एंड ही विल बी हैप्पी टू वॉक थ्रू इट. तो ये सभी कुछ मौका है. आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसको आप ओन या प्रमोट करना चाहते हैं तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर 0800-004-866 पर आप ओन या आकर बातें भी कर सकते हैं.

0: 25 जुलाई है, मैं हूं अभी आपके साथ में और 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। हम म्यूजिक स्टेशंस जो कि रोवा ऐप पर हैं, यहां पर हम रिवाइंड के नीचे आप बॉलीवुड के जितने भी गोल्डन ईरा है 60s और 70s के गाने आप सुन सकते हैं। इसके अलावा 80s के भी गाने आपके लिए हम 80s जुक बॉक्स में स्टोर किए गए हैं। इसके साथ फिजी भजन आप सुनना पसंद करते हैं तो ये भी आपके पास में मौका है और इसका भी एक 24/7 प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। चर्दी कला फॉर ऑल योर पंपिंग पंजाबी हिट्स ये भी आपके लिए स्टोर किया गया है। इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह का प्लेटफॉर्म है जहां पर फिजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज़ों में यहां पर कीर्तन स्टोर किए गए हैं। इसके साथ राहत फतेह अली खान, इनकी अलग फैन फॉलोइंग है और आज रात को तो ये परफॉर्म करने वाले भी हैं और इनका जो प्लेटफॉर्म है यहां पर जितने भी इनके गाए हुए सूफी हैं, कवालियाँ हैं, ये सभी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं ऑन रोवा। तो अगर जो किसी कारण अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो नाउ इज़ द टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कॉम्पिटिशन्स भी किए जाते हैं, तो क्यों मिस आउट करें, अभी से ही डाउनलोड कर लीजिए। वापस आते हैं देसी बिज शाउट आउट में जहाँ पर मौका दे रहे हैं आपको अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। विकास ये टी शर्ट प्रिंटिंग करते हैं वोक वेयर, साथ में अगर जो यूनिफॉर्म्स है जिस पर आपको लोगोस चाहिए या फिर अपना जो कंपनी नेम है प्रिंट करवाना है, तो ये सभी कुछ के लिए आप विकास को कॉल करें 0272545468 0272545468 पर आप कॉल करके विकास से बातें कर सकते हैं, जो टी शर्ट प्रिंटिंग साथ में यूनिफॉर्म भी लेबल या प्रिंट कर सकते हैं आपके लिए, आपके लोगों को अपने कंपनी नेम को ये प्रिंट करवा सकते हैं। आपके पास में भी कुछ है बताने को, कोई होम बेस्ड बिजनेस है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, नंबर एक ही है 5599, यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम। वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: designed. Sif Rovapar.
1: It's Carpet Court's massive three-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl, and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
2: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
3: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
8: We've got double glazing.
7: Have you still got that cold, damp feeling?
9: Yeah, we do.
7: So Tori and Ben got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: Spark Satellite, powered by Starlink satellite-to-mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
11: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
12: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
11: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
12: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सरडे ब्रेकफास्ट शो में देसी बिज शाउट आउट है और यहाँ पर लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि इनाया ने चूज किया है। जी हाँ, अगर जो आपको चाहिए कस्टमाइज क्रोशे, दिस इज इंटरेस्टिंग, आपको कस्टमाइज क्रोशे चाहिए तो क्रोशे वेयर खासकर इनाया क्रिएशंस ये आपके लिए पॉसिबल कर सकती हैं। शायद कोई डिज़ाइन है आपके माइंड में, अपने लिए बिनी वगैरह कुछ चाहते हैं या फिर कुछ और प्रोडक्ट चाहते हैं, तो कस्टमाइज क्रोशे के लिए आप कॉल कर सकते हैं इनाया क्रिएशंस को ऑन 02116972140211697214 पर आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो 5599 पर आप अपने बिजनेस को शाउट आउट दे सकते हैं ऑन हम, जहां पर काफ़ी लोग सुन रहे हैं अभी और आपके बिजनेस के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ अगर जो वेदर की ओर देखें तो वेदर फोकास्ट कुछ ऐसा किया गया है कि स्ट्रॉन्ग विंड है फोकास्ट किया गया ओकलैंड के लिए, जो शायद ट्रेवल अक्रॉस हार्बर ब्रिज को आज अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड्स है इसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो इसके चलते शायद कुछ मेजर्स इन प्लेस लाया जाए बाय NZTI, जहां पर पोटेंशियल सडन और हाई विंड के कारण ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। तो ये आप माइंडफुल रहे अगर जो आप ओकलैंड हार्बर ब्रिज पर आज से होकर गुजरने वाले हैं। इसके साथ साथ जबकि ओकलैंड रीजन के लिए खासकर विंड वार्निंग है, इसके साथ जहाँ पर साउथ आइलैंड की बातें करते हैं तो कोल्ड स्नैप ग्रिप करेगी पूरा का पूरा वीकेंड, और ऐसा बताया जा रहा है कि फोकास्ट किया जा रहा है कि साउथ आइलैंड में कई जगहों पर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रहेंगे और स्नोफॉल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस वीकेंड। और इसके साथ साथ मैं हूँ अवि और 5599 पर आप अपना जो बिजनेस के बारे में प्रमोशन है ये हमारे पास में भेज सकते हैं।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़।

देसी बिज शाउट आउट एक ऐसा सेगमेंट जिसको आपको पूरा का पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि आपके बिजनेसेस को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं और ऐसा ही किया है नानक होम्स लिमिटेड ने। आपको अपना नया घर बनवाना है या फिर रेनोवेशन करवाना है या फिर सब डिविजन करवाना है, तो आप नानक होम्स लिमिटेड को कॉल करें 022-351-6533 पर, 022-351-6533 पर, और ये आपके लिए नए घर साथ में रेनोवेशन और सब डिविजन का काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।

अंबर बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा, 12 तक हम आपका साथ निभाएंगे सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में। और लेकिन इधर बातें करते हैं अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट की, जहां पर सिंडी और रुजबे ने बातें की है शनील लाल से। उन्होंने LGBTQ को लेकर, उनके राइट्स को लेकर काफ़ी कुछ बताया है। और एक जो बात जो अच्छी लगी इस पॉडकास्ट में कि जो कॉमन मैन का माइंडसेट है, अक्सर हम यूँ सोचते हैं कि कैसे हम कुछ कर सकते हैं अपने तरफ से, तो ये जो कॉमन मैन का है इसका भी जवाब इस पॉडकास्ट में उन्होंने अच्छी तरह से दिया है। तो ये सभी कुछ आप जाकर सुन सकते हैं, सिर्फ ड्राइव लिखें 5599 पर भेजें। इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट कैचअप है, जो आप विजय और पूजा को अगर जो वीकडेज में ब्रेकफास्ट शो मिस कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, BF लिखकर 5599 पर भेजें और ये जो कैचअप है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी ये काफ़ी हार्ड हिटिंग टॉपिक्स को लेकर आते हैं, डिस्कशंस को लेकर आते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सोसाइटी के साथ में जुड़ी होती है। तो 5599 पर आप BF लिखे और टेक्स्ट कीजिए और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ये सभी कुछ है। और इसके अलावा आपके पास में मौका है, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये गोल्डन आवर है, इसे ज़ाया मत कीजिए। अपने बिजनेस को जो आप घर से करते हैं, होम बेस्ड बिजनेस है, अक्सर हम मेहनत बहुत करते हैं ना, लेकिन मार्केटिंग में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो ये मौका आपके पास हम पर है, अपने बिजनेस के बारे में 5599 पर भेजिए एंड यू विल बी अमेज्ड कि कैसे लोग आपको रीच आउट करेंगे। अगला गाना ही सुनवाते हैं, उसके बाद में और कुछ मैसेजेस जो आए हैं बिज शार्ट आउट के लिए ये भी आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: हम पर यह है देसी बिज शाउट आउट और अगर जो आपको साउथ ओकलैंड में घर खरीदना या बेचना है तो आपको सिर्फ कॉल करना होगा कमल लूथरा को एट लिमिटलेस रियल एस्टेट लिमिटलेस इसका मतलब ये है कि आपके सपनों की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए तो आपको घर खरीदना है या फिर बेचना है आप कमल को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमल लूथरा को कॉन्टेक्ट करिए एक बहुत ही डेडिकेटेड रियल एस्टेट है और आप इनसे अप्रेजल वगैरह भी करवा सकते हैं और अगर जो आपको कोई गाइडेंस या स्टेप पर किसी एक स्टेप पर टिप्स चाहिए हिंट्स चाहिए तो ही इज़ देयर टू हेल्प यू आउट कमल को आप कॉल करें 02125012234 पर 02125012234 पर और ही'ल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप वर्ड स्प्रेड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं 5599 इज़ द नंबर

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम टी कॉफी एंड रवि, मैं हूं आपके साथ में 12 तक साथ देता रहूंगा, जबकि कुछ 20 मिनट तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। 449217 आपका सिर्फ एक मैसेज आया है हाय, तो हमारी तरफ से भी हाय आपको। शायद आपका आगे का मैसेज नहीं आ पाया पूरा से, तो एक दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं 5599 पर। और इसके साथ साथ जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये भी जारी है, अगर जो आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया है कि न्यूजीलैंड के दो स्विमर्स के हाथ अभी तक दो सिल्वर मेडल लगे हैं, और जो स्विमिंग कॉम्पटिशन के अंतर्गत एरिका फेयरवेदा साथ में लुइस क्लेबर्ट ने सिल्वर मेडल्स को अपने नाम किया है। देसी बीच शाउट आउट है ये, आपके पास में भी कोई इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, आप बताना चाहते हैं तो टेक्स्ट मी ऑन 5599 या फिर 0800004866 पर आप आकर बातें भी कर सकते हैं।
1: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट। 80s के रेट्रो गाने।

0: कीजिए चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम रेंज कम फ्यूल बिना फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन मानुको और पोकेकोई या winger.co.nz ऑफर 31 जुलाई तक टीज एंड सीज अप्लाई
1: जबरदस्त हिट्स
2: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
3: जी हाँ सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है देसी बिश शाउट आउट जहाँ पर लोकल बिजनेसेस को हम प्रमोट कर रहे हैं। राजीव दास ने टेक्स्ट किया है, ये एक बहुत ही माने जाने एडिटर है और वीडियो एडिटिंग ये करते हैं इंडो कीवी फिल्म्स के नीचे। तो अगर जो आपको भी शायद आपको कोई ओकेजन के लिए वीडियोज़ बनवाने हैं या फिर आपको एडिटिंग करवानी है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक अवार्ड भी जीता है गिल साहब स्कूटर वाले के लिए। तो राजीव दास एक ऐसे टैलेंटेड पर्सनालिटी है जो आपके लिए अपने सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं फॉर इंडो कीवी फिल्म्स। तो आपके पास में भी कुछ है अगर जो आपसे आपको इनसे काम लगे तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 021-226-5781 पर 021-226-5781 पर आप राजीव दास से बातें कर सकते हैं। ये सभी कुछ है आपके साथ में और इसके अलावा जो कुछ और भी रहेगा आपके साथ में देसी बिश शार्ट आउट के नीचे हम प्रमोट करते रहेंगे। एंड चलो अगला गाना आपको सुनवाते हैं बादशाह और साथ में अमर अर्शी की आवाज़ में।

देसी बिज शाउट आउट में आज के लिए फाइनल राउंड ऑफ जो बिजनेस शाउट आउट है ये हमारे पास में आ गए हैं। और इशू आपने टेक्स्ट किया है, आपकी कंपनी है प्लम्बिंग कंपनी गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड 0221663379। तो गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड है 0221663379 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल योर प्लम्बिंग वर्क्स। आप बातें कर सकते हैं इशू के साथ में, याद रहे गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड 0221663379 पर आप इन्हें कॉल करके बातें कर सकते हैं। इसके साथ में राज ने टेक्स्ट किया है, रियल एस्टेट एजेंट है साउथ ओकलैंड, साथ में तकनीनी पपकूरा कराका में ये डील करते हैं। और अगर जो आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 0214492170210244942170 पर आप कॉल करके रात से बातें कर सकते हैं। ये एक फ्रेंचाइज रियल एस्टेट है और ही विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके साथ में आज का जो फाइनल मैसेज है एक और एक तो आपने रिक्वेस्ट किया कि आपके बिजनेस शाउट आउट को रिपीट करें, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील प्लस स्टील गेट फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के लिए स्टील वर्क चाहिए, गेट्स चाहिए आपको न्यू बिल्ड हाउसेस के लिए या फिर रेनोवेशंस करवाने हैं, स्टीवन को कॉल करें और वो कोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 0221998959 स्टीवन को 0221998959 पर कॉल करें, ही विल बी हैप्पी टू डू अ कोट। अगर जो आपको घर पर स्टील गेट्स लगवाने हैं, इंस्टॉलेशंस करवाने हैं या फिर कोई भी और फैब्रिकेशन वर्क के लिए और या फिर रेनोवेशंस भी करवाने हैं, कॉल स्टीवन ऑन 0221998959। आज के लिए देसी बिज शाउट आउट में बस यही था, लेकिन एक और एक गाना है हमारे पास में, ये आपको सुनवाने जा रहे हैं। लंच बॉक्स में आप केतन को सुनते हैं, आप उनको प्यार देते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से सफाया 2.0 अपनी आवाज़ में गाया है और साथ ही साथ में एक ब्यूटीफुल वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। तो अगर जो अभी तक आपने यूट्यूब में इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, नाउ इज़ द टाइम। आप सिर्फ गूगल कीजिए सफाया 2.0 बाय केतन कुमावत और इस वीडियो को जाकर आप अपना प्यार दीजिए और इसे सुनिए। He has done a marvelous job. आपके लंच बॉक्स होस्ट केतन कुमावत।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था. आपने सुबह 6 से हमें कंपनी किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और यही वादा किए जा रहे हैं कल एक बार फिर आपके साथ में हो जाएंगे, लेकर आएंगे 12 बजे से जस्ट चिल, इसका भी इंतज़ार रहेगा. लेकिन आज के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप इन्जॉइंग योर सैटरडे एंड योर वीकेंड. टेक केयर, फिर मुलाकात होगी. बाय.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: It's Carpet Court's massive three-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl, and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
7: VG is on sale now at Flight Center. Take the family to Plantation Island with 7 nights plus flights from $1,499 per person. Book in store today. Depart Auckland, fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
8: Grab a new generation Samsung foldable phone from Spark with a huge deal. Upgrade now and save at least $1,200 on the all-new Samsung Galaxy Z Fold 8 or Galaxy Z Fold 8 Ultra over 24 or 36 months interest-free on eligible Spark plans with any trade-in. Plus, you'll save the trade-in amount of your phone on top. Get amazing savings on the all-new Samsung foldable phones at Spark. Minimum $99 deposit, trade-in and store only. T's and C's apply.
9: Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. Trade Depot.co.nz.
1: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good afternoon, I'm KM Adams with